सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
6: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
7: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
8: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
9: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
10: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9493045651 या 9707065575।
11: श्रोतागण, रउआ पानी ध्वनि के सुरीली धड़कन रेडियो रिमझिम 90.4 MHz पर, और ये अभी कार्यक्रम शुरू हो रहल बा आपन दे आपन देखभाल। जेकरा साथी बाड़ी राउ रेडियो दोस्त दीपाली, आकरे तरी रउआ सबके प्रणाम, सुप्रभात। दोस्त लोग, एक कार्यक्रम में हम बतावेनी कुछ घरेलू नुस्खा, जैसे राउ स्वास्थ्य रही बढ़िया आ रहे रउआ तंदुरुस्त। तो चलिए कर जाओ शुरुआत आज के प्रोग्राम के, जिमे हमने के जानल जाई सबसे पहले सेहत खातिर गुणकारी घरेलू नुस्खा। पथरी की समस्या ठीक करे खातिर पत्थर चट्टा पौधा के 3 पत्ती सूर्योदय के समय खाए के चाहिए। बच्चा के निमोनिया हो जाए पर सीताप पौधा के पत्ती के उपयोग करे के चाहिए। पीलिया और लीवर के समस्या में पुनर्वा पौधा के पत्ती के सेवन करे के चाहिए। जंगली गोभी के रस दाढ़ के दर्द के ठीक करेला। जौना दाढ़ में दर्द होके ओई ओर के कान में ई रस के कुछ बूंद डाल के पुनः साफ कर लेवे के चाहिए। कान में दर्द होके पर सुदर्शन पौधा के पत्ती के रस डाले के चाहिए। तीज खांसी में लैंडी पीपल के उपयोग करे के चाहिए। तुलसी के पौधा के पास बैठे मात्र से ऊर्जा और ऑक्सीजन मिलेला। एलर्जी के दौरान फुंसी हो जाए पर कुरंज के तेल में देसी गंधक मिला के लगावे के चाहिए। ताजा हल्दी, चंदन शहद और देशी कपूर के उपटन बना के चेहरा पर लगावे से मुहासा के समस्या से निजात मिलेला। शिकाकाई शहद और अरीठा से बाल धोए पर बाल चमकदार और मुलायम होला। सरसों के तेल से बाल काला रहेला। आंवला से पाचन क्रिया ठीक रहेला। बारीक नमक में कुछ बूंद सरसों के तेल के मिला के मंजन करे से दांत की समस्या ठीक होला। तुलसी के पौधा माँ समान होला। ई कई बीमारी से निजात पावे में सहायक होला। खांसी दमा और अन्य सांस के बीमारी में एकर उपयोग लाभप्रद साबित होला और एकर नियमित सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेला। हमने के घर में ही तुलसी नीम और अन्य विशेष पौधा के लगा के बीमारी के दूर कर सकता निशन। सीना में जलन हो के ता पाव भर ठंडा जल में नींबू निचोड़ के सेवन करी। अमाशय के दर्द तुलसी पत्र के चाय की तरह औटा के सुबह सुबह लीहल लाभप्रद है। तुतलापन दूर करे खातिर रात के सूते से 5 मिनट पूर्व 2 ग्राम भूनल फिटकरी मुंह में रखी। बच्चा के पेट दर्द होके पर अदरक की रस 5 ग्राम तुलसी पत्र घोंट के औटा के बच्चा के 3 बार पिलाई। बच्चा के बलवर्धक खातिर तुलसी के 4 पत्ता पीस के 50 ग्राम पानी में मिलाई व सुबह पिलाई। शराब ज्यादा पी लिया लोके तो 6 माशा फिटकरी के पानी या दूध में मिला के पिला दी या दूध सेव के रस पिला दी। इसे शराब के नशा उतर जाए। दोस्त लोग ई तरह सेहत खातिर कुछ गुणकारी नुस्खा। अब चली हम बतावे जात बानी छिलका के गुणकारी नुस्खा। खरबूज के छिलका समेत खाए से कब्ज दूर होला। खीरा के छिलका से भी कीट और झिंगुर भागेला। पपीता के छिलका सौंदर्य वर्धक मानल जाला। त्वचा पर ई लगावे से खुश्की दूर होला। एड़ी पर लगावे से ई मुलायम होला। चोट लागे पर केला के छिलका के रगड़े से रक्त स्त्राव रुक जाला। कच्चा केला के छिलका से चटपटा सब्जी बनेला। मटर के मुलायम छिलका के भी स्वादिष्ट सब्जी बनेला। टमाटर और चुकंदर के छिलका के चेहरा पर लगावे से चेहरा के चमक बढ़ेला और होठ के लालिमा बढ़ेला। करेला जितना गुणकारी होला ओके छिलका भी उतना ही फायदेमंद होला। करेला के छिलका के अलमारी में रखे से कीट भागेला। तोरी और घिया यानी लौकी के छिलका के सब्जी भी पेट रोग में फायदा पहुंचावेला। तो दोस्त लोग चली अब जानल जाओ घरेलू बीमारी के घरेलू इलाज। जुकाम के इलाज में हल्दी काफी फायदेमंद होला। बहत नाक के इलाज खातिर हल्दी के जला के ओके धुआ ली। इसे नाक से पानी बहल तेज हो जाई व तत्काल आराम मिली। यदि नाक बंद हो गई होके तो दालचीनी काले मिर्च इलायची और जीरा के बीज के बराबर मात्रा में लेके एगो सूती कपड़ा में बांध ली और एक सूंघी जैसे छींक आई। गेहूं के भूसी 5 लौंग और कुछ नमक लेके पानी में मिला के एके उबाल ली और एक काढ़ा बनाई। 1 कप काढ़ा पिए से लाभ मिली। डिप्थीरिया होके पर अमलतास के काढ़ा से गरारा करे पर जबरदस्त आराम मिलेला। हालांकि जुकाम आमतौर पर हल्का फुल्का ही होला। जेके लक्षण एक हफ्ता या इसे कम समय खातिर रहेला, लेकिन खान पान के आदत के लेके हमनी के काफी सतर्क रहे के चाहिए। और यदि जुकाम वगैरह के लक्षण दिखाई दे तो समुचित दवा आदि से इलाज करे के चाहिए। दोस्तों अब हम बताएं बारिश में जुकाम से बचाव के घरेलू नुस्खा। दोस्तों ई मौसम में सर्दी खांसी आम बात है, तुलसी और अदरक ई मौसम में लाभदायक होला। तुलसी में काफी उपचारी गुण समाइल होला, जौन जुकाम और फ्लू आदि से बचाव में कारगर है। तुलसी के पत्ती चबावे से कोल्ड और फ्लू दूर रहेला। तरह तुलसी और बांसा के पत्ती पीस के पानी में मिलाई और एक काढ़ा तैयार कर ली। इसे खांसी और दवा में काफी फायदा मिलेला। अलसी के बीज भी खांसी के इलाज में काफी कारगर होला, कहे कि ई बलगम बाहर निकाले में मदद करेला। के पीली या फिर बीज के पीस के चाट ली और ये जल्द राहत खातिर 10 ग्राम अलसी के पीसल बीज के मुलेठी के चूर्ण में मिलाई और ये 200 मिलीलीटर पानी में ये पानी की आधा रह जाए तक उबाली। इमे 20 ग्राम शुद्ध शहद मिलाई और ये गरम गरम पी। ऐसे शरीर के बलगम बाहर निकली और खांसी में राहत मिली। अदरक की चाय ई मौसम में स्वाद और सेहत दोनों के दृष्टि से अच्छा होला। तो दोस्त लोग ई रहला आज के हेल्थ टिप्स। तो अब समय हो गई बा कि अब हम लिए रउआ से जाए के अनुमति। वादा के साथ कि फिर होई हमार भेंट काल कुछ अलग नुस्खा के साथ। नमस्कार।
12: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
13: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
14: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
15: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
16: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
14: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
13: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
14: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
16: कॉल करे 87-894-18744।
17: ठक ठक।
18: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
19: अच्छा मिला ही नहीं।
18: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
20: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
18: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
20: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
21: नमस्कार, मैं हूँ जैकी श्रॉफ और आप सुन रहे हैं शिवा। शिव सादगी से प्यार करता है, शिव सादगी सिखाता है। अब आगे
22: चांद चांद चांद हो जाइए। जैसा कि आप सब जानते हैं, जिस खेल का इंतजार सारा गांव पूरा साल करता है, आखिर वो खेल का समय आ गया है। हमारे आखिरी दो उम्मीदवार हैं रघु सिंह और मन्नू सिंह। दोनों भाई एक दूसरे के विरुद्ध इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। अब हम खेल के नियम बताना चाहेंगे। आप दोनों के सामने एक रेखा बनाई गई है और दोनों के सामने एक एक मटका रखा गया है। आपको ये मटका लेना है और लेके यहाँ से 3 कोस दूर शिव मंदिर के पास जो नदी बह रही है वहाँ से इस मटके को भर के लाना है, लेकिन आपको पैदल जाना होगा। वहाँ जाने के कई रास्ते हैं, आप जंगल के रास्ते जा सकते हैं, पगडंडी के रास्ते जा सकते हैं, कच्चे रास्ते से जा सकते हैं, या फिर आप नहर का रास्ता भी चुन सकते हैं, लेकिन खेल के नियम अनुसार आपको ये रास्ता पैदल चलकर ही तय करना होगा बिना किसी साधन के। जो भी उम्मीदवार पहले पानी भर के यहाँ वापस पहुँचेगा वो इस खेल का विजेता होगा। क्या आप दोनों तैयार हैं?
0: तैयार है,
1: जीतने के लिए तैयार है।
22: तो आपका समय शुरू होता है अब।
17: दो मिनट बैठ जाता हूँ, थक गया। अभी तो पानी लिया भी नहीं है, पानी लेके कैसे आऊंगा? जुगाड़ करना पड़ेगा कुछ। हे भगवान, लगता है इसे भगवान नहीं भेजा है।
23: क्या हुआ भैया जी, ऐसे सड़क के किनारे क्यों बैठे हो?
17: अरे क्या बताएं, बसों की हड़ताल है, पास के गांव तक जाना है, कुछ काम था।
23: अच्छा,
17: तुम कहाँ जा रहे हो? अब छोड़ दो ना, मैं भगवान भला करेगा तुम्हारा, बैठ ही जाता हूँ।
23: अच्छा,
17: क्या नाम है भाई तुम्हारा?
23: जी नील।
17: हमारे गांव के तो नहीं लगते?
23: नहीं, मैं यहाँ का हूँ ही नहीं। अच्छा, ये मटका क्या हुआ, गांव में पानी खत्म हो गया है क्या?
17: हाँ, तुम ऐसे ही समझ लो। एक मिनट।
23: अब क्या हुआ?
17: ये इस रास्ते से मत निकालो, ये पगडंडी वाला रास्ता है ना, यहाँ से निकाल लो।
23: पगडंडी के रास्ते पर? ये तो कच्चा रास्ता है।
17: हाँ, पगडंडी का रास्ता है, तुम यहाँ से निकाल लो, शॉर्टकट है, शॉर्टकट, मुझे मालूम है, यहाँ से जल्दी पहुँचेंगे। अरे क्या हुआ?
23: अरे ये देखो, ये आदमी भी आप ही की तरह मटका लेकर जा रहा है, ये चक्कर क्या है?
17: अरे कोई चक्कर नहीं है, तुम इतने सवाल क्यों पूछते हो? तुम छोड़ दो ना मुझे।
23: उतरो।
17: क्या हुआ, बाइक क्यों रोक दिए?
23: उतरो, चलो उतरो, या तो तुम मुझे सच बताओ या फिर मैं तुम्हें वहां लेकर नहीं जाऊंगा।
17: अरे अरे अरे भैया ठीक है, बताता हूँ। देखो भाई, तुम उस गांव के तो हो नहीं, तो तुमसे तो मैं मदद ले सकता हूँ ना।
23: जल्दी जल्दी बताओ पहले की बात क्या है।
17: हमारे गांव में ना एक सालाना मेले का आयोजन होता है, खेल प्रतियोगिताएं होती हैं, हमने भी खेल में भाग लिया है और खेल में रघु भैया ने भी भाग लिया है। रघु भैया हमेशा मुझसे बड़े होने का धौंस दिखाते रहते हैं, हमेशा जीतते थे मुझसे, कुछ अच्छा नहीं लगता मुझे, इसीलिए ये प्रतियोगिता मुझे ही जीतनी है, हर हाल में बस मुझे ही जीतनी है, कुछ करके दिखाना चाहता हूँ, कैसे भी करूँ। और फिर जीतने वाले को मोटरसाइकिल भी मिलेगी, सोचो क्या पता अगली बार मैं तुमसे मिलूं तो मेरे पास अपनी खुद की मोटरसाइकिल हो।
23: पर ये तो चीटिंग है।
17: अरे तुम ना यार, पर किसी को पता चलेगा तब ना है? शिव जी से मिलने आए ना, वो देंगे हमारा साथ।
23: शिव जी कभी गलत का साथ नहीं देते, उन्होंने ब्रह्मा जी का साथ नहीं दिया था जब वो गलत थे, आपका क्यों देंगे?
17: अच्छा, लेकिन ब्रह्मा जी तो उनके खास थे ना भाई, क्यों नहीं दिए वो उनका साथ? ये सब छोड़ो, पहले तुम मुझे वहां तक छोड़ दो, रघु भैया पहले ना पहुंच जाए यार।
23: अरे मैं आपको ये कहानी सुनाना चाहता हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, वो हमसे पहले नहीं पहुंचेंगे। अगर कहानी सुनने के बाद भी आपको ऐसा लगे कि छोड़ना चाहिए तो मैं फुल स्पीड में चलाकर आपको छोड़ दूंगा।
17: बहुत जिद्दी हो यार तुम, ठीक है सुनाओ अपनी कहानी।
23: तो एक दिन भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव में बहस हो रही थी कि सबसे बड़े देव कौन है।
24: हट मत कीजिए विष्णुदेव, संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण मैंने स्वयं किया है, आप मेरी शक्ति का अनुमान लगा लीजिए।
25: आपने केवल इस संसार को बनाया है, किंतु मैंने अनेक बार इस संसार की रक्षा की है, इसीलिए मैं ही सबसे श्रेष्ठ देव हूँ।
24: विष्णुदेव, क्या निर्मूल तर्क दे रहे हैं आप?
25: और लगता है आपको मेरी शक्ति देखकर भी स्मरण नहीं है।
24: विष्णुदेव,

0: ये कैसी रोशनी है?
1: ये तो ज्योतिर्लिंग है, कितना विशाल है, इसी से आ रही है रोशनी।
2: आप दोनों में कौन सबसे बड़े देव हैं? ये निर्णय मैं लूंगा।
0: पर आप है कौन?
2: वो जानना आवश्यक नहीं, किंतु आप लोगों की समस्या का समाधान मेरे ही पास है। मैं आप दोनों की एक परीक्षा लूंगा, और जो उस परीक्षा में सफल हुआ, निर्णय उसी के पक्ष में होगा।
0: परीक्षा? कैसी परीक्षा?
2: आप दोनों देव बहुत शक्तिशाली हैं, किंतु आप दोनों में से जो सबसे पहले इस ज्योतिर्लिंग के पहले या अंतिम भाग तक पहुंचेंगे, वो ही सबसे बड़े देवता होंगे।
3: मैं वराह रूप लेकर धरती को खोदकर इस लिंग के आरंभ तक पहुंचूंगा।
0: मैं हंस रूप धारण कर आकाश में उड़कर इस ज्योतिर्लिंग के अंतिम भाग तक पहुंच जाऊंगा।
4: दोनों भगवान ब्रह्मा और विष्णु ज्योतिर्लिंग का आरंभ और अंत ढूंढने लगे, लेकिन कई दिन हो गए, कोई भी इस खोज में सफल नहीं हो पा रहे थे। ब्रह्मदेव लौटने ही वाले थे जब उन्हें केतकी फूल गिरते हुए दिखा।
0: अरे केतकी पुष्प।
5: प्रणाम ब्रह्मदेव।
0: तुम यहाँ? क्या तुम ज्योतिर्लिंग के ऊपरी हिस्से से गिरी हो?
5: हाँ देव, किंतु आप?
0: हाँ केतकी, मेरी सहायता कर दो।
5: सहायता? भला मुझ जैसी मामूली पुष्प आपकी सहायता कैसे कर सकती है?
0: मैं कई दिनों से ज्योतिर्लिंग का अंतिम भाग ढूंढ रहा हूँ, पर मुझे भय है कि अंत अभी भी बहुत दूर है। यदि विष्णु देव मुझसे पहले पहुँच गए तो मैं इस परीक्षा में असफल हो जाऊंगा। इसलिए तुम मेरे साथ चलो, मैं कहूँगा कि मैंने ज्योतिर्लिंग का अंत ढूंढ लिया है, और तुम इस बात की साक्षी बन जाना।
5: ये आप क्या कह रहे हैं ब्रह्मदेव? स्वयं शिव जी से असत्य कहने को कह रहे हैं? अगर ईश्वर को पता चल गया तो?
0: किसी को कुछ पता नहीं चलेगा केतकी, तुम उस बात की चिंता मत करो। मैं ब्रह्मदेव हूँ, इस पूरे संसार का विधाता हूँ मैं, भरोसा रखो मुझ पर।
5: ठीक है ब्रह्मदेव।
2: परिणाम की घड़ी आ गई है, बताइए क्या आप लोग इस ज्योतिर्लिंग के आरंभ या अंत तक पहुंच पाए?
1: क्षमा करें ईश्वर, मैं अपने कार्य में सफल नहीं हुआ।
2: और आप ब्रह्मदेव?
0: ईश्वर, मैं पहुंच गया था ईश्वर, मैं इस ज्योतिर्लिंग के अंत तक पहुंच गया, मैं सफल हुआ।
2: इस कार्य को पूरा करते हुए किसी ने साक्षात आपको देखा है, या फिर कोई प्रमाण इस बात का?
0: है ईश्वर, है। ये है केतकी पुष्प, ये साक्षी है इस बात की। कहो केतकी, कहो ना, हम इस ज्योतिर्लिंग के अंतिम भाग में ही मिले थे, है ना?
2: कहो केतकी, क्या तुमने देखा है ब्रह्मदेव को? क्या वो अपने कार्य में सफल हुए थे?
5: जी ईश्वर, मैं उनसे इस लिंग के अंत में मिली थी, वहीं से आए हैं हम।
1: ब्रह्मदेव, आपने सच में कार्य पूरा किया है, मैं मानता हूँ कि आप ही सबसे बड़े भगवान हैं।
0: धन्यवाद।
2: ये सत्य नहीं है विष्णुदेव।
0: ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी परीक्षा में सफल रहा, फिर ये क्यों?
2: ब्रह्मदेव, ये ज्योतिर्लिंग मैं ही हूँ, ये आपने कैसे सोच लिया कि आप मुझसे असत्य कहकर पकड़े नहीं जाएंगे? मैं शिव हूँ, मैं ही काल हूँ, मैं ही ये संसार हूँ। आप क्या कोई भी मेरे ज्योतिर्लिंग के अंत तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि मैं अनंत हूँ।
0: क्या
2: आप एक देवता हैं, इस ब्रह्मांड के विधाता? आपने असत्य का रास्ता अपनाया, ये कदापि सही नहीं। मैं शिव इस पूरे ब्रह्मांड को साक्षी मानकर आपको इस छल के लिए श्राप देता हूं कि आज से अनंत काल तक कोई भी मनुष्य आपकी पूजा नहीं करेगा, ना आपके मंदिर होंगे और ना आपके भक्त। आप सदा के लिए केवल इस संसार के विधाता बनकर ही रहेंगे।
0: ईश्वर क्षमा कर दीजिए मुझे, क्षमा कर दीजिए।
2: और केतकी, तुमने ब्रह्मदेव के साथ मिलकर असत्य का साथ दिया है। आज से केवल मेरी नहीं, कोई भी भगवान की पूजा में तुम्हारा उपयोग नहीं किया जाएगा।
5: क्षमा करें ईश्वर, क्षमा करें।
0: हाँ ईश्वर, क्षमा कर दे हमें। मैंने असत्य कहा, मुझसे भूल हो गई।
3: नहीं ब्रह्मदेव, मैं अब समझ गया हूँ कि कौन सबसे बड़े देव है। वो है अनंत अमर स्वयं भगवान शिव।
0: हाँ ईश्वर, आप ही महादेव हैं।
6: इसीलिए आज तक ना ब्रह्मा का कोई मंदिर है और ना भक्त। और अगर झूठ बोलने से शिवजी ब्रह्मदेव को ही श्राप दे सकते हैं, तो हम मामूली लोगों का क्या होगा शिवजी के क्रोध से?
7: भाई कैसी संजोग की बात है नील, हमने चीटिंग करने का सोचा और तुमने मुझे ये कहानी सुनाई। साक्षात महादेव ने तो नहीं भेजा ना तुम्हें?
6: ये बात तो सब जानते हैं ना भैया कि चीटिंग करने से कभी किसी का फायदा नहीं होता।
7: हाँ, हमें खुद अच्छा नहीं लग रहा था अंदर से जब तुमसे कहा कि छोड़ दो।
6: महादेव मुझे नहीं भेजते तो ये बात आपके अंदर से आपको इशारा जरूर करती, क्योंकि हर हर महादेव, हम सब में शिव है। हम जब भी कुछ गलत करने जाते हैं, हमारे अंदर के महादेव हमें बताते हैं कि हमें नहीं करना चाहिए।
7: तुम सही कह रहे हो भाई, ना जीते तो ना जीते, चीटिंग करके जीते भी तो क्या जीते। और फिर रघु भैया से हार भी गए तो क्या, हम छोटे उनसे छोटे ही रहेंगे।
6: ये हुई ना बात, तो फिर अब क्या करोगे?
7: अब क्या, वापस लौट जाऊंगा।
6: अरे वापस क्यों लौटोगे भैया, कम से कम रेस तो पूरी कर लो।
7: अब ठीक है भैया, मोटरसाइकिल तो आएगी घर पे, बड़े भैया लाएं या हम, बात तो एक ही है।
6: देखिए मुझे लगता है आपको रेस तो खत्म करनी ही चाहिए, कम से कम जाकर तो आइए, आप अपना काम तो पूरा कीजिए।
7: अच्छा, वैसे रघु भैया पहले ही जीत चुके हैं, लेकिन हाँ सही कह रहे हो भाई, मैं अपना काम करता हूँ।
6: सही समझे हैं मनु भैया, चलिए मैं भी चलता हूँ।
7: हाँ भाई, अच्छा फिर कब मुलाकात होगी आपसे?
6: अरे आप आइए ना कभी हमारे यहाँ।
7: हाँ, कौन से गांव में रहते हो?
6: थोड़ा दूर है भैया, अमरनाथ जा रहा हूँ, आएंगे वहाँ।
7: भैया भोलेनाथ ने मुझे ये सीख दी है तो उनसे मिलने तो वहाँ आना ही पड़ेगा। अरे वो देखो रघु भैया आ रहे हैं।
8: ओए मनु।
7: ए भैया, आप खेल जीत गए, इसी खुशी का शुक्राना करने हम नील भैया के गांव चलेंगे, ठीक है?
8: वो तू प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहा छोटे?
7: क्या भैया, आपसे मुकाबला करके क्या करूँगा, आप बड़े हैं।
8: क्या, लेकिन क्यों, मतलब कैसे?
7: अरे जाने दीजिए भैया, लंबी कहानी है, बाद में सुनाऊंगा।
6: ठीक है भैया, फिर मिलते हैं भोलेनाथ के धाम, ठीक है?
7: बिल्कुल नील भैया, हर हर महादेव।
6: हर हर महादेव।
9: चीटिंग से शॉर्ट टर्म गेन मिलेगा बिड़ू, और लॉन्ग टर्म पेन। बिड़ू अगर तेरे को डॉक्टर बनने का है तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, समझा? चीटिंग करके तो पास तो हो जाएगा लेकिन जिंदगी बचाने में फेल हो जाएगा। सोच अगर तेरे को ऐसे डॉक्टर के पास जाना पड़े तो भिड़ू सीधी पर्ची कटी, सीधा ऊपर। शिव ईमानदारी का साथ देते हैं, शिव ईमानदारों का साथ देते हैं। हर हर में महादेव, हर दिल में महादेव, हर हर महादेव। तो ये थे आज के शिव वचन मेरे यानी जैकी श्रॉफ के साथ। याद रखिएगा और हो सके तो इस पर अमल कीजिएगा। मैं फिर लौटूंगा, तब तक के लिए सुनते रहिए शिवा शिवा।
10: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
11: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
12: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
13: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
12: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
13: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
12: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
13: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
12: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27। 22 गोपालगंज।
13: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
14: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
15: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
14: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
15: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
14: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
16: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
17: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
16: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
17: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
16: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
17: जानकारी है तो कॉल करें 6252 62112 पे।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
3: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
2: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 99-393-65923।

जब तोरी डगर मैं पाऊंगी, तोरे

0: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388 8947 या 9198 8869 73।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमलाराय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765655750।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रूपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
0: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। नवोदय विद्यालय के विद्यार्थियों के साथ जिला पदाधिकारी ने किया सीधा संवाद। पुलिस अधीक्षक ने मीरगंज और जादोपुर थाने का मोटरसाइकिल से किया निरीक्षण। सरकारी स्कूल की शिक्षिका पुष्पा प्रसाद को राष्ट्रपति करेंगी सम्मानित। भूमि विवाद और शराब के मामलों को लेकर जिला पदाधिकारी ने की समीक्षा। विद्यार्थियों को मिलने वाली शिक्षा ऋण में अब हुआ बदलाव। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी समीर सौरभ ने पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय बलेसरा में पहुंचकर विद्यार्थियों से सीधे संवाद किया और उनकी पढ़ाई, खेलकूद, विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं तथा आवश्यकताओं की जानकारी ली। विद्यार्थियों के बीच सहजता से बैठकर उनके अनुभव और सुझाव सुनने का डीएम ने पहल करते हुए संवाद को आत्मीय एवं प्रेरणादायी बना दिया। विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला पदाधिकारी ने विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण एवं आधारभूत सुविधाओं के विकास से जुड़े विषय को लेकर समीक्षा किया। इस दौरान चार दीवारी को ऊंचा करने, खेल मैदान के विकास, आरओ वाटर प्लांट, सोलर लाइट, स्पीड ब्रेकर तथा सुरक्षा एवं विद्युत व्यवस्था से संबंधित आवश्यकताओं पर संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा की। इस मौके पर विज्ञान ज्योति कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के साथ संवाद करते हुए डीएम ने उनकी पढ़ाई एवं भविष्य की योजनाओं के बारे में भी जानकारी ली। विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ खेलकूद, रचनात्मक गतिविधियों और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। डीएम ने विद्यार्थियों से कहा कि बड़ा लक्ष्य निर्धारित करना सफलता की पहली सीढ़ी है। लक्ष्य के प्रति निरंतर मेहनत, अनुशासन और सकारात्मक सोच के साथ ही आगे बढ़ने पर कठिन से कठिन मंजिल भी हासिल की जा सकती है। आज पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने मोटरसाइकिल से ही क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान मीरगंज और जादोपुर थाना क्षेत्रों का भ्रमण कर दोनों थानों का निरीक्षण भी किया। थाना परिसर की व्यवस्थाओं, लंबित कांडों, विधि व्यवस्था की स्थिति और पुलिसिंग से जुड़े अन्य कार्यों की समीक्षा की। SP ने अधिकारियों को अपराध नियंत्रण, लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन और क्षेत्र में प्रभावी पुलिसिंग सुनिश्चित करने के आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही बेहतर विधि व्यवस्था बनाए रखने और आम लोगों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया। गोपालगंज पुलिस ने अपराध नियंत्रण और शांतिपूर्ण माहौल कायम रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को लगातार दोहराने का प्रयास किया है। गोपालगंज की एक शिक्षिका पुष्पा प्रसाद को सरकारी स्कूल में बेहतर काम करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि यह शिक्षिका कुचायकोट के रहने वाली हैं और राजकीय कन्या मध्य विद्यालय कुचायकोट में अपनी सेवा देती हैं। इनका चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए किया गया है। उनका नाम देश भर से चुने गए 48 स्कूली शिक्षकों में शामिल है, जिसमें बिहार से 2 शिक्षकों का नाम शामिल है, उनमें एक पुष्पा प्रसाद गोपालगंज से चुनी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब दिल्ली के विज्ञान भवन में इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी तो यह उस विचार और उस प्रतिभा का सम्मान होगा जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने वास्तविक लक्ष्य पर अड़े रहने और उस मंजिल को प्राप्त कर लेने के जज्बे के साथ काम करता है। इसको लेकर आज गोपालगंज के जिला पदाधिकारी समीर सौरभ से भी बातचीत की गई तो उन्होंने बताया।
4: हमारे यहाँ पुष्पा प्रसाद जी हैं, वो कन्या मध्य विद्यालय कुचायकोट की हैं। उनको जो है नेशनल टीचर्स अवार्ड के लिए उनका चयन किया गया है और उनको राष्ट्रपति महोदया के दौरान उनको सम्मानित भी किया जाएगा दिल्ली में। जो उनका पढ़ाने का शैली था वो काफ़ी नवाचार तरीके से का यूज़ करके वो पढ़ाती थी और काफ़ी रोचक तरीके से बच्चों को पढ़ाती थी। इस बात को संज्ञान में लेते हुए सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उनका नाम प्रतिवेदित किया जाए और उनका फाइनल चयन भी हुआ है। उनको और पूरे शिक्षा विभाग को हम लोग की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
3: जिलाधिकारी समीर सौरभ की अध्यक्षता में आज मद्य निषेध खनन टास्क फोर्स और भूमि विवाद तथा भू समाधान पोर्टल, भूमिहीन थानों, पुलिस लाइन एवं अग्नि शामालय हेतु भूमि की उपलब्धता, सीसीए प्रस्ताव तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण से संबंधित मामलों की बैठक हुई। इसमें विभिन्न विभागों के द्वारा किए जा रहे कार्यों, लंबित मामलों तथा भूमि से संबंधित मामलों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिया गया। जिला पदाधिकारी ने कहा कि बैठक में चिन्हित लंबित वादों एवं मामलों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनहित एवं प्रशासनिक कार्यों से जुड़े मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखने का निर्देश दिया गया है। भूमि विवाद और भू समाधान पोर्टल पर दर्ज मामलों के निष्पादन में भी विशेष तत्परता बरतने का निर्देश दिया गया है। बिहार सरकार ने विद्यार्थियों को मिलने वाली स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर अब परिवर्तन किया है। बताया जा रहा है कि विद्यार्थियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता के विकल्पों को सरकार ने और व्यापक बनाया है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शिक्षा ऋण पहले 4 लाख रुपए मिलता था, इसको लेकर कमी किए जाने की खबर पर जिला प्रशासन ने तथ्यात्मक रूप से जवाब देते हुए बताया है कि विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक कठिनाइयों से निजात दिलाने का और वित्तीय सहायता देने के लिए अब नए विकल्प उपलब्ध करा दिए गए हैं। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के अनुसार अब बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो 4 लाख रुपए मिलता था उसके जगह अब 2 लाख रुपए का ऋण बिहार सरकार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि 2 से 4 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। यानी 4 लाख के जगह अब 6 लाख रुपए तक का ऋण मिल सकता है, लेकिन सरकार स्तर से जो 4 लाख मिलता था वह अब 2 लाख मिलेगा और 2 लाख से 4 लाख रुपए तक बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इससे पहले सीधे 4 लाख रुपए सरकार के स्तर से ही उपलब्ध कराया जाता था। जिला प्रशासन ने बताया कि इस संदर्भ में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल एवं बैंकों से जोड़ने का उद्देश्य अधिक से अधिक विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए संस्थागत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। इसके अतिरिक्त पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के माध्यम से विद्यार्थियों को 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराने का भी प्रावधान है। इससे विद्यार्थियों के सामने उच्च शिक्षा के लिए पहले की तुलना में अधिक वित्तीय विकल्प उपलब्ध हो गए हैं। योजना के बजटीय प्रावधान भी सरकार की विद्यार्थियों के प्रति प्रतिबद्धता को स्पष्ट करता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 886 करोड़ रुपए के व्यय की स्वीकृति दी गई थी, जबकि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में 950 करोड़ रुपए के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। आज अलग अलग मामलों में गिरफ्तार सभी 32 लोगों को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसमें चोरी के मामले, कोर्ट के द्वारा जारी वारंट और शराब तस्करी के मामले और हत्या के प्रयास में आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इस दौरान 233 लीटर से अधिक विदेशी और देशी शराब को भी पुलिस ने जब्त किया है। कटिहार थाना क्षेत्र के उजवलिया गांव में एक आंगनवाड़ी सहायिका की मौत हो गई है। मृतिका शकुंतला देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद उनके बेटे पर ही मां को बाइक से कथित तौर पर धक्का देकर गिराने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद से इनका बेटा फरार है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दी है और मामले में आवश्यक जांच पड़ताल कर रही है। दो दिन पहले गोपालगंज के व्यवहार न्यायालय परिसर में मुख्य गेट पर कुछ लोगों ने न्यायाधीश के गाड़ी के आगे सोकर विरोध प्रदर्शन किया था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। आज इसको लेकर जानकारी दी गई कि जिन लोगों ने न्यायाधीश गणों के गाड़ी के आगे सड़क को अवरुद्ध कर विरोध प्रदर्शन किया था, पुलिस ने उन 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद यह मामला मुख्य जिला न्यायाधीश जिला जज के समक्ष पहुंचा। उन्होंने मामले में संज्ञान लिया। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपियों के अज्ञानता को देखते हुए कोर्ट ने लचीला रुख अपनाया और 24 घंटों बाद इन्हें जमानत पर छोड़ा गया है। हालांकि सभी आरोपियों ने अदालत के समक्ष लिखित रूप से माफी मांगी और उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी सही नहीं मिल रही थी, इसके वजह से उनसे गलती हो गई। आगे से जीवन में वह कभी भी अदालत के अपमान का प्रयास नहीं करेंगे। बिशंभरपुर थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में एक प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी बलराम यादव, पिता सरयू यादव, साकिन खेम मटिहनिया थाना बिशंभरपुर के निवासी हैं। आज इन्हें पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने आज भी अपने कार्यालय में जन शिकायतों पर त्वरित सुनवाई करते हुए जनता की समस्याओं का निदान करने के लिए पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। आज गोपालगंज जिला विधिज्ञ संघ के वकालत खाना भवन में स्थायी लोक अदालत की भूमिका, इसके क्षेत्राधिकार, प्रक्रिया, इसके फायदे, इसमें दाखिल होने वाले वादों की प्रकृति, मीडिएशन फॉर नेशन कैंपेन 3.0 आदि के बारे में विद्वान अधिवक्ता गणों के बीच जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष राधेश्याम शुक्ला, एडीजे सप्तम विवेक कुमार त्रिपाठी सहित तमाम न्यायाधीश गण और बहुत सारे गणमान्य अधिवक्ता गण मौजूद रहे। मीरगंज थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास कांड में एक प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी अनिल यादव, पिता मनोज यादव, जो बिन्नी जगदीश थाना मीरगंज का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने आज इसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सिरीपुर थाना की पुलिस ने 233 लीटर देशी शराब के साथ 2 मोटरसाइकिल को जब्त करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर झरही नदी के पास पुल के नजदीक से 233 लीटर देशी शराब को पकड़ा। बताया जा रहा है कि इस शराब को ले जाने वाले 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया जिनके पास से यह शराब मिली है। साथ ही इनके 2 मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने जब्त किया है और इस मामले में अभी आवश्यक पूछताछ और अनुसंधान किया जा रहा है। ट्रांसफर आवेदन में खामी मिलने पर एक शिक्षक से शो कॉज नोटिस किया गया है। ई कोर्स के माध्यम से अपलोड किए गए ट्रांसफर आवेदन में कई गलतियां उजागर होने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार पांडे ने अपग्रेड मिडिल स्कूल सपहा कुचायकोट के पंचायत शिक्षक बबलू राय से स्पष्टीकरण की मांग की है। डीओ की कार्रवाई के बाद शिक्षकों में हड़कंप देखा जा रहा है। उचका गांव थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक आरोपी नीतीश कुमार और दूसरा राकेश कुमार, दोनों पिता रमेश मांझी साकिन भुवला थाना उचका गांव के निवासी हैं। बताया जा रहा है कि दोनों को आज गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हथुआ प्रखंड के अटवा दुर्ग गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृत महिला मुन्ना श्रीवास्तव की बहू और सनी श्रीवास्तव की पत्नी बताई जा रही हैं। वह हथुआ प्रखंड के बरवा कपरपुरा गांव की रहने वाली थी। परिवार के लोगों का कहना है कि महिला की हार्ट अटैक से मौत हुई है। इस घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोग महिला की मौत पर सवाल भी उठा रहे हैं। हालांकि इस मामले में अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। नवोदय विद्यालय के विद्यार्थियों के साथ जिला पदाधिकारी ने किया सीधा संवाद। पुलिस अधीक्षक ने मीरगंज और जादोपुर थाने का मोटरसाइकिल से किया निरीक्षण। सरकारी स्कूल की शिक्षिका पुष्पा प्रसाद को राष्ट्रपति करेंगी सम्मानित। भूमि विवाद और शराब के मामलों को लेकर जिला पदाधिकारी ने की समीक्षा। विद्यार्थियों को मिलने वाली शिक्षा ऋण में अब हुआ बदलाव। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
9: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
10: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
9: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
11: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
12: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
13: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97097506575।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92-8-99-22-5-67 या 97-7-14-86-164।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
3: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
4: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67-666।
5: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
6: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
6: सिर्फ 1-2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94-5-12-11-001।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: सुनिए,
9: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
8: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
9: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
8: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
5: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
6: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
5: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
6: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
5: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
6: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
5: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
7: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
7: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
3: महिलाओं की स्पेशल दुकान।

0: काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान लिया।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा।
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।

0: जब सपनों की हुई सदाई,
1: दिन को
0: नहीं शाम को
1: ना,
0: रात को
1: प्रभात को,
0: अरे नहीं
1: फिर कब।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
4: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
5: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
4: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
5: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
5: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
4: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
5: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
0: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
0: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 पे।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
1: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HFD लक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 9289-22567 या 97714-86164।

0: लीडरशिप का आह्वान। बंगाल की खाड़ी में मालवाहक जहाज डूबा, चालक दल के 24 सदस्य थे सवार। भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने बचाव अभियान शुरू किया। और भारत की मानसी लाठर ने स्लोवाकिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता, तन्वी और कोमल को कांस्य पदक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री मोदी ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचार और दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ जुड़ाव को बढ़ाना है।
1: एक सोशल मीडिया पोस्ट में नितिन नवीन ने कहा कि भाजपा ने वंदे मातरम की ऐतिहासिक विरासत के सम्मान और संरक्षण के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें पार्टी ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 19 अगस्त को कांग्रेस कार्यक्रमों में वंदे मातरम के गायन को केवल पहले दो पैरा तक सीमित करने वाली वर्ष 1937 के प्रस्ताव को पुनः लागू किए जाने के निर्णय की कड़ी निंदा की। पार्टी ने राष्ट्रीय गीत के रूप में संपूर्ण वंदे मातरम के सम्मान, गरिमा, विरासत और राष्ट्रीय महत्व को बनाए रखने का संकल्प लिया। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। आनंद और प्रिया के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय राजपत्र में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना के साथ प्रभावी हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इससे पहले कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना आवश्यक था। बयान में कहा गया कि भारत में ये क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, चाहे चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। मंत्रालय का मानना है कि टेलीविजन उद्योग और डिजिटल मीडिया के बीच पर्याप्त प्रतिस्पर्धा है। टेलीविजन के लिए विज्ञापन अवधि सीमा 2006 में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के तहत लागू की गई थी। तब से लेकर आज तक टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उस समय टीवी चैनलों को प्रसारित करने के मुख्य माध्यम केबल टीवी की प्रसारण क्षमता सीमित थी और उपभोक्ताओं के पास बहुत कम विकल्प थे। केबल टीवी क्षेत्र के डिजिटलीकरण के बाद डीटीएच, एचआईएसटी और आईपीटीवी सहित सभी प्लेटफॉर्म अब डिजिटल हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉ सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। शिलान्यास समारोह के बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया जाएगा। इसके बाद रक्षा मंत्री का युवा भारतीय क्रीड़ांगन में ईस्ट बंगाल एफसी और मोहन बागान सुपर जायंट्स के बीच डूरेंट कप का फाइनल मैच देखने का भी कार्यक्रम है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है और किसी को भी अहिंसा के इन मूल्यों को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। श्री सिंह ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करना सरकार की सर्वोपरि कर्तव्य है।
3: अहिंसा का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि किसी को की हत्या मत करो, किसी को मारा नहीं जाना चाहिए। अहिंसा का अर्थ है मन, वचन और कर्म से किसी भी रूप से किसी को पीड़ा न पहुंचाई। अहिंसा के मूल्य को हमारी कमजोरी किसी भी सूरत में नहीं समझी जानी चाहिए। हमारे अहिंसा को गलत मत समझो, अहिंसा और शांति हमारी संस्कृति है।
0: रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने खरीफ और आगामी रबी मौसम के लिए उर्वरक विभाग की तैयारियों की कल समीक्षा की। नई दिल्ली में कल एक बैठक में उन्होंने कहा कि किसानों को उर्वरकों की निर्बाध और समय पर आपूर्ति करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत को विश्व की फार्मेसी की अपनी पहचान से आगे बढ़कर अनुसंधान, नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों के बल पर विश्व की प्रयोगशाला के रूप में उभरना होगा। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद में स्वास्थ्य सेवा में एआई को बढ़ावा देना विषय पर आयोजित हेल्थ केयर समिट में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की परिवर्तनकारी क्षमता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एआई दवाओं की खोज में तेजी ला सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन में ब्रिक्स के सभी 11 देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इसमें खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी भाग लेंगी। कार्यक्रम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग प्रतियोगिता, द्विपक्षीय बैठक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल होंगे। बैठक के समापन पर ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 अनुकूलन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आधारित है। ब्रिटेन के 70 से अधिक सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बिगड़ती स्थिति पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या रोकने और नागरिकों की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। इस क्षेत्र में पाकिस्तान की सेना की निर्मम कार्रवाई में सैकड़ों लोगों के मारे जाने और घायल होने के बाद ये अपील की गई है। इस क्षेत्र में कड़ी नाकाबंदी और कर्फ्यू के कारण संचार व्यवस्थाएं ठप हैं। इस बीच बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले में बलूच यकजहती कमेटी ने आम नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना के ड्रोन हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे सरकार प्रायोजित आतंकवाद करार दिया है। इसमें 4 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। BYC ने बताया कि शुक्रवार को मस्तुंग के खड़कुचा इलाके में एक ड्रोन हमले में 4 मजदूर मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इनमें चीनी नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। एक रिपोर्ट।
4: अधिकारियों ने बताया कि ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर ये दुर्घटना हुई। जहाज MV ओशन विनर के चालक दल में चीन के 20, म्यांमा के 3 और एक बांग्लादेशी नागरिक सवार था। जहाज ओडिशा से करीब 72,000 मीट्रिक टन लौह अयस्क लेकर 20 अगस्त को पारादीप तट से सिंगापुर के लिए रवाना हुआ था। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को बचाया जा चुका है। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: भारतीय वायुसेना ने हाल ही में 2 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यासों में सफलतापूर्वक भाग लिया है। इनमें ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक 2026 और मलेशिया में उदार शक्ति 2026 अभ्यास शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
5: रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 2 देशों के बीच इन अभ्यासों से भारतीय वायुसेना ने परिचालन क्षमता, उन्नत सामरिक समन्वय और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक रक्षा साझेदारी और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। मंत्रालय ने कहा है कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन वायुसेना द्वारा आयोजित अभ्यास पिच ब्लैक के दौरान भारतीय वायुसेना ने अपने अग्रिम पंक्ति के राफेल विमानों के साथ 20 से अधिक भागीदारी देशों की वायुसेनाओं के साथ मिलकर अभ्यास किया। उधर मलेशिया में आयोजित सैन्य अभ्यास उदार शक्ति के दौरान भारतीय वायुसेना के चालक दल ने रॉयल मलेशियन वायुसेना के साथ मिलकर उच्च तीव्रता वाले लड़ाकू मिशन और संयुक्त सामरिक युद्ध अभ्यास किए। आरजू और प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने जयपुर में अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में हुई अनियमितताओं के लिए एडुकेटी करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रभावित परीक्षार्थियों के लिए पुनर्परीक्षा अगले महीने की 1 तारीख को जयपुर में आयोजित की जाएगी। स्लोवाकिया में आयोजित U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने 3 पदक और जीत लिए हैं। मानसी लाठर ने रजत पदक और तन्वी गुंदेश, मकदूम और कोमल ने कांस्य पदक हासिल किए। और भारत और श्रीलंका के बीच वर्तमान क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच आज कोलंबो में शुरू होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से खेला जाएगा। भारत पहला टेस्ट 165 रन से जीतकर श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अन्य खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
6: भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में कल विश्व एथलेटिक्स रजत स्तरीय प्रतियोगिता में भारत के रोहित यादव ने भाला फेंक और मुरली श्रीशंकर ने लंबी कूद स्पर्धाओं में जीत हासिल की। रोहित ने अपने 6ठे और अंतिम प्रयास में 87.68 मीटर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने 8.07 मीटर की छलांग लगाकर पहला स्थान हासिल किया। महिलाओं की लंबी कूद में एनसी सोजान पहले, शैली सिंह दूसरे, जबकि मुबस्सिना मोहम्मद तीसरे स्थान पर रही। नाइजीरिया के चुकवू एबुका एनेक्वेची ने पुरुषों के शॉटपुट का खिताब जीता, जबकि इटली के जेन वियर दूसरे स्थान पर रहे। इसके अलावा खेल मंत्रालय ने अगले महीने से जापान में शुरू होने वाले एशियाई खेलों के लिए 492 सदस्यीय दल को मंजूरी दे दी है। इस बार एथलेटिक्स के सर्वाधिक 73 प्रतिभागियों को शामिल किया गया है।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और विदर्भ में दिनभर तेज वर्षा का अनुमान है। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत में भी अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। इस बीच अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मंगलवार तक गरज चमक के साथ तूफान की आशंका है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
7: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों की नई दिल्ली में बैठक की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भाजपा जेनजी से जुड़ेगी, 14 से 25 वर्ष के युवाओं से जुड़ने के लिए पार्टी अभियान चलाएगी। जनसत्ता का शीर्षक है, राष्ट्रगीत के सम्मान से किसी तरह का समझौता स्वीकार नहीं, भाजपा ने वंदे मातरम पर कांग्रेस के निर्णय की आलोचना की। अमर उजाला के अनुसार कांग्रेस के पूरा वंदे मातरम न गाने के खिलाफ प्रस्ताव पास, विकसित भारत का उद्घोष भी वंदे मातरम। दैनिक जागरण ने वंदे मातरम पर घिरी कांग्रेस शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वंदे मातरम के दो ही पद गाने की कांग्रेस की जिद से ये साफ है कि सोनिया गांधी ने 15 अगस्त को पार्टी मुख्यालय पर उसके पूर्ण गायन पर आपत्ति जताई थी। पंजाब केसरी का शीर्षक है, गोरखा मुद्दे पर समझौते की तैयारी, सरकार ने गठित की समिति, चिकन नेक को मिलेगी अवैध सुरक्षा। गृहमंत्री अमित शाह, गोरखा नेताओं और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच हुई बैठक का उद्देश्य वर्तमान समस्याओं का समाधान करना। नवभारत टाइम्स ने विदेश मंत्री जयशंकर का बयान देते हुए लिखा है, पाक यूनिक आतंक फैलाता है, बोले चीन के साथ अच्छे रिश्ते दोनों के हित में। अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने कहा, भारत यूएस संबंध ट्रंप और मोदी की दोस्ती पर आधारित। राजस्थान पत्रिका ने नया युद्ध शीर्षक से दिया है, ईरान की घेरेबंदी के बीच अमरीका में साइबर हमले, ड्रोन मिसाइलें शांत, अब यूएस और ईरान के बीच साइलेंट वॉर। अमर उजाला के अनुसार मुनीर के खिलाफ पाकिस्तानी सेना में असंतोष, रावलपिंडी की सुरक्षा बढ़ाई गई, पूर्व सैनिकों के संगठनों में भी बढ़ी नाराजगी, सुरक्षा बलों पर हमले को बताया कारण। दैनिक जागरण का शीर्षक है, 1 सितंबर से ई बोर्डिंग पास दिखाकर हो सकेगी विदेश यात्रा, एयरपोर्ट पर फिजिकल बोर्डिंग पास और स्टैंपिंग व्यवस्था खत्म होगी। दैनिक भास्कर ने खास खबर में दिया है, चैटबॉट नहीं, बुजुर्ग सबसे बड़े लाइफ कोच, संकट में सर्च के बजाय संवाद करें, समाधान के साथ नया नजरिया भी मिलेगा। 1500 अमरीकी बुजुर्गों की युवाओं को सीख, जो हाथ में है उसी पर फोकस करें। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार कांगड़ा की अंशिका और प्रवीण राणा बने प्रेरणा स्रोत, एक साथ की एलएलबी, बेटी टॉपर और पिता तीसरे स्थान पर। राजस्थान पत्रिका के अनुसार 3 साल बाद विदेश में टेस्ट सीरीज जीतने उतरेगी भारतीय टीम, श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट की श्रृंखला में टीम इंडिया 1-0 से आगे।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नव नियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों से वार्ता की, वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में प्रस्ताव पारित। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन सीमा समाप्त करने की अधिसूचना जारी की। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आज, ब्रिटेन के सांसदों का संयुक्त राष्ट्र से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या मामले में हस्तक्षेप का आह्वान। बंगाल की खाड़ी में मालवाहक जहाज डूबा, भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने बचाव अभियान शुरू किया। और भारत की मानसी लाठर ने स्लोवाकिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता, तन्वी और कोमल को कांस्य। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Prime Minister Narendra Modi meets BJP's newly formed team at party headquarters in Delhi. Party passes resolution regarding honor and protection of historic legacy of Vande Mataram. Center notifies removal of 12-minute advertisement.
9: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजीम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
10: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
11: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
10: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
11: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
10: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
11: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
10: संपर्क करें 9006978856 या 620313954।
12: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
13: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
12: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
13: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
12: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
14: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-41-51 पे।
10: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
11: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
10: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
15: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
16: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
14: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
17: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
14: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
15: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
11: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
18: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
11: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
18: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
11: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
18: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
11: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
18: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
5: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
6: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
7: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
8: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
9: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
4: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
6: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
4: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
3: कॉल करें 87894-18744।
10: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
11: मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, मैं भी बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
10: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
10: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AMZ पर।
12: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
13: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034-48652 पे।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
5: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
6: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
5: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
7: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
8: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
7: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
8: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
7: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
9: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
9: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
9: जानकारी है तो कॉल करें 62052-62112 पे।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
4: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
6: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
5: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
6: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
5: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

0: करने का संकल्प लिया। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुँचाया जाएगा। आनंद और प्रिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। श्री तावड़े ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
2: ऐसे आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश भर की सभी 14 लाख से ज्यादा जो आंगनवाड़ी है वहां तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा और जिस सेवा भाव से काम करने वाली वहां हमारी माता बहन है उनका सम्मान स्वाभाविकता किया जाएगा।
1: श्री तावड़े ने ब्लॉक स्तर पर 15 दिन के सेवा सेतु अभियान की भी घोषणा की।
2: सेवा सेतु अभियान के तहत 15 दिन के लिए ब्लॉक लेवल पर हर योजना के संबंधित डिपार्टमेंट के आवश्यक कागजात को लेकर वहां लोग उपस्थित रहे तो आप वहां आइए, फॉर्म भरिए, आपका नाम आयुष्मान में ऐड हो जाएगा। ऐसे सरकार के अलग अलग भिन्न भिन्न जो योजनाएं हैं जिसका लाभ सभी लोगों तक पहुंचना है तो उनको ये मौका होगा कि उनके ब्लॉक स्तर पर सेवा सेतु अभियान का एक अपना अलग कार्यक्रम उस दरमियान होगा, उसमें वो इस मौके का लाभ लेते हुए अपने आप को इस योजना में जोड़ सकते हैं।
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना के ज्ञान भवन में चल रहे युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग मेगा जॉब फेयर 2026 में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। युवा कौशल और रोजगार विभाग के अनुसार इस मेगा जॉब फेयर में कल 3,727 युवाओं का चयन विभिन्न कंपनियों द्वारा किया गया है। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग की ओर से आयोजित रोजगार मेले में 20,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था। राज्य सरकार ने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से जुड़ी शैक्षणिक संस्थानों की जांच का फैसला किया है। योजना के तहत सूचीबद्ध निजी शिक्षण संस्थानों की भौतिक जांच कराई जाएगी। शिक्षा विभाग ने सभी संबंधित संस्थानों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की जांच के लिए जिला स्तर पर समिति गठित करने का निर्देश दिया है। विभाग ने संबंधित संस्थानों को निर्धारित पोर्टल पर अपनी आवश्यक जानकारी और अभिलेख 1 सितंबर से 30 नवंबर तक उपलब्ध कराने को कहा है। साथ ही जिलों में स्थित संबंधित संस्थानों की स्थलीय जांच की प्रक्रिया 30 दिसंबर तक पूरी करने का निर्देश दिया है। यह जांच शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए होगा। राज्य के ग्रामीण इलाकों में मोबाइल नेटवर्क की वास्तविक स्थिति जानने के लिए डाक विभाग और भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण सर्वेक्षण करेगा। इसके तहत प्रदेश के 8,000 से अधिक ग्रामीण शाखा डाकघरों में तैनात लगभग 15,000 ग्रामीण डाक सेवक गांवों में मोबाइल नेटवर्क की गुणवत्ता का सर्वेक्षण करेंगे। यह सर्वेक्षण वे अपने दैनिक डाक वितरण कार्य के दौरान करेंगे। सर्वेक्षण का उद्देश्य नेटवर्क के ब्लैक स्पॉट, इंटरनेट की गति, कॉल की गुणवत्ता और कॉल ड्रॉप जैसी समस्याओं की जानकारी जुटाना है। इसके लिए दूर संचार विभाग और डाक विभाग के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के घरेलू रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए ई केवाईसी कराने की आज अंतिम तिथि है। कंपनी के अनुसार ई केवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को व्यावसायिक दर पर गैस सिलेंडर की आपूर्ति की जाएगी। कंपनियों ने उपभोक्ताओं से ई केवाईसी की प्रक्रिया को कंपनी के मोबाइल ऐप के माध्यम से करने की अपील की है। परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति का 31 सदस्यीय दल आज राज्य के दौरे पर पहुंच रहा है। राज्यसभा सांसद और संसदीय समिति के अध्यक्ष संजय कुमार झा ने बताया कि समिति में लोकसभा और राज्यसभा के 31 सांसद शामिल हैं। समिति कल पटना में केंद्र और राज्य सरकार के वरीय अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें करेंगी। इस दौरान राज्य में हवाई अड्डा और हवाई संपर्क के विस्तार, राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और रखरखाव के साथ साथ प्रदेश की कला संस्कृति के संरक्षण तथा संवर्धन की समीक्षा करेगी। इसके बाद समिति बोधगया में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में राज्य में पर्यटन की बुनियादी सुविधाओं की स्थिति और उनके विकास की योजनाओं की समीक्षा करेगी। इसके उपरांत बोधगया, राजगीर और नालंदा के ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कर स्थल निरीक्षण करेगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक सैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश की परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले दो दिनों तक राज्य के उत्तर पूर्व भागों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। विभाग ने राज्य के उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य समेत कई जिलों में तेज हवा के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका जताई है।
1: दिनांक 23 अगस्त को राज्य के उत्तर पूर्व भाग के कुछ स्थानों पर जबकि शेष भागों के एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के समस्त उत्तर भाग एवं दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना।
0: गंगा, पुनपुन, सोन, गंडक और अन्य नदियों के बढ़ते जलस्तर के बीच प्रदेश के कई जिलों के दियारा और निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने लगा है। पटना जिले के सदर प्रखंड के कुर्जी बिंद टोली, LCT घाट के आसपास, बख्तियारपुर और अथमल गोला के दियारा क्षेत्रों के निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: बाढ़ नियंत्रण विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान मनेर में गंगा का जलस्तर 52.1 मीटर और दीघा घाट पर 50.53 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान से ऊपर है। गांधी घाट पर गंगा खतरे के निशान से 75 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। इधर पटना के जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने बताया कि क्षेत्र से बहने वाली नदियों के जलस्तर पर नजर रखी जा रही है। इसके लिए जल संसाधन विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि जिले के सभी तटबंधों की की जा रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि आपदा की स्थिति में लोगों को सुरक्षित रखने के लिए 120 शरण स्थल बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि 219 निजी नाव मालिकों के साथ बाढ़ राहत के लिए समझौता किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि SDRF की एक कंपनी 12 नाव और 32 जवानों के साथ गायघाट और पटना सिटी में तथा NDRF की दो टीमें 8 नाव के साथ तैनात की गई है। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर 24 घंटे एक नियंत्रण कक्ष कार्य कर रहा है। कोई भी व्यक्ति दूरभाष संख्या 06122101118 और मोबाइल नंबर 8235449748 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही जिले के सभी प्रखंडों में नियंत्रण कक्ष कार्य कर रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं अनुपम कुमार।
0: वहीं मुंगेर और भागलपुर में गंगा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। भागलपुर में नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर से 17 सेंटीमीटर ऊपर है। जलस्तर में वृद्धि से भागलपुर के बरारी, फरक्का, बाबूपुर, शंकरपुर और अठगामा समेत तटवर्ती इलाकों में पानी लगातार फैल रहा है। बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल भागलपुर के कार्यपालक अभियंता आदित्य प्रकाश ने बताया कि ऊपरी क्षेत्र में भी नदी के जलस्तर का दबाव बना हुआ है। अभियंता ने बताया कि आने वाले दिनों में गंगा के जलस्तर में वृद्धि जारी रहने की संभावना है। दूसरी ओर मुंगेर में गंगा का पानी चेतावनी स्तर के आसपास बना हुआ है। जिले के प्रसिद्ध चंडिका स्थान परिसर के गर्भगृह में गंगा का पानी प्रवेश कर गया है। चंडिका स्थान के पुजारी ने बताया कि श्रद्धालुओं के गर्भगृह में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इधर सिवान जिले में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 0.38 मीटर ऊपर है। पटना के कदमकुआं स्थित बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में जीवन ज्योति एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा दिव्यांगजनों के लिए दिव्य सावन संगम महोत्सव का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने और उन्हें अपनी कला दिखाने का मौका देने के लिए आयोजित किया गया था। केंद्र सरकार ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें एक निवेश योजना का प्रचार किया जा रहा है। इस वीडियो में 22,000 रुपए के शुरुआती निवेश पर हर सप्ताह 5.5 लाख रुपए की सुनिश्चित आय देने का दावा किया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह वीडियो फर्जी और AI से तैयार किया गया है। केंद्र सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि सीमा को हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। यह निर्णय राजपत्र में केवल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना के साथ प्रभावी हो गया है। इससे पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना आवश्यक था। अररिया जिले में स्मैक तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार पंचायत रोजगार सेवक को उप विकास आयुक्त ने सेवामुक्त करने का आदेश दिया है। पटना जिले के मनेर थाना पर गोलीबारी करने के आरोप में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, देश में 9 करोड़ युवा रोजगार और पढ़ाई से दूर। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण में नीति आयोग का बड़ा खुलासा। दैनिक जागरण ने लिखा है, पाटलिपुत्र टाउनशिप में किसानों की मर्जी के खिलाफ नहीं ली जाएगी जमीन। प्रभात खबर का शीर्षक है, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के रिजल्ट पर बवाल, कई कॉलेजों में नर्सिंग फार्मा में 90% तक छात्र फेल। दैनिक भास्कर लिखता है, राज्य में 5 साल से खाली सरकारी पद खत्म होंगे, नई नियुक्तियां की जाएंगी। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, केंद्र सरकार ने कहा, चीनी के दाम बढ़ने का कारण एथेनॉल उत्पादन नहीं। आज अखबार ने लिखा है, 18 माह के DELED योग्यताधारी शिक्षकों की होगी सेवा समाप्त। और अवंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों से वार्ता की। वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में प्रस्ताव पारित। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज युवा रोजगार और कौशल विकास मेले के तहत चयनित युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। प्रदेश में पर्यटन और संस्कृति के विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए संसदीय समिति दल आज पहुंचेगा पटना। और गंगा, पुनपुन, सोन, गंडक और अन्य नदियों के बढ़ते जलस्तर के बीच प्रदेश के कई जिलों के दियारा और निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैला। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सवा चार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434468 पे।
6: तब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
7: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
6: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
7: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
6: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
7: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
8: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
6: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
10: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
9: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
10: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
9: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
11: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
11: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
11: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
12: Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो
2: हेलो, नमस्कार मैम।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
2: क्या समाचार है?
1: मेरा समाचार ठीक है, आप अपना बताइए।
2: हम भी ठीक है।
1: तो क्या हो रहा है आपको?
2: अभी दोपहरिया का खाना बन रहा है मैम।
1: अच्छा, बच्चों सब के लिए?
2: हाँ,
1: स्कूल गया है सब।
2: जी मैम, आपका खाना पीना हो गया?
1: हाँ हाँ, मेरा हो गया है।
2: गाना सुनना है मैम?
1: बता दीजिए।
2: कौन सिंह का गाना है? निधिया के मारल भूला आँखियों ना खोली है।
1: अच्छा, और गाना सुनाना भी है?
2: जी मैम, मनोरमा मैम को सभी जितना सुनते हैं रेडियो रिमझिम परिवार सभी को सुनाना है मैम।
1: ओके जी, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
2: थैंक यू।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो रंगीन 92.4 एफएम में।
1: थैंक यू मैडम जी, आपको गाना सुनना है।
0: जी जी बिल्कुल सुनाऊंगी, नाम बता दीजिएगा।
1: शराब में होती नाटक है।
0: अपना नाम बता दीजिए आप।
1: अरुण कुमार मिश्रा, गोपालगंज से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा अच्छा, और कौन सा गाना बोले हैं अभी?
1: नशा शराब में होती नाटक है।
0: और गाना सुनवाना भी है किसी को?
1: हाँ जी, पूरा अपना रेडियो रेंजिंग का जितना टेरा गा रहा हूँ तभी सुनाना है, और फैमिली को भी सुनाना है, जितना भी होता है सभी सुनाना है।
0: और आप बताइए, आप ठीक हैं?
1: जी ठीक है जी।
0: गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034 48652 पे।
5: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
6: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
5: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: कुल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
9: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
8: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
10: Now pick it up, now pick your phone up. Pick it up. Hello. Now pick your phone up.
11: Hello. जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो।
12: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो
14: हेलो
13: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
14: नमस्ते मैम, कैसे हैं?
13: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? क्या हो रहा है अभी?
14: आपके पास कौन सा बिल्कुल?
13: अच्छा, हाँ कॉल आया हुआ था किसी का।
14: आज सब बढ़िया है ना?
13: आज सब ठीक है।
14: गाना सुनना है?
13: बता दीजिए।
14: रेड सॉन्ग सुनना है।
13: कौन सा
14: गाना? बात सुन रहा
13: हूँ। हाँ
14: मेरा

0: आज आपकी आवाज में भी गाना सुन ले, आप भी बहुत अच्छा गाती हैं। अच्छा वो दोनों में आवाज सेम लगता है,
1: आवाज सेम लगता है लेकिन उनको गाना नहीं आता।
0: अच्छा
1: उनसे भी ताकत लीजिए जाएंगे।
0: अच्छा यही से है।
1: हेलो।
0: हाँ हेलो नमस्ते, क्या हाल चाल है? वो भी ठीक है।
1: गाना दीदी मेरी मेरी गाना सुना दिया को।
0: अच्छा लगता है, आवाज बहुत ही अच्छा है, गाना बहुत ही अच्छा गाती है। आप दोनों की आवाज बिल्कुल मिलती हुई है।
1: हम दोनों का आवाज एक ही जैसा है। शांता भी नहीं
0: है, अभी मैं कंफ्यूज हो गई। तो तबीयत कैसी है?
1: ठीक है उनका तबीयत,
0: है ना?
1: ठीक है, इसलिए तो गा के सुनाई आपको।
0: बढ़िया है, ठीक हो गई। और गाना डेडिकेट है
1: आपको है, मनोरमा मैम को है, और सोनू सर है उनको भी है, बाकी सब सभी को है
0: जी। ओके फिर गाना प्ले कर रहे हैं।
1: थैंक यू मैम, सुना दीजिएगा।
0: ओके रेडियो रंजन में कॉल किए इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकू 90.4 FM में।
0: जी नमस्कार मैडम जी, मैं सुनील साहू मत्स्य नगर जिला गुना मध्य प्रदेश से।
1: जी, कैसे हैं आप?
0: आज मैडम जी आपका रेडियो सुन रहे हैं और बेटे हैं, सोपर ही हैं।
1: बता दीजिएगा इन्हें पहले अपना, उसके बाद उनका। हेलो
0: जी। जी
1: हाँ जी, बोलिए।
0: आज बैठे हैं दुकान पर और रेडियो सुन रहे हैं आपका।
1: अच्छा जी, और ठीक है ना? खाना वाना खा लिए?
0: हाँ, हो गया खाना माना, सब हो गया है।
1: चलिए जी, फिर गाना बता दीजिए मुझे, कौन सा गाना सुनना है आपको?
0: जी मैडम जी, गाने के बोल है, पिक्चर का नाम है आशा।
1: आशा
0: आशा, और उसमें गाने के बोल है, तूने मुझे बुलाया शेरा वाली है, मैं आया मेरा वाली है, मैं वैष्णो देवी जा रहा हूँ मैडम जी साबनबाद।
1: अच्छा जी,
0: जी रक्षाबंधन के बाद जा रहा हूँ, इसलिए भजन सुनना चाहता हूँ।
1: अच्छा, और गाना सुनाना भी है?
0: जी, भारती मैम को, सोनी मैम को, मनारामा मैम को, और गोपाल ओझा जी है, गजराज सिंह लोधी है, जीतेन धाकड़ जी है।
1: जी जी बिल्कुल, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रंजन
0: 90.4 बैंड जी।
1: ये आपको आज बज जाएगा, नहीं तो कल बज जाएगा।
0: ठीक है, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत।
1: जी जी बिल्कुल।

0: सॉरी मुन्नी, तुम आ गई। चल मेरा कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
2: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रंजन 90.4 AMZ पर।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
9: Now pick your phone up.
10: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो, ये बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन
12: 90.4 FM। मैं लाल बहुत हम बचेगी, फोन नहीं उठाएगी हमारा।
11: नहीं, उठाऊंगी क्यों।

0: थोड़ा सा तो काम में बिजी थी इसीलिए नहीं ले रही थी। सबका कॉल उठाया गया था, आपको कैसे भूल जाएं लोग।
1: क्या हाल चाल है आप?
0: हम सबका हाल चाल ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: हम लोग भी ठीक है।
0: और घर में सब कोई कैसे हैं?
1: ठीक है। दो चार दिन थोड़ा बाबा धाम गया के लगाए थे ना, 10-12 दिन प्रोग्राम नहीं सुन पाया
0: जी।
1: उधर था थोड़ा तबियत खराब हो गया, आज गोपालगंज में आया। ठीक है।
0: अच्छा जी, चलिए बढ़िया। फिर बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: क्रांति फिल्म का चाना चूर गरम बाबू मलाया,
0: और गाना
1: है गुड्डू है। हाँ, गुड्डू है विकास, रंजीत पुराना टोला
0: जी,
1: लिया रूबी आप है, आपका टीम है, सीमा हंस रही है।
0: कोई बात नहीं, कह दीजिएगा वो भी सुन लेंगी, फरमाइश भी किए हैं।
1: चाना बेस्ट।
0: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: ओके, नमस्ते
0: नमस्ते।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
1: वालेकुम
0: अस्सलाम।
1: थोड़ा कितना सुनना था साहिबा?
0: जी बिल्कुल सुनाऊंगी। नाम बता दीजिए अपना।
1: हमारा नाम है रफीक अली।
0: जी जी। और कहाँ से हैं आप?
1: हम बोल रहे हैं गोपालगंज पठानपट्टी बजार से।
0: जी। और गाना कौन सा सुनना है आपको?
1: गाना सुनना है साड़ी वाला नहीं है, लीक सॉन्ग।
0: कौन सा?
1: कमर में साड़ी नहीं है, लीक सॉन्ग है।
0: कमर में दागी भैया।
1: हाँ जी जी।
0: और गाना सुनाना भी है?
1: गाना की गाना सुनाना है, जितने लोग सुन रहे हैं सब लोग रेडियो में लगे लेते हैं।
0: जी बिल्कुल। तो चलिए गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 एफएम।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
0: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
0: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
8: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
9: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
10: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
8: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
9: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
8: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
9: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
11: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
12: Now pick your phone up.
13: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में। मेरा ठीक है, आप अपना बताइए।
15: मेरा भी ठीक है। कितना देर से लगा रही हूँ मैडम।
14: अच्छा,
15: मुझे गाना सुनना है।
14: बता दीजिए कौन सा।
15: आज की रात।
14: अच्छा, आज की रात मजा हुस्न का। अच्छा जी, और गाना सुनाना भी है?
15: सुनाना भी है। सबसे पहले आपको और उसके बाद से सबका तली को और तमाम सुनने वाले रेडियो रिंजिम सबको सुनाना है।
14: जी जी बिल्कुल। और तबीयत ठीक है आपकी?
15: ठीक है
14: जी। तो चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।
15: थैंक यू मैम,
14: वेलकम।
16: आज तक क्षमा पे परवाना मरता था, लेकिन आज परवाने पे ये क्षमा मरने को तैयार।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में। नमस्ते।
0: हेलो
1: जी।
0: हाँ नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, क्या हाल चाल है?
0: विकास कुमार बोल रहा हूँ, हिंसापुर से।
1: कैसे हैं आप?
0: बढ़िया मैम, आप कैसे हैं?
1: ठीक है।
0: और बताइए, मौसम मौसम कैसा है?
1: मौसम तो अभी सुहाना बना हुआ है गोपालगंज का।
0: अच्छा, सुहाना बना रखा है। इधर तो बहुत बहुत तेज धूप है
1: जी।
0: इधर बहुत धूप है, गर्मी भी बहुत तगड़ा हो रहा है।
1: गर्मी भी तेज है। नहीं तो अभी मतलब इधर फिलहाल थोड़ा ठीक है।
0: इधर में क्या है ना मैडम, वो कंपनी का एरिया है ना, कंपनी स्टैंड इंडर एरिया है ना, इसलिए थोड़ा गर्मी रहता है।
1: तो वहाँ कंपनी के रूम में रहते हैं लोग या फिर मतलब अपना रूम लेके?
0: क्या जी,
1: आप लोग वहाँ रहते हैं तो कंपनी के रूम में रहते हैं कि अपना रूम लेके?
0: नहीं, कंपनी से अलग रहते हैं रूम।
1: चलिए ठीक है।
0: कंपनी में कौन रहेगा, इतना गर्मी होता है जी, हालत खराब हो जाएगा।
1: तो आज कौन सा गाना सुनना है आपको?
0: हमको आज गाना तो दिल ऐसा जिसने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ तो ऐसा मोड़ा। यही वाला?
1: पूरा नहीं गाइए, पूरा नहीं गाइएगा, थोड़ा
0: बढ़िया लग रहा है ना।
1: हाँ,
0: ये पुराने सॉन्ग है।
1: और गाना सुनाना भी है किसी को?
0: सबसे पहले आपको।
1: अच्छा,
0: जितना रेडी रेंजन सुनने वाले हैं सबको। और सब बढ़िया है ना मैं?
1: हाँ, और सब बढ़िया है।
0: तो जो नंबर दे रहे थे वो तो नंबर को ऐसे भी ऑडियो कॉल लगाते हैं तो लग रहा है।
1: ऑडियो कॉल लगा
0: तो जो बुधवार को जो नंबर आप दिए थे 2291 वाला है लास्ट में, वो ऑडियो कॉल भी लग रहा है।
1: तो कॉल लग रहा है पर उससे कोई कॉल उठाएगा नहीं, केवल व्हाट्सएप पे उससे मैसेज किया जाएगा।
0: अच्छा, मैंने जैसे बोल करके भी मैसेज कर सकते हैं तो गाना सुन लेंगे ना?
1: हाँ, व्हाट्सएप पे बोल कर मैसेज कर लीजिएगा कि मुझको ये गाना सुनना है तो हो जाएगा।
0: अच्छा,
1: हाँ व्हाट्सएप पे आप बोल के मैसेज डाल दीजिए, हो जाएगा।
0: ठीक है,
1: गाना सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।
0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास, जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
3: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया, बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
5: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोड़, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
7: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
8: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
9: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
8: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
6: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
10: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
11: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
12: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
13: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
14: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
12: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
11: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
12: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करें 87-894-18744।
15: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ, 80-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
16: हेलो। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
17: नमस्ते मैडम जी।
16: नमस्ते। नमस्ते मैडम जी, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
17: मैं भी ठीक हूँ।
16: तो नाश्ता हो गया आपका?
17: जी आपका हो गया। और समाचार बताए, अच्छा बनी ना?
16: हाँ हाँ हम ठीक बने, बस
17: धीरे से परिवार अच्छा बन।
16: सबकी कृपा बात
17: है, अच्छा रहे प्रोग्राम, अच्छा चलते रहा।
16: तो कौन सा आज गाना सुने के बाद?
17: गाना सुना दी सजनो बैरी भैया हमारा।
16: अच्छा, और गाना सुना हूँ के बाद?
17: जी सबसे पहले आपको जितना रेडियो मार्ग सब सुनता है, सब दोस्त सुनता है सबके साथ।
16: चलिए फिर गाना प्ले करते नहीं सुना चाहिए रेडियो रंजन 90.4
17: मैडम जी। नमस्ते
16: नमस्ते।

0: हेलो जी नमस्ते, मैं नेपाल बिहारी जी छोटा संघ ग्राम खोड़ा सिंह प्रदीप चंपारण बिहार से संजय कुमार साहब बात कर रहे हैं।
1: जी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: इसके लिए दिल से धन्यवाद। अपना सुनाइए अपना और हाल खबर रेडियो रिमझिम संपूर्ण परिवार कैसे हैं, आप कैसी हैं?
1: हम सभी ठीक है।
0: चलिए आप पूरी टीम के लिए हमारे ओर से बहुत बहुत शुभकामना जाता है की एकदम स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, मुस्कुराते रहे, ऐसे ही हम लोग से बात करते रहे, अपना हम लोग फरमाइश बजवाए, आप लोग बजाए, हम लोग मनोरंजन करने के लिए तैयार है, मनोरंजन
1: जी जी बिल्कुल
0: जी जी जी। और सुनाइए और सब, पावन महीना तब लाइफ जा रहा है, अब कैसे अब कितना एक तुम्हारी अभी बाकी है शायद, तो आप क्या तैयारी कर रही है, आप शादी रखते हैं कि नहीं,
1: मतलब
0: आप तुम्हारी करती है कि नहीं?
1: नहीं अभी तो हम नहीं करते हैं क्योंकि थोड़ा काम भी ज्यादा रहता है तो कर नहीं पाते हैं। अब मान लीजिए बोलना है तो फिर करेंगे तो प्यास और भूख तो लग ही जाएगा।
0: जी जी जी जी चलिए बिल्कुल धन्यवाद। चलिए आप नहीं किए तो क्या हो गया, हम भी तो सही ना दीजिए, हम भी हम लोग तो है नहीं है, दीदी के लिए है होता है। जी जी ठीक है, उन लोग करेगा, हम लोग को फल भी मिलेगा उनमें से थोड़ा सा। जी जी तब और सब विशेष हम लोग का मालूम चलिए गया कि आप भी ठीक है हम भी ठीक है। अपना उधर मौसम बता दीजिए थोड़ा।
1: मौसम यहाँ का सुहाना बना हुआ है अभी,
0: मौसम इधर भी है लेकिन धूप है, गर्मी है, गर्मी है, फिर भी ठीक है। चलिए बरसात का मौसम है, कभी धूप कभी छांव, सही है जी। आज हमारे मनपसंद के गाना आज बजा दीजिए,
1: बता दीजिए
0: नजर।

0: यही संग सुना दी है
1: जी जी, और गाना सुनाना भी है।
0: गाना सबसे तो पहले आपको रेडियो रिमझिम संपूर्ण परिवार को और दोस्त में हो गया सिखाने से मामा साबी जी घुमाइए से उत्तम कुमार जी रामलाल प्रभात कुशवाहा जी कृष्ण बगान से अजिन पाया चला गौर पूर्णम से नरेश सोनी दीपक दास उदय मन ठाकरे छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से राजेंद्र यादव भारती पंतलाल गौतम उत्तर मऊ बिहार से प्रदेश से कहिए ना कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से विशेष कर को हमारे नाम कहने पता नहीं तमाम उसको मोहम्मद सलाल अंसारी है मझोलिया को विशेष कर उनको सुनाते हुए अभी आपसे विदा लेंगे। नमस्कार।
1: नमस्कार, रेडियो रंजन में कॉल किए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई लाकी ना?
2: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
1: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
3: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शाटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
4: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
5: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
6: भरोसे वाले से लेंगे,
5: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
6: और कीमत भी।
5: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
7: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
8: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
9: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
10: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
9: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
11: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
9: कॉल करें 85070-32042 पे।
12: Now pick your phone up.
13: Hello?
12: Pick it up, pick it up.
13: Hello?
12: Now pick your phone up.
13: Hello?
14: Jab phone gindi bajti hai to kehte hain hello.
15: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94911। जी हाँ, 80029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
16: नमस्ते
17: जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
16: हम तो बुझे कल खाना नहीं उठेगा।
17: नहीं नहीं उठेगा।
16: और सब बताइए?
17: और सब ठीक है, आप बताइए।
16: मेरा भी ठीक है। खाना ना हो गया है?
17: हाँ, खाना हो गया है, खा के ही आए हैं।
16: चलिए बढ़िया है। अभी तो काम अपना छोड़ कर लगा रहे थे तो पहला बार में कॉल लग गया।
17: अच्छा, चलिए आज तो बढ़िया है।
16: मतलब आज ज्यादा परेशानी नहीं हुआ है? तो मौसम कैसा है गोपालगंज का?
17: अभी तो मौसम सुहाना बना हुआ है गोपालगंज का।
16: इधर भी वैसा ही है। मेरे को गाना सुना दीजिए। अंकुश राजा की आवाज में सुना दीजिए रक्षाबंधन सॉन्ग।
17: अच्छा, अंकुश राजा की आवाज में रक्षाबंधन का सॉन्ग।
16: बहन तुमको कबो ना भुलाए।
17: कौन सा?
16: बहनी तुम तो कबो ना भुलाए, अंकुश राजा की आवाज में।
17: और गाना सुना?
16: सबसे पहले तो आपको, उसके बाद कोनी दीदी को, मनोरमा दीदी को, करिश्मा को स्पेशल में। अभी करिश्मा जी मशीन चला रही है, कपड़ा सी रही है।
17: अच्छा,
16: और जितना रेडियो रेंज है सुन रहे सभी लोग को सुनाना है।
17: ठीक है।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 94।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: अरे कौन सा शो पर फोन लगाए हैं? अभी आ रहा है, एक घंटे लगा रहे हैं फोन।
1: अच्छा, तो बिजी जा रहा हूँ।
0: आप फर्स्ट पर लगाए हैं आज?
1: हाँ।
0: गाना सुन रहे हैं मैडम जी, है ना?
1: नाम बता दीजिए।
0: कनाडा फिल्म का कनाडा फिल्म का जब से शादी आंसू बह रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ।
1: जी जी, गाना तो सही बता रहे हैं, पर आप अपना नाम भी बता दीजिए।
0: बोल लकड़ी दरगाह से बोल रहे हैं मैडम जी, है
1: ना?
0: हमारा नाम है हरिश पटेल,
1: हम
0: लकड़ी दरगाह से सिवान जिला, ठीक है?
1: और गाना सुनाना भी है।
0: हाँ, खुदा रेडियो रिमझिम जितना लोग सुनते हैं उसका कोई खूबी है ना? आज फर्स्ट बार फोन किया है, दो बार तो कम नहीं लगाए हैं, है ना? कॉल किए हैं तब जाकर लगाए आज। एक घंटा लगा रहे हैं, एक घंटे बल्कि 10 मिनट लगा रहे हैं। अब पहले 200 हो गया मोटे मोटी।
1: सब कोई का लगातार कॉल आते रहता है ना, इसीलिए तुरंत
0: समझ में सब गाना बच जाएगा।
1: ये आपको 5 बजे जो शो चलता है 5 से 7 यही हेलो माय चॉइस का,
0: शाम के?
1: हाँ, शाम को मिल जाएगा आज सुनने को, नहीं तो कल शाम को।
0: शाम को ना?
1: आज शाम को भी मिल सकता है सुनने को, सुन लीजिएगा।
0: ठीक है मैडम, नमस्कार।
1: नमस्कार, रेडियो रिमझिम में कॉल किए इसके लिए आपका बहुत बहुत

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
3: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AMZ पर।
5: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
6: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
7: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
6: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
8: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर
9: Now pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello. Pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello.
10: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो।
11: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ, 80-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: हेलो
13: हेलो
12: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमझिम 90.4 FM में।
13: जी नमस्ते मैम।
12: नमस्ते
13: जी, क्या हमारा इंदा बोल।
12: कैसे हैं आप?
13: बढ़िया है जी, हम आ रहे थे मैम।
12: जी अच्छे हैं।
13: अरे तब आए तो पूजा है ना मैम?
12: पूजा है, पूजा का
13: आज वो क्या बोलते हैं वो नागपंचमी का जो नई पूजा होता है 2 दिन बाद।
12: हाँ हाँ, सप्तमी
13: वही पूजा। मेरे घर पर भी पूजा हो रहा था, वो मेरी मैडम फोन करी, बोली की आ जाइए पूरी खीर खाने के लिए।
12: मेरे यहाँ भी हुआ है।
13: और बताइए क्या हाल चाल है?
12: और सब ठीक है। नहीं, सावन में थोड़ा ज्यादा ही पूजा होता है।
13: जब वो जैसे नाग पंचमी होगा तैसे वो तो पूजा हम लोग भी बढ़िया है, एकदम मस्त है, तंदुरुस्त है एकदम। मंगलवार के दिन गाड़ी पकड़ेंगे यहाँ से, चले आएंगे अपने देर में।
12: जी जी आइए। और बताइए आज गाना कौन सुनना चाहते हैं?
13: गाना तो सुनना है वो नीलकमल का राखा बंधन वाला। क्या है क्या उसको गाना?
12: गाड़ी से
13: गाना तो नहीं आता है लेकिन गाते
12: हैं। गाइए ना, अच्छा लगेगा।
13: तू ना चलाई देख के ये नया सॉन्ग है मैम।
12: हाँ।
13: अभी नया अभी गाना ये लॉन्च हुआ है नीलकमल का।
12: गा रहे हैं, बोलते हैं कि हम गाते ही नहीं
13: हैं। नहीं मैम, मैं तो घर पे मैं अरजाम गा रहे, तो जो अरजाम है फिर तुम नहीं होता है हरे रामा हरे कृष्णा वाला?
12: हाँ होता है।

0: जाना है, वो गाने के लिए जाते हैं हर जहाँ।
1: अच्छा जी,
0: लेकिन लेकिन मेरी मम्मी बोलती है कि बेटा ये तो करने से धर्म कर्म नहीं चलेगा बेटा, 2000-3000 रुपए मिलता है तुम्हें 24 घंटा का। हम मम्मी से बोलते हैं कि मम्मी उतना कम है बताओ 24 घंटा में, भगवान को तो भजन हम गा रहे हैं, कौन सा स्टेज पे डांस कर रहे हैं।
1: ये तो सही बात।
0: मम्मी बोलती है कि नहीं बेटा ये मत करो, तुम बेशक दुकान उकान कर लो सब्जी जी का अपना, आटा उटा चलेगा तो आटा उटा में जाना। और बताइए खाना वाना हो गया है रूपों में?
1: हाँ खाना तो हुआ है।
0: अच्छा, सबसे पहले आपको ये गाना सुनवाना चाहते हैं, ठीक है
1: जी जी।
0: जितना रेडियो रंजन सुनने वाले हैं सब उड़ता होगा। एक मेरे अभिषेक भाई है, वो बनारस के हैं, गाजीपुर का, वो मेरा हुआ का गाँव का यूपी का उत्तर प्रदेश का
1: जी।
0: वो बोल रहे हैं कि गाना तो बहुत बहुत गाना फेवरेट है, फरमाइश ये हो भाई।
1: हाँ।
0: हम बोले रक्षा बंधन का है ना यार।
1: हाँ इसीलिए। चलिए फिर गाना प्ले करते हैं।
0: ठीक है, ओके मैम,
1: नमस्ते। रेडियो रंजन में कॉल किए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ठीक है, ओके।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपके रेडियो
1: जी। भारती जी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: क्या हाल चल रहा है?
0: हमारा हाल चाल तो ठीक बरबो बताइए।
1: हाँ ठीक है बानी, लगातार कॉल हुआ और लाग गए बैठे। हम दिल्ली से राम बोलता नहीं। बढ़िया से नाश्ता पानी कैसे हो गया कि ना?
0: हाँ सब पूजा रहा था, जल्दी जल्दी में लेट हो गया तो ना ही कहीं नहीं आज।
1: हाँ हम देखा था नहीं कि 11 पहुँच गया, पता ना भारती जी रास्ते में गाड़ी का मौसम कैसा होता है?
0: मौसम तो कभी धूप कभी छाँव और ये हवा भी बहुत
1: कुछ हवा इनका भेजना थी, हवा नहीं खेल चलती यहाँ दिल्ली में बहुत उमस हुआ है, समझ नहीं
0: उमस।
1: बादल तो छेले बा लेकिन बारिश हो जाए तो
0: बारिश तो मैंने उमस
1: बात
0: हो जरूर।
1: उमस वाला जो दिन बता कार्तिक महीना तक उमस वाला चल गया, मौसम ऐसा होकेला धान के खेती के लिए होकेला, जब तक उमस ना हो सही से तो धान बढ़िया से अपन फसल जो पकाव ना कर माने फसल के अनुसार से मौसम जो होकेला तो हर समय के नहीं थे ये अपना हिसाब से जो भी मौसम बा। तो आज के गाना बैठे समझे
0: नहीं
1: हम कहा तू खाइया हो या बाहर न जाइया। सबसे पहले रउआ के सोनू भाई बानी और जो सवाल बाकी जगह है और भी कॉल कर जोड़ी तो नमस्कार और हम मिला था नहीं अपने के दोपहरिया में
0: रेडियो रूम से मैं कॉल करनी है खातिर बहुत बहुत धन्यवाद
1: अपने के भी धन्यवाद और दिन शुभ हो रहा।

0: बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0975-675।
4: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
3: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R, अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में, कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-556-97-644।
7: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009-94-911। जी हाँ, 8009-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
8: हेलो, सलाम, नमस्कार।
9: नमस्कार, वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजन 90.4 FM में।
8: जी मैम, कैसी हैं?
9: मैं अच्छी हूँ, बताइए आप कैसे हैं?
8: हम भी अच्छे हैं मैम। आज लेट से चालू हुआ तो आज 4 मिनट लेट हो गया था,
9: नहीं
8: लगा नहीं, हमारा
9: बिजी जा रहा होगा।
8: नहीं, पहले बंद था और 2 मिनट के बाद हो गया।
9: क्या हो रहा है अभी?
8: अभी तो टाइम से देखकर आपके पास कॉल लगा रहे थे, पहले से ही 10 मिनट काम सब छोड़ करके आपके पास।
9: चलिए सब तो बढ़िया है, नाश्ता कर आते हैं।
8: जी मैम, हम लोग तो नाश्ता करके ही आते हैं।
9: अच्छा, चलिए सब बढ़िया है।
8: आता हो गया मैम, चलिए। तो आज वो रिकिट नहीं चला मैम?
9: कौन सा?
8: कल वाला रिकिट जो चलता है ना सुबह में।
9: वही तो रिपीट चल रहा है?
8: नहीं नहीं चल रहा है अभी वो वाला, पहले माई चॉइस वाला,
9: वही सेम रिपीट चल रहा है।
8: हम 9 बजे सुन रहे थे तो नहीं चल रहा था,
9: तो थोड़ा 1-2 मिनट इधर उधर हो जाता है, हो गया। वही चल रहा है
8: बस अलग अलग गाना बज रहा था लेकिन वो रिपीट नहीं चल रहा था, लगता है कुछ दिक्कत हुआ था।
9: पता नहीं लेकिन अभी तो देखी हूँ, आई हूँ मैं भी, सुनी हूँ तो नहीं चल रहा है।
8: चलिए तो गाना फरमाइश करते हैं, कितने नंबर पे है मैम? हम
9: 3 नंबर पे।
8: अच्छा मैम, वो गाना का फरमाइश ये है, गाना है मेरे महबूब कयामत होगी।
9: मेरे महबूब कयामत होगी,
8: हाँ यही बोल रहा।
9: और गाना डेडिकेट है?
8: डेडिकेट है भारत में रहने वाली भारती में यानी आपको और सभी आरजे को।
9: सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4।
8: धन्यवाद मैम, बाय
9: बाय।
10: है दोस्तों इश्क का दस्तूर ही कुछ ऐसा, जो इसको जान लेता है

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: नमस्ते दीदी,
1: नमस्ते।
0: क्या हाल है?
1: मेरा ठीक है, आप अपना बताइए।
0: मेरा भी ठीक है।
1: तो क्या हो?
0: खाना खा कर आए?
1: हाँ
0: रहे हैं क्या?
1: हाँ हाँ गणेश।
0: 2 दिन से टाइम नहीं मिला तो नहीं जुड़ रहे हैं। कल भी नहीं जुड़े हैं, परसों भी नहीं जुड़े हैं। मेरा फरमाइश था सोमवार के दिन, एक हफ्ता कम्प्लीट हो गया तो मंगलवार बुधवार हो गया, 10 दिन हो गया मेरे फरमाइश के लिए। टाइम नहीं मिल रहा है, कल भी टाइम नहीं मिला है, परसों भी टाइम नहीं मिला है।
1: आपका फरमाइश आज ही ना कम्प्लीट।
0: संडे वाला दिन तो स्पेशल है,
1: करिश्मा जी का बुधवार को, आपका मंडे को।
0: सोमवार के संडे संडे के दिन जो फरमाइश भेजेगा, जितना लोग भेजेगा सब लोग का बजेगा। बस टाइम रहना चाहिए, टाइम रहेगा तो बजेगा, नहीं रहेगा तो नहीं बजेगा। तो आपका घर की पूजा हो गया है?
1: नहीं।
0: कब पड़ेगा?
1: होगा शुक्रवार को।
0: अच्छा, हम लोग का तो आज,
1: मतलब आज पूजा होता है लेकिन शुक्रवार को ये माता जी के मंदिर में कढ़ाई चढ़ता है।
0: अच्छा, और सब बताइए?
1: और सब ठीक है। फरमाइश बता दीजिए, आज कौन से गाने की है?
0: आज तो कॉल कर रहे हैं तो आप बेजी, इतना बेजी, अभी 11 बजे से 5 बजे पहले ही से कॉल लगा रहे थे। पता नहीं कब मोबाइल खुलता है, अभी फोन लगाए तो बिजी बिजी बिजी बता।
1: मोबाइल खुल जाता है।
0: मनोरमा दीदी आई?
1: हाँ वो भी आई है।
0: अच्छा, कल भी आपके पास थी क्या मनोरमा दीदी?
1: नहीं।
0: तो अभी आती है सीखने के लिए आपके पास?
1: नहीं, कभी कभी एक साथ बैठते हैं, अच्छा लगता है।
0: अच्छा, मतलब सर बोलते हैं कि चल आज सीखने के लिए क्या?
1: क्या गाना बता दीजिए मुझे।
0: अब आप ही बताइए, फोन लगाए। हाँ करिश्मा झगड़ा कर रहे हैं दीदी मैं बतियाएंगे, आप बताइए। इतना देर से तो परेशानी हम झेल रहे हैं, बोले कि नहीं दीदी हम बतियाएंगे।
1: कोई बात नहीं, वो आप कर दीजिए या वो कर दे, बात देखी है, फरमाइश सुन लीजिएगा लोग अपनी।
0: तो मेरे गाना बजाना है नीलकमल सिंह की आवाज में, देव भाई सॉन्ग।
1: कौन सा गाना? गाना बता दीजिए।
0: जब साथ के देखे ना रहे तो प्यार का है कोई। सबसे पहले आपको, मनोरमा दीदी को, सोनी दीदी को, करिश्मा को, पूरा रेडियो झूल कर रहेगा। नहीं, नीलकमल सिंह के आवाज में ये गाना।
1: ठीक है, फिर
0: ठीक है,
1: गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।
0: नमस्ते
1: नमस्ते।

0: श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029994911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाजत। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: घर में कोई नहीं मान रहा है, तुम मान जाओ, भूल जाओ मुझे।
5: याद करोगी मुझे?
4: जब जब बारिश होगी तब।

0: भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए, स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7-14-86-164।
2: ठक ठक
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: सुनिए सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
0: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765655750।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए, गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़ और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।

0: सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92-8-99-22-5-67 या 97-7-14-86-164।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
2: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
3: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
2: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
4: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
5: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
4: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
6: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
7: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
8: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
7: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
8: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
7: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
8: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
7: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
9: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9956 या 9956 57902।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई संतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
4: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
5: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
4: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
5: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
4: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
6: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
7: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
6: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
7: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
6: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
7: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। All right.

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
2: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
1: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए और एक्सट्री 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97714861.
5: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
6: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034648652 पे।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
8: All right.

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
6: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
7: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रूपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
6: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
7: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
6: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
8: प्रसाद क्लिनिक।
9: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
8: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
9: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
10: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98-527-88-291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98-527-88-291 या 95-238-74-088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी लड़ाई एक गाथा जो हजारों सालों से दिलों में जीवित है, महाभारत। पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष, रिश्तों की उलझने और जीवन के सबसे कठिन सवाल, महाभारत की कथा हमें सिखाती है कि सही रास्ता चुनना आसान नहीं होता। कभी अर्जुन के शस्त्र उठाने के पहले की दुविधा, तो कभी श्री कृष्ण के गीता का उपदेश, हर मोड़ पे नए प्रश्न और उनके जवाब, धर्म, युद्ध और जीवन के असली अर्थ की खोज। सुनना ना भूलें हर शुक्रवार शाम 7 बजे से रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। सुनो दिल से।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
3: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
2: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HFD लक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए और एक्सट्री 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
2: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97714-86164।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
6: All right.

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
0: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
0: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है। सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स। BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
5: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
1: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
0: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
1: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
6: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
7: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
4: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
4: कॉल करें 7070-75-6300 या 7070-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
8: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HFD लक्स 76,275 रूपए, Glamour X 1,01,354 रूपए और X3 125R 1,10,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7146-164।
1: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
2: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
1: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9939365923।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
6: जी हाँ, कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
5: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
4: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
5: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमलश्री में,
6: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
7: जी हाँ, कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
8: ऑलराइट।

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
6: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
7: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
9: धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी लड़ाई एक गाथा जो हजारों सालों से दिलों में जीवित है, महाभारत। पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष, रिश्तों की उलझने और जीवन के सबसे कठिन सवाल, महाभारत की कथा हमें सिखाती है कि सही रास्ता चुनना आसान नहीं होता। कभी अर्जुन के शस्त्र उठाने के पहले की दुविधा, तो कभी श्री कृष्ण के गीता का उपदेश, हर मोड़ पे नए प्रश्न और उनके जवाब, धर्म, युद्ध और जीवन के असली अर्थ की खोज। सुनना ना भूलें हर शुक्रवार शाम 7 बजे से रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। सुनो दिल से।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
10: All right.

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 8470103092 या 9765665750।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894-18744।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
7: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
8: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
7: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
8: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
7: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान लिया।
8: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
9: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
10: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड गोपालगंज।
11: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7-14-86-164।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
7: ठक ठक।
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
10: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर JJ शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर JJ शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर, गोपालगंज।
11: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
12: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67-666।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
13: हम हैं इस पल यहाँ।

0: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
2: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
1: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
2: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
3: धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी लड़ाई एक गाथा जो हजारों सालों से दिलों में जीवित है, महाभारत। पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष, रिश्तों की उलझने और जीवन के सबसे कठिन सवाल, महाभारत की कथा हमें सिखाती है कि सही रास्ता चुनना आसान नहीं होता। कभी अर्जुन के शस्त्र उठाने के पहले की दुविधा, तो कभी श्री कृष्ण के गीता का उपदेश, हर मोड़ पे नए प्रश्न और उनके जवाब, धर्म, युद्ध और जीवन के असली अर्थ की खोज। सुनना ना भूलें हर शुक्रवार शाम 7 से रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। सुनो दिल से।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 8470103992 या 9765065750।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं,

0: रोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198869793।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
4: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
5: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
4: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
5: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
6: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
7: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
6: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोड़ गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
0: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
0: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
6: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
0: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
7: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
0: कॉल करें 85070-32042 पे। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
5: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
5: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
3: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर JJ शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं।

0: है सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67600।

हेलो, नमस्ते, प्रणाम, नमस्कार। कैसन बानी रउआ सबे? उम्मीद कर तनी रउआ सबे ठीक होखेम। हम है रउआ सबके दोस्त भारती और रउआ सब सुनतनी रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और इस समय हो गइल बा रउआ सबके कार्यक्रम भोजपुरिया एक्सप्रेस के। त ट्रेन निकल चुकल बिया। यदि रउआ सब सवार होखे के चाहत हैं तो हमार व्हाट्सएप नंबर 9852782191। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़े के चाहते हैं तो हमारा नंबर बा 72 77 16 65 96। तो बिना देरी के लिए कार्यक्रम की शुरुआत कर जाऊँ। तो रउआ सब खाती जब तक हमारा साथे सब केव जुड़े था तब तक रउआ सब खाती एक गाना प्ले करते नहीं और बहुत ही खूबसूरत सा गाना बा। तो गाना सुनी लो और बताई लो गाना कैसा लागल रउआ सभी के।

तो अभी रोवा सब सुनत रनिया हमरा तरफ से एक प्यारा सा सॉन्ग और गाना के बोल रहा दीदिया के कपड़ा और एक साथ ही बढ़ल जाइए आगे। और यहाँ हमरा पास काफ़ी सारा मैसेज पहुँच चुकल बा जे कि लिखत हनी कि मैम नमस्कार प्रणाम और हमारा नाम अखिलेश महताब है और हम इजरा नवादा संग्रामपुर पूर्वी चंपारण से बोलत हनी। और भारती मैम गाना सुने के बाद हमरो के एगो गाना जरूर सुना दें तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखत हनी हाय तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखत हनी कि हाय हेलो हम कुंदन कुमार बिहार मुजफ्फरपुर से और गाना सुने के बाद तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और आपके भी गाना प्ले हुई उससे पहले यहाँ काफ़ी सारा मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखत हनी भारती जी हर हर महादेव न्याय पीरा न्याय पारा विरई जिला बालोद छत्तीसगढ़ से लीला साहू और हमरो एगो गाना सुने के बाद गाना प्लीज़ बजा दें तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और इससे पहले एगो गाना के फरमाइश पहुँचल बा जे कि लिखत हनी हेलो मैम सरफरोज अली गोपालगंज से जुड़ल बानी और लिखत हनी कि पवन सिंह की आवाज़ में एगो गाना सुना दें बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और लिखत हनी गाना के बोल ह ना तू कुछ कहा ना हम कुछ कहें और बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुँचल बा। तो चलिए बिना देरी के लिए यहाँ के गाना प्ले कर जाओ और इन्जॉय कर जाओ रेडियो रिमझिम 90.4।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।

ब्रेक के बाद फिर से स्वागत बा रउआ सबके भोजपुरिया एक्सप्रेस में। तो रउआ सब सुनत तनी रेडियो रिमझिम 90.4 FM। तो बिना देरी के लिए आगे बढ़ल जाओ और ये हमरा पास यहाँ काफ़ी सारा मैसेज पहुँचल बा जेकि लिखत आनी कि मुजफ्फरपुर से मुमताज़ बेगम और ये दादी बनल बानी ओई की खुशी में गाना सुनाए के चाहत आनी और खुशी और इस समीर के दुआ प्यार और गाना सुने के बावे। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी और गाना के भी। फरमाइश पूरा कर जाइए उससे पहले यहाँ मैसेज पहुँचल बा जेकि लिखत है नी हेलो भारती मैडम जी नमस्कार मैडम जी कैसन बानी गुड आफ्टरनून मैडम जी हम प्रीति राय दास विलेज लकड़ी दरगाह डिस्ट्रिक्ट सिवान बिहार से जुड़ल बानी और लिखत है नी हमरो एगो गाना सुना दें। तो जी बिल्कुल रो गाना के फरमाइश के पूरा कर जाइए और रो बहुत बहुत स्वागत बा और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जेकि लिखत है नी भारती जी नमस्कार सचो का जो गाना चलता में सच बा का और दिलीप राम तो जुड़ल बानी बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। यहाँ मैसेज पहुँचल बा जेकि लिखत है जबरदस्त गाना चलता और बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यहाँ पे गाना के फरमाइश पहुँचल बा जेकि लिखत है कि हाय भारती दी का हाल बा गुड आफ्टरनून हम गणेश कुमार पिपरा नारायण से जुड़ल बानी और गाना सुने के चाहत नी और गाना के बोल बा आँखी के कजरवा। शिल्पी राज के तो चलिए बिना देरी के लिए गाना प्ले कर जाओ एंजॉय कर जाओ रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

तो अभी सुना त्रिया सा हमने के अवधेश प्रेमी के और शिल्पी राज के गाना और गाना की बोल रहा लांखी के कजरवा और यहाँ लिखा तो नहीं कि सुपर सॉन्ग दी और गणेश कुमार जी की तरफ से मैसेज पहुँच गई बा और लिखा तो नहीं यहाँ धनेश जी की भारती जी भोजपुरिया प्रणाम बा हम धनेश कुमार मिश्रा दिल्ली से और हमरो एगो गाना के फरमाइश बा गाना पूरा गाना सुना दी और कैसन बानी तो हम तो ठीक बानी रहुआ बताई रहो।

0: कैसन बानी। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखत है नी भारती जी, भारती जी राकेश भारती बक्सर से जुड़ चुकल बानी, तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखत है नी हेलो हाय नमस्ते भारती जी, हम श्याम सुंदर संग्रामपुर से और हमरो एगो गाना सुने के बा, तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखत है नी हेलो मैम गाना सुने के बा वे, और विक्रम चौहान जुड़ चुकल बानी, तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और सब के गाना के फरमाइश के पूरा कैल जाइए, उससे पहले यहाँ गाने के फरमाइश पहुँचल बा जे कि लिखत है नी राहुल कुमार आमा मौजम से जुड़ल बानी, तो गाना सुने के चाहत है नी। और गाना के बोल पहुँचल बा यहाँ पवन सिंह की आवाज़ में, अखिया में कौन जादू चुरा के रखले बाड़ो, और बहुत ही खूबसूरत गाने के फरमाइश बा और डेडिकेट करे के चाहत है नी रहुआ के और भैया के। तो चलिए बिना देरी के लिए रुआ गाना के प्ले कर जाऊँ और इन्जॉय कर जाऊँ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में पवन सिंह की आवाज़ में।
1: संसार से सुंदर सिंगार सहज

0: अभी हमने के सुना तनिया से राहुल जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत से गाना, अखिया में कौन जादू चुरा के तू रख ले बाड़ू, और पवन सिंह की आवाज़ में, और यही के साथ ही बढ़ल जी आएगी। और यहाँ हमारे पास काफ़ी सारे अभी भी मैसेज पहुँचल बा, जो कि लिखा था नहीं कि तनी गाना सुने के बाद कौन, और गाना के बोल यहाँ पहुँचल बा, लिखा था नहीं कि संतोष कुमार पटेल सूरत से जुड़ गए बनी, तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी, और आपके भी गाने की फरमाइश पूरा कर जाइए। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जो कि लिखा था नहीं भारती जी सोनी मैम के बिना भोजपुरिया सो अधूरा लागत आ, तो जी बिल्कुल अधूरा तो लागत आ, अब हम कहीं कह सकता नहीं। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जो कि लिखा था नहीं हेलो भारती जी प्रेम मधेसिया पडरौना कुशीनगर उत्तर प्रदेश से जुड़ चुकल बानी, और लिखा था नहीं भारती जी नमस्कार कैसन बानी शुभ दोपहरिया बा सब केहू के, भारती जी हमहू के आज भोजपुरिया गाना सुना देम नदी, और गाने की यहाँ बोल पहुँचल बा तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी, और आपके भी गाना प्ले हुई उससे पहले यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखा था नहीं बहुत ही खूबसूरत गाना चला था अखिया में कौन जादू छुपा के तू रख ले बड़ू पवन सिंह के, और मैसेज करे वाला वानी सरफरोज अली जी। और यहाँ हमारा पास मैसेज कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँचल बा, तो चलिए लिखल जाऊँ कॉल और जानल जाऊँ का बा यहाँ के फरमाइश। हेलो नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत बा आपके रेडियो रमजन 90.4 एफएम में।
1: हेलो
0: हाँ बता दी कौन सा गाना सुने के बाद। हेलो टुनटुन यादव के कौन सा गाना, हेलो कौन सा गाना बता दी। हम अपना मन से रो ना बताए रोगा कौन सा गाना सुने के बाद, रोवा फोन के लिए बन तो रोवा बताती तो अच्छा लगी। हाँ हाँ बताएं जल्दी बताएं। अच्छा चलिए गाना प्ले करते नहीं रोवा खाती रेडियो रंजन। हेलो गाना प्ले करते नहीं सुनत रही रेडियो रंजन 90.4 एफएम।

0: राज के किंग मेकर है।
1: अरे पूरा इंडिया हिली बाबू, खाली तू देखो तो जा।
2: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
3: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
4: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
5: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
6: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
4: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
4: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
6: कॉल करें 87894 18744।
7: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
8: भरोसे वाले से लेंगे,
7: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
8: और कीमत भी।
7: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
9: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
10: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
11: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
12: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
11: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड गोपालगंज।
13: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
11: कॉल करें 85070-32042 पे।
14: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
15: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
14: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।

ब्रेक के बाद फिर से स्वागत बरोगा सबके भोजपुरी एक्सप्रेस में। तरोगा सब सुनत रहनी रेडियो रंजन 90.4 FM। तो बिना देरी के लिए बढ़ल जाऊँ आगे। और यहाँ हमारा पास काफ़ी सारा मैसेज पहुँचल बा जी की लिखता नहीं कि शमशाद अली उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद से मेरा हमरो एगो फरमाइश बा और भोजपुरी सॉन्ग सुनने के बाद। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी और आपके भी गाने के फरमाइश पूरा कर जाए। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जी की लिखत रहनी भारती जी नमस्कार, गाना सुने के बा और लिंक भेज दिले बानी और सुनाए के बा सोनू भाई के, राजकुमार पांडे जी के, कमरान भाई, सबीता जी, बबीता जी, गुड़िया जी, गजला जी, गजाला जी, अख्तरी जी, अहमद भाई, खुशबू जी, सागिर अंसारी, आजाद भाई, सन्यासी भाई, समीर भाई, मुकेश भाई, गड्डा भाई, रोशनी जी, वीरेंद्र भैया और दिलीप राम दिल्ली से। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जी की लिखत रहनी हमरो गाना बजा दी और मुन्ना खान जुड़ल बानी। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी और सबके गाना प्ले कर जाइए। उससे पहले यहाँ मैसेज पहुँचल बा प्रीति जी के तरफ से और प्रीति रायदास विलेज लकड़ी दरगाह डिस्ट्रिक्ट सिवान बिहार के रहे वाला बानी और गाना सुने के चाहते नहीं और गाना के बोल यहाँ पहुँचल बा और गाना के बोल बा एगो नेमुआ नेमुआ दो चार मिर्ची लाए दो छोटी से छोटी में। तो बहुत बहुत स्वागत बा और चलिए और बिना देरी के लिए गाना के प्ले करते नहीं और

और यहाँ प्रीति जी की तरफ से मैसेज पहुँच गए बा, जे कि लिखत है नहीं कि गाना सुनत रही और इन्जॉय भी करता नहीं। और यहाँ श्याम सुंदर जी की तरफ से मैसेज पहुँच गए बा कि थैंक यू गाना बजाने के लिए दीदी धन्यवाद। तो दोनों जानी के एक एक फरमाइश रहा, वही से प्ले कर देनी है, इन्जॉय कर लो दोनों जानी अपन।

0: और यहाँ अभी गाना चलत रहा प्रीति राय जी की तरफ से और बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश रहा था। ठीक है साथ बढ़ल जाइए आगे और यहाँ हमारा पास कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँचल बात तो चली लिहल जाऊँ कॉल और जाना जाऊँ का यहाँ के फरमाइश। हेलो
1: हेलो
0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमसन 90.4 एफएम में।
1: जी धन्यवाद। नमस्ते भारती जी, कैसी हैं?
0: नमस्ते मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
1: हम भी बढ़िया बानी और आज तो भोजरिया सोचला तो भोजरी हम बात करी, हम तो जल्दी से हिंदी बोल देनी है।
0: अच्छा जी ना रो हिंदी बोलनी हम भुला गई नहीं है की भोजपुरी एक्सप्रेस चला था।
1: कोनो बात ना खोला कबो कबो। अब नाम बताए के पड़ी कि पहचान ले ले बनी बताए।
0: हम तो पहचानते बनी रहुआ परिचय दे दी सारा श्रोतागण लोग के।
1: परिचय तो श्रोतागण लोग भी हमरा के पहचानते होई।
0: सबके ऊपर से
1: हम बता रही हम बनी रहुआ से के रेडियो दो साल जे सोनी और आज हमके भी गाना सुनने के बारे से जुड़नी है। वैसे तो सो हम रोजे सुने नहीं लेकिन कुछ बिजी बानी जाना को समझा से जब कॉल ना कर पाए नहीं लेकिन अभी हमरा समय मिल गया तो कॉल कर लेनी है।
0: तो और सब ठीक बने सुनी जी?
1: जी जी सब बढ़िया बात एकदम मजा में कटा था।
0: तो बता दी कौन सा गाना सुने?
1: दीदिया के कपड़ा।
0: अभी तो शुरुआत यही से कर ले रही है।
1: अच्छा गाना चल गेल बगा।
0: हाँ
1: तो गाना सुना दी कथाई रंग की कुलिया। लेकिन गाना बड़ा निमन बाटे।
0: थोड़ा गा के सुनाएं कुछ।
1: याद नहीं है पूरा गाना अभी हमको ध्यान नहीं था, नाम बस याद बटे कि गाना के नाम होते कथई रंग की कुलिया ले करी हम समझ जाए कौन गाना हम बता दें।
0: अच्छा देश में निकला होगा चांद इतना हनु
1: वेट एक नाम एक मिनट रुकी हम बताओ तनी ठीक है हटे गाना
0: फैंस के इतना लिखला पे बहुत सारा गाना आता है।
1: एक मिनट वेट करिए हम बताओ तनी एक एकर गाना है प्रियंका सिंह के गाना हटे कथैया रंग की कुलिया गाना के नाम है।
0: ठीक बात चलिए
1: धन्यवाद।
0: ओके जी प्ले कर दिल बनी एंजॉय करिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: धन्यवाद।

तो अभी हमने क्या सुना त्रिनिया सन सोनी आरजे जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत से गाना कथई रंग टिकुलिया है और बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग रहा। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखा

धनेश जी की तरफ से मैसेज पहुंचा बल लिखा था नहीं, हमारे प्रिय आरजे सोनी मैम के फरमाइश बहुत बढ़िया, हमार जीरा जुड़ा गई और बहुत ही खूबसूरत गाना रहा लावे। और एक साथ ही यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखत है नहीं, नमस्कार भारती जी, अनूप कुमार कुशवाहा निरंजना से, और का हाल बा भारती जी, सॉन्ग प्ले कर दी और गाना के बोल पहुँचल बा, तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यहाँ दिलीप राम जी की तरफ से मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखत है नहीं, सोनी जी का हाल, क्या का हाल बा, तो सोनी जी के तो हाल ठीक बा। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा लिखत है नहीं कि मैडम जी, सोनी मैडम से पूछी कि कब आए मैं स्टूडियो में और शो में, तो ये तो बात सोनी जी और डायरेक्टर सर ही बता सकते नहीं, सब बात हमने के ना बतावे नहीं लो। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखत है नहीं, हेलो भारती जी, हम कृष्ण मोहन सिपाया खास भोजपुरिया प्रणाम बा, हमरो गाना सुनाए के बा, गाना सुने के बाद सुना दी और गाना के यहाँ फरमाइश पहुँचल बा, तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और उससे पहले यहाँ गाना के फरमाइश पहुँचल बा जे कि लिखत है नहीं, शमशाद अली उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद से जुड़ल बानी और भोजपुरी सॉन्ग सुने के बा, और गाना के बोल बा जा ये चंदा ले आवा खबरिया, और बहुत ही खूबसूरत गाना के फरमाइश बा। तो चलिए बिना देरी के लिए रुवा गाना के प्ले कर जाऊँ और इन्जॉय कर जाऊँ रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ई सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ई सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HFD लक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97746164।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: से ब्रेक के बाद रुवा सबके स्वागत बा भोजपुरी एक्सप्रेस में, और यहाँ हमारे पास काफ़ी सारा मैसेज पहुँचल बा। लिखा तनी गुड आफ्टरनून भारती मैम जी, और बिना देरी किए हमरो हाजिरी लगा दी, और यहाँ फरमाइश पहुँचल बा, लेकिन फरमाइश हिंदी गाना के बाद। आज तो हम हिंदी गाना नहीं सुना सकते, कहें इसकी भोजपुरिया एक्सप्रेस है, इसमें भोजपुरी गाना के कोनो फरमाइश कर दी, और भोजपुरी गाना अच्छा होके के चाहें। और मैसेज करे वाला बनी बसंत कुमार ठाकुर, तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यह मैसेज पहुँचल बा जी की लिखा था नहीं कि हेलो भारती जी, हमरो गाना प्ले कर दी और हमरो सॉन्ग सुना दी भोजपुरी एक्सप्रेस में, तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी, और आपके भी गाने की फरमाइश पूरा कर जाए। और यह मैसेज पहुँचल बा जी की लिखा था नहीं, हेलो नमस्ते मैम, राजन कुमार थावे से जुड़ल बानी और परी, और बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी, और यहाँ के गाना सुनने के चाहत नहीं। यहाँ मैसेज पहुँचल बा जी लिखा था नहीं, हाय हेलो गुड आफ्टरनून भारती, रासो लाल सिंह लखनऊ उत्तर प्रदेश से जुड़ल बानी और बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यही के साथ है हमारा पास यहाँ फरमाइश पहुँचल बा जी की लिखा था नहीं कि दिनेश कुमार मिश्रा जी की तरफ से गाने की फरमाइश पहुँचल बा, और बहुत ही खूबसूरत से गाना बावे और गाने के बोल बा, दिल चीर के देख, दिल चीर के देखल तहरे नाम बा। और चलिए बिना देरी के लिए यहाँ के गाना का प्ले कर जाऊँ और इन्जॉय कर जाऊँ रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

अभी हमने के सुनत रहनी असन दिनेश जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत से गाना, और गाना के बोल रहा है दिल चीर के देखला तहरे ही नाम बा। और एक साथ ही बढ़ल जाइए आगे, और यहाँ हमारा पास मैसेज पहुँचल बा जे की लिखत है कि हेलो गुड इवनिंग मैम, और हम टुनटुन यादव विलेज पठरा पैठान पट्टी पोस्ट पठरा जिला गोपालगंज बिहार से जुड़ल बानी, और हमके गाना सुने के बाद बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे की लिखत है काजी हमार गनवा ना बाजी का, तो जी सब केहू के गाना के फरमाइश पूरा कल जाए, पर एक एक करके थोड़ा सब्र रखी लो। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे की लिखत है कि और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे की लिखत है मैसेज करे वाला बानी सनी जी, तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और लिखत है मौसम कैसन बा गोपालगंज के, गोपालगंज के तो मौसम अभी ठीक बावे, हल्का बारिश होतला शायद कुछ देर पहले। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे की लिखत है कि भारती जी हमार फरमाइश रुआ अच्छा लागत है कि ना जरूर बताएं, तो राउर फरमाइश बहुत अच्छा लागल है दिनेश कुमार मिश्रा जी। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे की लिखत है कि हेलो कुंदन कुमार बिहार मुजफ्फरपुर से, और गाना सुने के बाद तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा दिलीप राम जी की तरफ से, लिखत है कि हमार गाना बजा दी, और बहुत ही खूबसूरत गाने के फरमाइश पहुँचल बा सोनू सरगम यादव के आवाज़ में, और गाना के बोल बा फोटो हाँ सगाई के। तो चलिए बिना देरी के लिए यहाँ के गाना प्ले कर जाओ और इन्जॉय कर जाओ रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

अभी दिलीप राम जी की तरफ से सुनत रनियासन बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग और गाना रहला फोटो है सगाई की और एक साथ ही बढ़ल जी आगे और वहाँ की तरफ से मैसेज पहुँच गई बा जे की लिखते नहीं आपसे खूबसूरत से लाइन पहुँचल बा लिखते नहीं कि आपसे रोज मिलने को दिल चाहता है, आपसे रोज मिलने को दिल चाहता है, कुछ सुनने सुनाने को दिल चाहता है, आपके मनाने का अंदाज ऐसा कि फिर रूठ जाने को दिल चाहता है। भारती जी नमस्कार, शुक्रिया गाना चलाए खाती दिलीप राम दिल्ली से। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी और गाना सुननी है रुआ अपन अच्छा लागल है सुन के हमके भी अच्छा लागल और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखत है नहीं कि नमस्ते भारती मैम हमके भी गाना सुने के बा और गाना सुने के चाहता नहीं और बहुत ही खूबसूरत गाने के फरमाइश पहुँचल बा। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जी लिखत है नहीं भारती जी आज हमरा गाना पूरा बजा दियम तो जी और गाना पूरा बजेले रनी है धनेश जी और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जी की लिखत है नहीं हेलो नेम जी रउआ के हम जानता नहीं और मैसेज कई बार शामिल कर चुकल बानी रो गाना प्ले हुई थोड़ा सा इंतजार करी और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जी की लिखत है नहीं हेलो दी कैसन बानी हम विक्की चौहान रामचंद्रपुर से और गाना सुने के चाहते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी और उससे पहले यहाँ हमरा पास मैसेज के फरमाइश पहुँचल बा जे की लिखत है नहीं कि विशाल कुमार कोनहा मोड़ से बोलत है नहीं और गाना सुने के चाहते नहीं और यहाँ गाना के फरमाइश पहुँचल बा और गाना के बोल बा खेसारी लाल के आवाज़ में सुने के चाहते नहीं दिल दीवाना सॉन्ग। तो चलिए बिना देरी के लिए यहाँ के खूबसूरत से गाना प्ले कर जाऊँ और एंजॉय कर जाऊँ रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ, विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9439456 या 9707-06-575।
7: छोटा सा ब्रेक के बाद स्वागत बराबर सबके रेडियो रिमझिम 90.4 FM में और सो चलता भोजपुरिया एक्सप्रेस, और ये हमारा स्टूडियो की घड़ी में बज के 3:54 हो चुकल बात है। चलिए बिना देरी के लिए कार्यक्रम के और आगे बढ़ावल जाओ, और यहाँ हमारा पास मैसेज पहुँचल बात जे की लिखा था कि हेलो मैम नमस्ते, हम निशुकांत राय पचफेरा से, तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और लिखा था नहीं हमरो एगो गाना सुने के बाद सुना दें, और गाना के बोल पहुँचल बा, तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जी की लिखा था भारती जी, रवि तिवारी और हमार और हमार साला हुई धनेश कुमार मिश्रा दिल्ली से, तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी, और आपके भी गाना प्ले हुई पर थोड़ा सा इंतज़ार। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे की लिखत है नहीं, जब भी गाना सुने के मैसेज लास्ट में शामिल होखेला, और लिखत है नहीं कि हेलो भारती जी, करिश्मा कृष्ण मोहन, तो राउर तो मैसेज हम शामिल कर ले रही हैं, और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे की लिखत है नहीं, भारती जी नमस्कार, हम राजकुमार पांडे लंदन से, और हमू सुर से जुड़ गई बानी, तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यहाँ गाना के फरमाइश पहुँचल बा जे की लिखा था नहीं कि सनी जी की तरफ से गाना के फरमाइश पहुँचल बा, और गाना के बोल बा बरसात के माजाला और नीलकमल की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत से गाना, तो चलिए बिना देरी के लिए गाना प्ले कर जाऊँ और इन्जॉय कर जाऊँ रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: का अभी सनी जी की तरफ से सुनत रही हम बहुत ही खूबसूरत से गाना बरसात के माजला और लिखत रही कि बेतिया में बारिश आवता और बहुत मजा आवता। तो एंजॉय करी गाना के साथ साथ बारिश के भी। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखत रही कि मैडम जी नमस्कार, हमनियों के जुड़ गई बनी सन रोगा कार्यक्रम से और कार्यक्रम बहुत ही अच्छा चलत आवे। और यहाँ गीत के बोल पहुँचल बा जे कि लिखत रही कि उमा शंकर, अवंतिका सिंह और अर्चित सिंह रुद्रपुर देवभूमि से जुड़ चुकल बानी उत्तराखंड से। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जी की लिखा तनी प्लीज़ दी हमरो गाना बजा दी। और करिश्मा कुमारी पिपरा नारायण से जुड़ल बानी और बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जी की लिखा तनी अंकित राय गोपालपुर से और हमरो एगो गाना सुने के बाद बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यहाँ हमरा पास कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँचल बात है, चलिए लिहल जाओ कॉल और जानल जाओ का भाई यहाँ के फरमाइश। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत बा आपके रेडियो रमजिम 90.4 एफएम में। का हाल बा? ध्यान देनी है तभी तो उठेनी है। का कही जाओ मैसेज पे तो इतना लोग छाइल बे बरा कि का ही कही जाओ। कॉल थोड़ा बहुत कम आओ था लेकिन कॉल भी ज्यादा ही बा।
1: हां जी कि लेकिन आओ था तो वो के रिसीव करत रहले बारी-बारी से।
0: यहां होला ही नो जब गाना चलत रहला तब कॉल आवेला ना कहनी लोग कि तनी बाद में करी ताकि फोन के वो रिसीव कर पाओ।
1: हां
0: हां तब बता दे।
1: सुनी ना आज गाना सुना दी जैसे कि आज भगनी के हमरा
0: अच्छा। और केकर लड़का भेजवा केकर लड़का भेजवा
1: हमारा भगनी के नाती लगे हम के मान के चलिए।
0: और गाना सुना हो बा?
1: सब कोई तो जुड़ले बा एबरा सब कोई सुनते बा सब कोई सुनी।
0: चली रहा और गाना प्ले कर देले बनी एंजॉय करी रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
1: जी अपनी फुल गाना बजाए तब मजा आ रही।
0: ठीक बा ठीक बा।
1: हां फुल गाना बजाए।
0: ठीक बा।

तो अभी हमने के सुनत रहनी आसन बहुत ही खूबसूरत से गाना और एक ही साथ ही बढ़ल जी आगे और यहाँ हमारा पास मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखत नहीं कि हेलो कुंदन कुमार बिहार मुजफ्फरपुर से जुड़ चुकल बानी और गाना सुने के चाहत नहीं और चलिए रउए गाना प्ले कर दिया जाओ रउआ बहुत ज़्यादा ही बार बार मैसेज के उलट पुलट के शामिल करते नहीं तो चलिए गाना प्ले करते नहीं और गाना बावे नई झुलनी के छैया बलम दुपहरिया बिताई दहो और बहुत ही खूबसूरत गाना के फरमाइश बात है चलिए बिना देरी के लिए रहो गाना का प्ले कर जाऊँ और एंजॉय कर जाओ रेडियो रमजम 90.4 FM में

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
2: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
3: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
6: ब्रेक के बाद फिर से स्वागत बार हुआ सबके भोजपुरी एक्सप्रेस में, और हुआ सब सुनी के चाहत है नहीं रेडियो रंजन 90.4 FM में। तो बिना देरी के लिए पढ़ल जाऊँ आगे, और यहाँ हमारे पास कॉल के माध्यम से फिर मैं इस पहुँचल बा उसे चल लिहल जाऊँ कॉल और जानल जाऊँ कहाँ भाई यहाँ के फरमाइश। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजम 90.4 FM में। हमारे हाल तो ठीक बार हुआ, बताए रुआ कैसन बानी?
7: ठीक बानी, बहुत देर से इंतजार कराओ था।
6: अच्छा जी, बहुत देर से इंतजार करते नहीं। कौनो बात? हाँ
7: बजान तो नहीं
6: रेशमा
7: ने बजान तो नहीं।
6: हाँ हाँ, राहुल सबके आवाज समझ में आ गई बा।
7: अच्छा जी,
6: तो बता दी कौन सा गाना सुने बा?
7: गाना तो राहुल बड़ा बेजोड़ वाला, सही ना का बड़ा छोटा सा काम है।
6: ना ना, इसन कोनो बात नहीं के कुछ गाना बजावल जला सबके उसे हट के थोड़ा लोग के पसंद आओ।
7: हां जी, बड़ा ज्यादा गाना बजेगा रनिया। सोनी मैम से बात हो ले का बोला कि गुड़िया लगा ना बजाला?
6: हां हां, सोनी मैम से बात होत रहा। अच्छा, चलिए कोनो बात नहीं के बता दी, अभी कौन सा गाना सुने?
7: बजाई अपने मन से कोनो बढ़िया गाना।
6: ना ना, रो फोन के लिए बंद रहो, बताए पड़ी
7: सारे गाना तो सही बा।
6: ना अभी बता दी अपना मन से।
7: डीजे वाले बेटी से बात करो, ही बताएगी। मैं गाना बजा दीजिए।
6: बता दी कौन सा गाना?
7: बर्बादी हुई
6: बजा। अच्छा जी, हम सोचते रहनी है क्यों ना कैला साज बर्बादी गाना के फरमाइश। चलिए गाना प्ले करते नहीं।
7: ठीक बा,
6: एंजॉय करिलो रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

तो अभी हमने क्या सुना, त्रिनिया सर रेशमा जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग शिल्पी राज की आवाज़ में, बर्बादी सॉन्ग, और एक ही साथ बढ़ल जी आगे, और यहाँ हमारे पास काफ़ी सारा मैसेज पहुँचल बात जे की लिखत है नी कि हाय हेलो नमस्ते भारती मैम, कहाँ हाल बा हम निशा भारती विलेज उज्वलियल उचका गाँव प्रखंड से हमरो गाना सुना दी और गाना के बोल यहाँ पहुँचल बात, तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यहाँ मैसेज पहुँचल बात जे की लिखत है नी, नमस्ते मैडम जी, हमरा भी गाना बजा देम, और रहीम आलम नरकटिया बाजार से 8 नंबर वार्ड, और सुजाद आलम बेंगलोर मॉडर्न लेडीज़ टेलर, और मीनू बेंगलोर से, सुरेश कुमार जम्मू कश्मीर से, योगेश कुमार फैशन टेलर नरकटिया बाजार से, और बर्बादी हुई बाकी शादी हुई तोरे से, सोनी जी वानी का, और आवाज़ सुन लिया और बहुत दिन हो गया, और बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यहाँ अभी बर्बादी सॉन्ग प्ले कर ले रही है, रुआ सुननी है ना का, और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे की लिखत है नी कि बर्बादी हुई बाकी शादी हुई मोर तोरे से, का बात बा नारी जिंदाबाद झकास सॉन्ग। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे की लिखत है नी कि नमस्ते मैम, कैसन बानी और ठीक बानी नू, हमके एगो गाना सुने एक बार नीलकमल के आवाज़ में, तो बहुत बहुत स्वागत आप बा आपके भी। और मैसेज करे वाला बानी मंजीत कुमार चौहान, और यहाँ पे हमरा पास गाना पहुँचल बा फरमाइश जी की लिखत आनी की नमस्ते भारती जी, हमरो एगो गाना सुने एक बार गाना सुना देम, और गाना की भूल बात मनोज तिवारी की आवाज़ में चट देना मार देने खींच की तमाशा, और रंजीत कुशवाहा महुआ वैशाली से जुड़ल वानी, तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। तो चलिए बिना देरी के लिए रुआ गाना के प्ले कर जाऊँ और इन्जॉय कर जाऊँ रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

और गाना के बोल रहला चट देनी मार देनी खींच के तमाशा और रही के साथ बढ़ल जाइए आगे और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जाइए कि लिखत है नहीं कि मैम सोनी मैम आयल बानी का बताई ना सोनी मैम ना आई रनिया पर कॉल के माध्यम से जुड़ा रनिया और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जाइए कि लिखत है नहीं कि और गाना के बोल पहुँचल बा रहीम आलम जी की तरफ से तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी और यहाँ मैसेज पहुँचल बा कि लिखत है नहीं कि हाय मैम समीर आलम जंगलिया से और सॉन्ग सुने के चाहत है नहीं और बहुत ही खूबसूरत गाने के फरमाइश पहुँचल बा और लिखत है नहीं कि मैम हमरो बजा दी ना तो कॉल कहीं तो कॉल करी हमहूँ बानी जी तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी ना कॉल मत करी और मैसेज शामिल कर ले बानी और ए के माध्यम से और गाना प्ले कर दे और यहाँ मैसेज पहुँचल बा कि प्रेम मधेसिया जी बोले तेने कि अभी ना बाजी नू हमार गाना तो बाजी एक दो गाना और प्ले करे के बावे ओकरा बाद राउर बजा दिखल जाए और लिखा तेने यहाँ हमरो गाना बजा दी भारती जी इंतजार में बैठल बानी तो जी सबके उके गाना एक एक करके प्ले कैल जाए अभी टाइम बहुत ज़्यादा ही बावे और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखा तेने कि रवि जुड़ल बनी बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी और लिखत है नहीं कि हमरो गाना प्ले कर दी और गाने के बोल यहाँ पहुँचल बा और गाना के बोल बा मोहब्बत काहे के बनौला तो चलिए बिना देरी के लिए यहाँ के गाने के प्ले कर जाओ और एंजॉय कर जाओ रेडियो रंजीम 90.4 FM में।

0: अब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
4: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
6: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
5: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
7: ब्रेक के बाद आप सबके स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में, और हमारे स्टूडियो के घड़ी में 4:06 हो रहा बा, और सो चला था भोजपुरिया एक्सप्रेस। तो चले लो बिना देरी के लिए बढ़ जाऊँ आगे, और यहाँ हमारा पास काफ़ी सारा मैसेज पहुँचल बा अभी भी, और लिखत आने की, हाय मैम, वेरी गुड इवनिंग, कैसन बानी, हम हूँ जुड़ गिल बानी और ब्यूटी परवीन गोपालगंज से, हमको हमरों के एगो गाना सुना दी, तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी, और लिखत नहीं अपना पसंद से एगो गाना बजा दी। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखत है नहीं कि हमार गनवा ना बाजी का, तो रघु गाना प्ले कर जाए, ऐसा बात नहीं है कि ना प्ले हुई। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखत है नहीं हम पूजा गोपालगंज से, और हमरो एगो गाना बजा दी, तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी, और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखत है नहीं कि हमार टिकट कन्फर्म कर दी।

और लिखा था नहीं कि हमारा टिकट कंफर्म कर दी थे जी, बिल्कुल रहो टिकट कंफर्म हुई। और यहाँ उससे पहले मैसेज पहुँचल बाजे कि लिखा था नहीं कि जुड़ चुके बनी हमारा साथ उमर शंकर सिंह देवभूमि उत्तराखंड से रुद्रपुर से, और यहाँ गाना के बोल पहुँचल बा और गाना के बोल बा अमुआ महुआ के झूमे डरिया, और बहुत ही खूबसूरत सा गाना बात है। चलिए बिना देरी कैले यहाँ के गाना प्ले कर जाऊँ और इन्जॉय कर जाऊँ। रेडियो रिमझिम 90.4।

0: और अभी हमने क्या सुना था रनिया हसन उमा शंकर जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत से गाना और रही के साथ ही बढ़ल जी मैसेज की तरफ। और यहाँ शंकर जी की उमा शंकर जी की तरफ से मैसेज पहुँच गई बात जी की फीडबैक मैसेज पहुँचल बात चली सुनल जाओ।
1: भारती मैडम आपने हमारा गीत सुनाया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अवंतिका सिंह है, मैं देवभूमि उत्तराखंड से बोल रही
0: हूँ। और बहुत ही प्यारी सी आवाज़ में मैसेज पहुँची हुई थी और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि उत्तम सोनी जी जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं कि मैम ट्रेनवा सासा मूसा से कब आइल हम हूँ बैठल बानी जाए के उत्तराखंड। और ये बात तो उमा शंकर जी से पूछे के पड़ी कहीं से कि वहीं के उत्तराखंड से जुड़े नहीं। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे की लिखत आनी की अखिलेश शर्मा पंकज शर्मा सुन अखिलेश दशरथ शर्मा जी जुड़ चुकल बनी तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचल बा जे की लिखत आनी नमस्कार मैडम जी आज बहुत दिन बाद जुड़ल बानी हमरो गाना बजा देम और लिंक भेजत आनी। और रमेश जी जुड़ल बानी हमारे साथ तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे की लिखत आनी कि सुनी जी गुड आफ्टरनून और नाम उपेंद्र कुमार अहिरौली दन कुशीनगर उत्तर प्रदेश से और हमरो एगो गाना सुने के बाद बहुत बहुत स्वागत बा आप सबके भी। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जी की लिखत हैनी कि हेलो हाय भारती जी कैसन बानी और सोनालाल और सोनाली गोपालगंज से और हमरो एगो गाना सुने के बाद बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जी की लिखत आनी कि अनूप कुमार कुशवाहा निरंजना से जुड़ल बानी और लिखत आनी गाना सुने एक बार और गाने के बोल बाल लली पॉप लागेलू। तो चलिए बिना देरी के लिए और गाना के प्ले कर जाऊँ और इन्जॉय कर जाऊँ रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: अभी हमने सुना त्रिनी हसन पवन सिंह की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत से सॉन्ग लॉलीपॉप लागेलू और मैसेज करे वाला रनी हाय अनूप कुमार यही के साथ बढ़ल जाइए आगे और यह मैसेज पहुँचल बा जी कि लिखत हनी कि फीडबैक मैसेज पहुँचल बा उमा शंकर जी की तरफ से तो चलिए सुनल जाओ कहा बावे
1: अंकल जी आप किसी भी ट्रेन में बैठ के आ जाइए उत्तराखंड मेरा नाम अवंतिका सिंह है मैं देवभूमि उत्तराखंड से बोल रही हूँ
0: तो उत्तम सोनी जी के खातिर मैसेज रहला और कोनो भी ट्रेन में रोबा बैठ के जा सकत है नहीं और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जी की लिखत है नहीं कि और यहाँ मैसेज पहुँचल बा रोबा कैसन बानी तो बहुत अच्छा बानी हम हूँ और यहाँ लिखत है नहीं कि हमार दोस्त ट्रेन पर बैठे हुए हैं थोड़ा धीरे चलाइएगा कहीं गिर ना जाए और उत्तम सोनी जी खातिर मैसेज पहुँचल बा और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखा तनी भारती जी हम अपन नाम बताल भूल गए रनिया हमार नाम रमेश थावे से बानी तो जी बिल्कुल राउर नाम शामिल कर ले रनिया हम और एक बार फिर से राउर बहुत बहुत स्वागत बा और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखा तनी हेलो मैम गाना सुने एक बार पवन सिंह की आवाज़ में और विक्रम चौहान जुड़ चुकल बानी और लिखा था नहीं कि गाना के बोल बा पियर फराक वाली और सॉन्ग प्ले कर दी तो चलिए बिना देरी के लिए रहो गाना के प्ले कर देनी और इन्जॉय करी रेडियो रिमझिम 90.4 FM में

0: विक्रम चौहान जी की तरफ से मैसेज पहुंच गया है, लिखा तो नहीं, थैंक यू गाना बजावे खाती।
1: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
2: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
1: ई बात बा तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
3: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
4: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
5: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
4: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
5: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
1: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
5: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
1: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
5: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
1: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
6: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
7: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
6: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

0: छोटा सा ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत बा एक बार फिर से सब क्यों के और रोवा सुना था भोजपुरी एक्सप्रेस और यहाँ मैसेज काफ़ी सारा पहुँचल बा जे कि लिखा था नहीं कि गुड इवनिंग मैम और गाना सुने के बाद तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी और यहाँ कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँचल बा तो चलिए लिहल जाऊँ कॉल और जानल जाऊँ का भाई यहाँ के फरमाइश। हेलो जी बहुत बहुत स्वागत बा रेडियो रंजी 90.4 FM में।
1: नमस्ते
0: नाम बता दी अपन
1: रीना जी। मनपोत पड़ता
0: है। अच्छा जी और कौन सा गाना सुने बार होगा
1: हम तो करते करते में परेशान हो जाते
0: हैं। अच्छा जी अभी जैसे ब्रेक से नहीं आ रहा और कॉल आवत रहा तो कहीं उठा लेता नहीं
1: कई बार कॉल कर चुका है ना सिलाई छोड़ के हम कॉल करते नहीं।
0: अच्छा कोनो बात नहीं के चले
1: हम जितना कॉल पहले बने उतना समय में एगो ब्लाउज बना देले रहती सिल देले रहती।
0: अच्छा जी
1: कितना समय बर्बाद कइले बनी
0: कोनो बात नहीं के चली और गाना बजा देते नहीं बताई कौन सा गाना सुने हम
1: बजा दें दुखवा में सब कोई अपन दुखवा बतावे लगी बा
0: और गाना सुनाऊं के बा
1: सबको इसके
0: आपके तेरा और गाना प्ले कर दे बनी एंजॉय करी रेडियो रिंजन 90.4 FM में।

तो अभी हमने सुना त्रिनी आसन बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग कहे के तो सब केहू आपन आपन कहे वाला के बा। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जी की लिखत आनी की प्रणाम सविता देवी दिल्ली से और एगो गाना बजा दी शिल्पी राज के सॉन्ग और गाना बा बर्बादी हुई तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और अभी कुछ देर पहले बर्बादी सॉन्ग बजेले रहनी है और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जी की लिखत आनी की अमंतिका बाबू आ रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड आपके लिए चॉकलेट भी ला रहे हैं और लिखत आनी की कहे कौन सा चॉकलेट चाहिए रुआ और यहाँ लिखत आनी की हम का करी ट्रेन इतना फास्ट चलते बाकी जिंदगी दाव पे लागल और मैसेज करे वाला बानी उत्तम सोनी और यहाँ फरमाइश पहुँचल बा जी की लिखत है नी नमस्कार मैम पप्पू ठाकुर बगही बाजार कटिया से गोपालगंज से जुड़ल बानी और हमरो एगो गाना सुना देम तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा लिखत है नी हेलो भारती जी हमरो के गाना सुना देम और राजन चौहान खेसारी लाल की आवाज़ में गाना सुनने के चाहते हैं तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और आपके भी गाना प्ले हुई उससे पहले यहाँ हमारे पास फरमाइश पहुँचल बा जी की लिखत है नी हेलो डियर भारती जी प्यार भरल नमस्कार बा का हाल बा और आज हमरो एगो गाना बजा दी और लिखत है नी सोनी बहन और निशा भारती उज्वलिया जी को और लिखत है नी कि भूसा झोंक के तनी नमस्कार बोल दे और लिखत है नी कि नमस्ते नमस्कार डियर भारती जी प्यार भरा नमस्कार बा तब का हाल चाल बा गर्मी में मिजाज निमन बानो और तो हमेशा मस्त बिंदास और हर पल झकास रही ले और आज हमरो एगो गाना के फरमाइश बा पवन सिंह की आवाज़ में जिगर लिंक नीचे शेयर कर दे ले बानी तनी याद से प्ले कर दे और लिखत है नी और सुनाई और सुनाए एक बार निशा भारती आरजे सोनी बहन रुखसार खातून आयशा खातून सगुफ्ता फिरदौस शिल्पी सुधा भारती हजरा खातून और अनिल भाई के थोड़ा बहुत आपके भी सुनेम सोनी बहन और मैं और हम रेडियो फैन मोहम्मद इरफान फ्रॉम शाहजहाँ सिटी यूएई दुबई से तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और गाने की बोल बावे दुनिया में सबका से प्यारा तो चलिए बिना देरी के लिए और गाना प्ले करते नहीं एंजॉय करी रेडियो रिमझिम 90.4 FM में

तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और पप्पू ठाकुर मैसेज करे वाला बानी और जरूर रो गाना प्ले हुई और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जी की लिखत आनी की मैम हमरो है गनवा बजा दी। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी और आपके भी गाना प्ले हुई और हमार दोस्त के गाना सुनाए बा और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे की लिखत है नहीं कि नेक्स्ट हमार गाना बजा दी। और मैसेज करे वाला बानी रंजीत कुमार मुजफ्फरपुर बिहार से और गाना के बोल यहाँ पहुँचल बा। तो गाना के बोल बा चॉकलेटी चेहरा हो चमचम चमके। तो चलिए बिना देरी के लिए राह और गाना प्ले कर जाऊँ और इन्जॉय कर जाऊँ रेडियो रमचम 90.4 FM में।

0: कि पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
6: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
7: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
6: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
8: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
6: संपर्क करें 9939365923।
9: कूल्हा एवं घुटना

0: प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388 8947 या 9198 8869 73।

0: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में, और यहाँ हमारे पास कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँचा हुआ है, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। नमस्ते, हाल तो ठीक है बा? ना जी, फोन तो उठेले वानी बोली। कौन गाना?
1: पवन सिंह के गाना देरी तक रही।
0: थोड़ा धीरे बोली ना, समझ में आई।
1: हेलो दीदी, कहाँ देरी तक रही, साचे साचे हमरा से कही।
0: सांचे सांचे हमरा से कही।
1: एगो तो ही बारो जानी, हम दिल से कहता नहीं, गलत फैली बात हाथ से वो रख ले वानी।
0: और गाना
1: गाना रवन सुनाए के चाहता नहीं, और मनोरमा मैम के और बाकी सभी सुनने वाला के
0: गाना सुनने वाली रहुआ।
1: हाँ, गाना सुनने वाली, बहुत अच्छा बा, रहुआ को भी सुन के अच्छा लगी।
0: और गाना किकर आवाज में बा?
1: पवन सिंह के आवाज में।
0: चलिए फिर और गाना प्ले करते नहीं।
1: ठीक बा, धन्यवाद मैम।
0: एंजॉय करिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में सॉन्ग।
2: इतना देर से फोन वेटिंग बा, और कहाँ पीजी बानी इतना।
3: अरे काम के फोन रहे यार।
2: कौन काम बा, एक घंटा

0: एक बात बता, एक ये कहा ना
1: रवे संतोष रानू छोटे बाबा।
2: और बहुत ही खूबसूरत सा गाना था आपका, और आपको दिल से धन्यवाद मेरे लिए डेडिकेट करने के लिए। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि झकास सॉन्ग की प्रस्तुति, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हमारा गाना बजा दी प्लीज़ हेलो। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिखते हैं प्लीज़ प्लीज़ मैम नेक्स्ट सॉन्ग हमारा बजा दी, तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यहाँ सबसे पहले मैसेज पहुँचल बा कि लिखत आने कि फिर से भक्ति सॉन्ग नहीं बजा सकत, तो फिर से एक लिंक भेज दे बनी और गाना प्लीज प्ले कर देम। और गाना के बोल बा ओढ़निया कतल करेला शिल्पी राज की आवाज़ में और अवधेश प्रेमी की आवाज़ में। तो चलिए बिना देरी के लिए गाना के प्ले करते नहीं, एंजॉय कर जाओ रेडियो रमजन 90.4 FM में।

अभी हमने के सुननी आसन बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग और ओढ़निया कतल करेला और एक के साथ है बढ़ल जो आगे और यह मैसेज पहुंचल बा जे के लिखत आने की

पप्पू ठाकुर जी जुड़ल बानी और लिखत यानी कि हमरो गाना प्ले कर देम और गाना के यहाँ बोल पहुँचल बा और उससे पहले यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखत यानी कि हमरो एगो गाना बा प्ले कर देम और गुड आफ्टरनून बजाजी रोड लालगंज एमडी नौसाद और एमडी सदाम और साथ में एमडी निसार और रिजवान अभिनंदन टेलर भी जुड़ल बानी तो बहुत बहुत स्वागत बा आप सबके और यहाँ की तरफ से गाने के फरमाइश पहुँचल बा जे कि गाना के फरमाइश हो तोरा जैसन हैंडसम हीरो और बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग बात है। चलिए बिना देरी के लिए गाना प्ले कर जाऊँ और इन्जॉय कर जाऊँ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

तो अभी हमने सुना त्रिनिया सन, बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग। और जो कि यहाँ पास हमारे पास मैसेज पहुँच कर बैठ लिखा था, नहीं थैंक यू मैम गाना सुनाए खाती। और एक ही साथ ही यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँच कर लिखा था, नहीं भारती जी पानी पिए हैं कि पानी पीनी है कि ना, अब जाए के समय हो गई बा और मैसेज करे वाला बनी। दिलीप राम जी तो पानी तो अभी ना पीनी है और सो खत्म करिए कि आज पानी पियल जाइए। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखा था, नहीं सुपर सॉन्ग बाय बाय। और यहाँ एक के साथ हमारे पास बाय बाय के सभी के पास से मैसेज पहुँच रहा बा और लिखा था, नहीं और अब रुआ जाए के टाइम हो गल बा और आज के बगैती बहुत अच्छा लागल हवे। और एक के साथ ही हमारे पास जौन लास्ट फरमाइश, बहुत सारा फरमाइश बा जेकर फरमाइश पूरा ना कर पैनी है वहाँ लोग के फिर फरमाइश पूरा कर जाइए। और यहाँ फरमाइश पहुँचल बा जे के लिखा था, नहीं कि हेलो मैम नमस्ते, हम अंकित राय और गोपालपुर से जुड़ल बानी और बहुत ही स्वागत बा आपके भी। और बहुत ही खूबसूरत गाने के फरमाइश पहुँचल बा अखिया में नासा बात। चलिए बिना देरी के लिए यहाँ के गाना प्ले कर जाऊँ और इन्जॉय कर जाऊँ रेडियो रंजीम 90.4 FM में। और एक के साथ ही आप सबसे लेम हम विदा, फिर मिलल जाई सोमवार के।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करे 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034 48652 पे।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज
2: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97 714 86 164।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पादरी बाजार गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। तो दोस्तों, हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए आपको कॉल करना होगा हर रविवार 12 बजे से हमारे स्टूडियो के नंबर 80029494 80029494 पर। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं रेडियो रिमझिम के इस रोमांचकारी खेल के रूल्स को। इस हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे 10 प्रश्न, हर प्रश्न के होंगे 3 ऑप्शन जिसमें से होगा एक सही जवाब और आपको मिलेंगे 10 सेकंड का समय। यदि आप 10 सेकंड में जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप इस खेल से बाहर हो जाएंगे। 10 प्रश्न के सही जवाब देने वाले प्रतिभागी को मिलेगा रेडियो रिमझिम के तरफ से एक एक्साइटिंग गिफ्ट और हमारे स्टूडियो में आने का मौका। तो दोस्तों, आपको अपने तरफ से इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके मोबाइल में पर्याप्त बैलेंस हो। साथ ही हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट के दौरान शांत जगह से कॉल करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी से सहायता ना ले और इंटरनेट पर जवाब सर्च ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट को और लेते हैं पहले प्रतिभागी का कॉल।
7: जी, रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
8: नमस्ते मैम।
7: नमस्ते, नाम बता दीजिए।
8: अनिक्ष यादव।
7: नाम एक बार और बताए।
8: अनिक्ष यादव।
7: समीक्ष
8: यादव।
7: कहाँ से बात कर रहे हैं समीक्ष जी?
8: आसाम से बोल रहे हैं
7: जी। क्या करते हैं आप?
8: पढ़ाई।
7: किस क्लास में पढ़ते हैं?
8: क्लास 5।
7: क्लास 5 में पढ़ते हैं।
8: Yes.
7: आप वहीं के रहने वाले हैं या फिर वहाँ रहते हैं?
8: वहीं के रहने वाले.
7: वहीं के रहने वाले हैं. आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में फर्स्ट टाइम जुड़े हैं?
8: यस.
7: कहाँ से पता चला आपको हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के बारे में?
8: गुड्डू भैया बताया. गुड्डू भैया बताया हमारे भैया.
7: आपके गुड्डू भैया?
8: हाँ.
7: ओके. आप सुनते हैं रेडियो रिंजिम को?
8: हाँ.
7: ओके. हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का आप सुने आप कार्यक्रम को?
8: हाँ.
7: ओके. तो कैसा लगता है आपको हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का कार्यक्रम?
8: अच्छा लगा.
7: अच्छा लगा. ओके. तो आपको हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के रूल पता है?
8: हाँ.
7: ओके. क्या है रूल इनके बताए थोड़ा?
8: 10 क्वेश्चन का आंसर देना.
7: क्वेश्चन है आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे. सारे प्रश्न का उत्तर आपको 10 सेकंड के अंदर देने हैं. ठीक है?
8: ठीक है.
7: 10 सेकंड के अंदर अगर आप उत्तर नहीं दे पाते हैं तो आप इस खेल से बाहर हो जाइएगा.
8: ठीक है.
7: ठीक है. तो लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न. ओके. आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए.
8: विष्णु यादव पापा का नाम है और मम्मी का नाम मिश्र है.
7: ओके. क्या करते हैं आपके पापा जी?
8: कॉन्ट्रैक्टर है.
7: ओके. तो लिया जाए आपसे आपका पहला प्रश्न. ओके. समीक्षा जी आपसे आपका पहला प्रश्न ये है

0: कौन सा जानवर सबसे ऊंचा होता है? ऑप्शन ए है हाथी, बी है जिराफ, सी है ऊंट। आपका समय श्रोता है अब।
1: बी
0: जिराफ।
1: जिराफ
0: कंफर्म है?
1: कंफर्म।
0: ओके तो लॉक करूं?
1: लॉक।
0: ओके तो समीक्षा जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए? ओके आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, हमें दिन में रोशनी कौन देता है? ऑप्शन ए है सूरज, बी है बिजली और सी है चांद। आपका समय शुरू होता है अब।
1: सूरज।
0: कंफर्म है?
1: कंफर्म। लॉक्ड।
0: ओके तो चलिए समीक्षा जी आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर सूरज को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: हाँ।
0: ओके आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 11 जुलाई, बी है 12 अक्टूबर और सी है 10 दिसंबर। आपका समय श्रोता अब।
2: हेलो।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो फ्यूज कॉन्टेस्ट में।
2: थैंक यू।
0: नाम बता दीजिए आप अपना।
2: कमरान रशीद।
0: जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: पकड़ी सुल्तान।
0: जी क्या करते हैं कमरान जी?
2: अभी कुछ नहीं, बैठा हुआ है।
0: तो आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
2: मोहम्मद रशीद एंड रजिया खासम।
0: ओके तो आप इससे पहले भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लिए हैं?
2: जी
0: जी। तो तैयार हैं आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
2: जी।
0: ओके आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है कमरान जी?
2: मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है आज से।
0: ओके तो लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न।
2: जी
0: जी। चलिए कमरान जी आपसे आपका पहला प्रश्न ये है,

0: कि महात्मा गांधी अफ्रीका कब गए थे? महात्मा गांधी अफ्रीका कब गए थे? ऑप्शन ए 1993, ऑप्शन बी 1893 और ऑप्शन सी 1883। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन क्या था?
0: ऑप्शन ए 1993, ऑप्शन बी 1893 और ऑप्शन सी 1883।
1: 1893 होगा।
0: कंफर्म है? लॉक करूं?
1: जी।
0: ओके, तो चलिए कमरान जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर 1893 को लॉक करते हैं और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: तो आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? ऑप्शन ए अविनाश कौर, ऑप्शन बी प्रतिमा पुरी और ऑप्शन सी सालमा सुल्तान। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन बी होगा।
0: ऑप्शन बी प्रतिमा पुरी।
1: जी।
0: कंफर्म है?
1: कंफर्म तो नहीं है। ऑप्शन ए क्या था?
0: अविनाश कौर।
1: नहीं, ऑप्शन बी।
0: ऑप्शन बी होगा। ओके, कमरान जी आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी प्रतिमा पुरी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: कमरान जी, आपका तीसरा प्रश्न आपसे ये है, भूरा कोयला किसको कहा जाता है? भूरा कोयला किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए कोक, ऑप्शन बी बिटुमिन और ऑप्शन सी लिग्नाइट। आपका समय शुरू होता है अब।
1: क्या था? ऑप्शन ए क्या था? ऑप्शन क्या था?
0: ऑप्शन ए कोक, ऑप्शन बी बिटुमिन और ऑप्शन सी लिग्नाइट।
1: सवाल क्या सर, अगर बताए तो सवाल कौन कोयला?
0: भूरा कोयला किसको कहा जाता है?
1: ऑप्शन सी रखिए तो।
0: ऑप्शन सी?
1: हाँ, कन्फर्म नहीं है।
0: लिग्नाइट?
1: हम भूल चुके हैं।
0: अच्छा, तो लॉक करूं?
1: करिए तो।
0: ओके, तो चलिए कमरान जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी लिग्नाइट को फिक्स करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: ओके, आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए बेंगलोर, ऑप्शन बी कानपुर और ऑप्शन सी नागपुर। आपका समय शुरू होता है अब। कंफर्म है?
1: हाँ, कंफर्म कानपुर।
0: ओके, तो चलिए कमरान जी, आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी कानपुर बिल्कुल सही है। तैयार है आप पांचवे प्रश्न के लिए? ओके, आपसे आपका पांचवा प्रश्न ये है, किस धातु को प्राचीन भारत में शीतल धातु कहा जाता था क्योंकि यह हाथ में रखने पर ठंडी महसूस होती थी? ऑप्शन ए सीसा, ऑप्शन बी जस्ता और ऑप्शन सी है चांदी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: क्या
0: किस धातु को प्राचीन भारत में शीतल धातु कहा जाता था क्योंकि यह हाथ में ठंडी महसूस होती थी?
1: अच्छा, ऑप्शन क्या है?
0: ऑप्शन ए सीसा, बी जस्ता, सी चांदी।
1: ऑप्शन बी
0: जस्ता। कंफर्म है?
1: कंफर्म नहीं है।
0: तो लॉक करो?
1: हाँ, क्योंकि चांदी तो होगा नहीं, सीसा भी नहीं होगा।
0: तो चलिए कमरान जी, आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी जस्ता को लॉक करते हैं। आपको बता दे कि आपके पांचवें प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर चांदी होगा।
1: चांदी होगा
0: जी, ना कि जस्ता। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए बहुत बहुत धन्यवाद। आप फिर कोशिश करिएगा।
2: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
6: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
6: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
6: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
7: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
8: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
9: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
8: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82101-87952। नियम और शर्ते लागू।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029-94-91 8029-94-91 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
0: जी
10: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
10: जी थैंक यू मैम।
0: जी नाम बता दीजिए।
10: विमलेश्वर महेम वरदान।
0: जी क्या करते हैं विमलेश जी?
10: पढ़ते हैं।
0: जी किस क्लास में पढ़ते हैं?
10: 12th में।
0: ओके, तो आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
10: मम्मी का नाम श्रीमती सुकांतदेवी, पिता का नाम श्री सुभाष।
0: जी क्या करते हैं आपके पापा?
10: किसान हैं।
0: तो आप इससे पहले भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लिए हैं?
10: यस मैम।
0: जी तो आप तैयार हैं आज के पहले प्रश्न के लिए?
10: यस मैम।
0: ओके, तो लिया जाए आपसे आज का आपका पहला प्रश्न।
10: यस मैम।
0: ओके, आज का आपसे पहला प्रश्न ये है

0: भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1950, बी 1960 और सी 1972। आपका समय शुरू होता है अब।
1: उन्नीस सौ बहत्तर।
0: कन्फर्म है?
1: नहीं।
0: तो लॉक करूं?
1: यस मैम।
0: ओके, तो चलिए बिंदास जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 1972 को लॉक करते हैं। और आपको बता दूं कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर ही गलत है। ना सही उत्तर होगा 1907, ना क्या 1972। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप फिर से कोशिश करिएगा।
2: नमस्ते मिस।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। नाम बता दीजिए आप अपना।
2: सुमन कुमार
0: जी। कहाँ से बात कर रहे हैं सुमन जी?
2: इंदिरा गाँव
0: जी। क्या करते हैं आप?
2: अभी पढ़ते हैं
0: जी। किस क्लास में पढ़ते हैं?
2: ग्रेजुएशन चल रहा है
0: जी। तो इससे पहले भी आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लिए हैं?
2: अगले रविवार को किए।
0: ओके, तो आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
2: माता जी का नाम है श्रीमती दिगंदर जी और पिता जी का नाम है श्री सुरेश का।
0: जी, आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं, तैयार है आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
2: यस।
0: लिया जाए आपसे आपका पहला प्रश्न।
2: जी जी।
0: तो चलिए सुमन जी, आज का पहला प्रश्न ये है

0: आकाश एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? आकाश एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? ऑप्शन ए बुध के समान, ऑप्शन बी शुक्र और ऑप्शन सी मंगल। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मंगल को लॉक कीजिए।
0: कंफर्म है?
1: लग के सारे।
0: ओके, तो चलिए सुमन जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी मंगल को हम फिक्स करते हैं। आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा शुक्र, ना कि मंगल। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में आप कॉल किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप फिर से कोशिश करिएगा जी।
2: हेलो,
0: रेडियो रिंगम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी मैडम।
0: नमस्कार, नाम बता दीजिए।
2: रंजीत कुमार
0: जी। कहाँ से बात कर रहे हैं रंजीत जी?
2: बड़े पटना वाला से।
0: जी क्या करते हैं आप?
2: अभी पढ़ाई करते हैं।
0: किस क्लास में पढ़ते हैं?
2: अभी बीएससी कर रहे हैं।
0: कौन से सब्जेक्ट से कर रहे हैं?
2: मैथ।
0: तो आपका आगे का लक्ष्य क्या है?
2: बिहार एसआई।
0: जी, तो आप इससे पहले भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लिए हैं?
2: लिए हैं।
0: तो लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न।
2: जी
0: जी, आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
2: मेरे पिताजी का नाम है श्री जग महतो और मेरी माताजी का नाम है श्रीमती इंदु देवी।
0: ओके, तो लिया जाए आपका पहला प्रश्न आपसे।
2: जी मैडम।
0: ओके, आपका पहला प्रश्न आपसे ये है

0: पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? ऑप्शन ए जर्मनी, बी अमेरिका, सी ग्रेट ब्रिटेन। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन सी को ठीक से लिया।
0: कंफर्म है?
1: हाँ कंफर्म है।
0: ओके चलिए रंजीत जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी को लॉक करते हैं। और बता दे आपको कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी ग्रेट ब्रिटेन बिल्कुल सही उत्तर है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी मैडम।
0: ओके आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, महात्मा गांधी अफ्रीका कब गए थे? ऑप्शन ए 1993, बी 1883 और सी 1893। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैं ऑप्शन सी 1893 की।
0: कंफर्म है?
1: हाँ कंफर्म है।
0: ओके तो चलिए रंजीत जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 1893 को लॉक करते हैं। और बता दे कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: जी मैडम।
0: ओके आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? ऑप्शन ए अविनाश कौर, बी प्रतिमा पुरी, सी सलमा सुल्तान। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन बी को ठीक कीजिए।
0: प्रतिमा पुरी।
1: हेलो ऑप्शन बी को ठीक कीजिए।
0: ऑप्शन बी प्रतिमा पुरी।
1: जी
0: कंफर्म है?
1: कंफर्म नहीं है, इसलिए ठीक कीजिए।
0: ओके तो चलिए रंजीत जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी को लॉक करते हैं। और आपको बता दे कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: जी मैडम।
0: ओके आज से आपका चौथा प्रश्न ये है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए है नंदा कोटा, ऑप्शन बी है गाडविन, ऑस्टिन और ऑप्शन सी है नंदा देवी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम ऑप्शन बी को फिक्स कीजिए।
0: गाडविन ऑस्टिन क्या?
1: इसी को केटो कहते हैं, इसी को फिक्स कीजिए।
0: ओके तो चलिए रंजीत जी, आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी को लॉक करते हैं। और आपको बता दे कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप पांचवे प्रश्न के लिए?
1: जी मैडम।
0: ओके आपसे आपका पांचवा प्रश्न ये है, विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? ऑप्शन 1834, ऑप्शन बी 1825 और ऑप्शन सी है 1853। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन बी 1825 को ठीक।
0: कंफर्म है?
1: कंफर्म है।
0: ओके तो लॉक कर लूँ?
1: हाँ।
0: ओके तो चलिए रंजीत जी, आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 1825 को फिक्स करते हैं। और आपको बता दे कि आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप छठे प्रश्न के लिए?
1: जी मैडम।
0: आपसे आपका छठा प्रश्न ये है, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में एसटीडी सेवा
1: एसटीडी
0: भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1960 और ऑप्शन सी 1972। आपका समय शुरू होता अब।
1: नहीं, 1972 ठीक कीजिए।
0: कंफर्म है?
1: हेलो,
0: कंफर्म है?
1: कंफर्म तो नहीं, लेकिन इसी को ठीक कीजिए।
0: ओके, तो चलिए रंजीत जी, आपके छठे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 1972 को फिक्स करते हैं। और आपको बता दें कि आपके छठे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा 1960, ना कि 1972। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए बहुत बहुत धन्यवाद। आप फिर से नेक्स्ट संडे कोशिश करिएगा।
2: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
4: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
4: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
4: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
8: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575। नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HFD लक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 1,01,354 रूपए और एक्सट्री 125R 1,10,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92-899-22567 या 97-714-86-164।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029-94-91 8029-94-91 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
9: हेलो,
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
9: जी,
0: नाम बता दीजिए।
9: आर्यन कुमार
0: जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आर्यन जी?
9: गोपालगंज से हम।
0: जी, क्या करते हैं आप?
9: स्टूडेंट हैं।
0: किस क्लास में पढ़ते हैं?
9: 9।
0: जी, आपका आगे का लक्ष्य क्या है?
9: अभी सोचा नहीं है।
0: बच्चे नहीं है। किस स्कूल में पढ़ते हैं?
9: एमएमडी पब्लिक स्कूल।
0: जी, तो आप इससे पहले भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं?
9: हाँ।
0: जी, विनर बने हैं?
9: नहीं
0: नहीं। तो आप आज हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं, तैयार हैं आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
9: हाँ।
0: ओके, तो आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
9: अभिषेक कुमार पापा का नाम, मम्मी का नाम अनु देवी।
0: क्या करते हैं आपके पापा?
9: बिजनेसमैन है, कपड़ा का बिजनेस।
0: ओके, तो लिया जाए आपसे आपका पहला प्रश्न।
9: हाँ।
0: ओके, तो चलिए आर्यन जी, आपसे आपका पहला प्रश्न ये है

भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भोपाल, बी लखनऊ और ऑप्शन सी देहरादून। आपका

0: ऑप्शन ए 1993, ऑप्शन बी 1893 और ऑप्शन सी है 1693। आपका समय शुरू होता है अब। कंफर्म है? ओके, तो लॉक कर दो। ओके, तो चलिए आर्यन जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी को लॉक करते हैं। बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: ओके, आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी अमेरिका और ऑप्शन सी ग्रेट ब्रिटेन। आपका समय शुरू होता है अब।
1: औद्योगिक क्रांति
0: जी,
1: ब्रिटेन।
0: ग्रेट ब्रिटेन कंफर्म है?
1: जी।
0: लॉक करूं?
1: हाँ।
0: ओके, तो चलिए आर्यन जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ब्रिटेन को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: ओके, तो चलिए आर्यन जी, आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है, दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? ऑप्शन ए अविनाश कौर और ऑप्शन बी प्रतिमा पुरी, ऑप्शन सी सलमा सुल्तान।
1: ऑप्शन बी प्रतिमा पुरी।
0: कन्फर्म है?
1: जी।
0: ओके, अविनाश कौर नहीं हो सकती?
1: नहीं।
0: या फिर सलमा सुल्तान?
1: नहीं।
0: ओके, तो चलिए आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी प्रतिमा पुरी को लॉक करते हैं। और बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप पांचवे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: ओके, पांचवा प्रश्न आपसे ये है, भारत में किस जगह पर ऐसा मंदिर है जहां प्रतिमा की परछाई दिन में किसी भी समय जमीन पर नहीं गिरती? भारत में किस जगह पर ऐसा मंदिर है जहां प्रतिमा की परछाई दिन में किसी भी समय जमीन पर नहीं गिरती? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी ओडिशा और ऑप्शन सी बिहार। आपका समय शुरू होता है अब।
1: तमिलनाडु
0: तो ऑप्शन में है ही नहीं।
1: ऑप्शन एक बार फिर रिपीट कीजिएगा।
0: ऑप्शन ए गुजरात, बी उड़ीसा और सी बिहार।
1: उड़ीसा।
0: कंफर्म है?
1: नहीं है।
0: तो लॉक करूं?
1: कर दीजिए।
0: ओके, तो चलिए आर्यन जी, आपसे आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी उड़ीसा को लॉक करते हैं। और बता दें कि आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा गुजरात, सोमनाथ मंदिर, ना कि उड़ीसा। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप फिर से कोशिश करिएगा।
2: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
5: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
6: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
5: श्री गोपाल मोटर्स।

0: गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92-899-22567 या 97-7-14-86-164।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा, मिला ही नहीं
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
5: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
6: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
5: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
5: संपर्क करें 9939365923।
7: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिंजन के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 80-29-94-921 80-29-94-921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
8: नमस्कार।
7: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजन के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
8: जी आपको भी नमस्कार, मैं लाल बहादुर प्रसाद नारायण पंचायत राज कल्याणपुर से।
7: जी, क्या करते हैं लाल बहादुर जी?
8: यही खेती बाड़ी करते हैं और स्वच्छता अभियान से जुड़े हैं।
7: जी, आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है?
8: प्लस वन।
7: जी, आप इससे पहले भी कॉल किए हैं हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में?
8: जी किए थे। आप बोल रहे हैं क्या कि एट बोल रहे हैं क्या? डिवीजन तो नहीं है ना क्या? कौन सा आरती हैं आप जी?
7: सोनी बात कर रहे हैं।
8: हाँ जी, हाँ सोनी जी, और सब सुनाइए।
7: ये आपका हेलो माई चॉइस का सोनी है, इसमें हाल चाल पूछना अलाउ नहीं है। आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट खेलने के लिए कॉल किए हैं तो आप तैयार हैं हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के लिए?
8: जी जी तैयार है।
7: जी, तो आप अपने मम्मी पापा का नाम बताइए।
8: लाल बहादुर प्रसाद नादना। और मम्मी का नाम शिवरात्रि देवी।
7: और पापा का नाम?
8: तिजतन प्रसाद
7: जी। और क्या करते हैं आपके पापा जी?
8: पिताजी नहीं है, सर्वास हो गया।
7: कोई बात नहीं, तो आप तैयार हैं आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
8: जी।
7: तो लिया जाए आपसे आपका पहला प्रश्न।
8: बोलिए।
7: आपसे आपका पहला प्रश्न ये है

0: भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भोपाल, बी लखनऊ, सी देहरादून। आपका समय शुरू होता है अब।
1: बोले भोपाल, देहरादून और लखनऊ। भोपाल होगा।
0: लॉक करूँ?
1: हाँ लॉक कीजिए।
0: ओके तो चलिए लाल बहादुर जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए भोपाल को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर ही गलत है। देहरादून ना कि भोपाल।
1: अच्छा
0: जी, हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले संडे फिर ट्राई करिएगा।
2: जी नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: गुड्डू कुमार यादव
0: जी, कहाँ से बात कर रहे हैं गुड्डू जी?
2: हाईकोर्ट से।
0: जी क्या करते हैं आप गुड्डू?
2: पढ़ाई करते हैं मैम।
0: जी किस क्लास में पढ़ते हैं?
2: हम तो अभी दरोगा का तैयारी वाली कर रहे हैं।
0: जी तो पढ़ाई कहाँ तक हुई आपकी?
2: ग्रेजुएशन तक।
0: तो आप इससे पहले भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लिए हैं?
2: जी।
0: विनर बने हैं कभी?
2: जी बने हैं।
0: आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
2: जी पिताजी का नाम शंकर यादव और माता जी का नाम कुलपोती देवी।
0: ओके हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं, तैयार हैं आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
2: यस मैम।
0: लिया जाए आपसे आपका पहला प्रश्न?
2: यस।
0: ओके तो चलिए गुरु जी आपसे आपका आज का पहला प्रश्न ये है

0: पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? ऑप्शन ए जर्मनी, बी अमेरिका, सी ग्रेट ब्रिटेन। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ग्रेट ब्रिटेन।
0: कन्फर्म है?
1: यस मैम।
0: लॉक करूं?
1: यस।
0: ओके, तो चलिए गुरुजी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी को लॉक करते हैं। और बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: ओके, आज से आपका दूसरा प्रश्न ये है, किस धातु को प्राचीन भारत में शीतल धातु कहा जाता था? किस धातु को प्राचीन भारत में शीतल धातु कहा जाता था क्योंकि यह हाथ में ठंडा महसूस होती थी? ऑप्शन ए है सीसा, बी है जस्ता, सी है चांदी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन नंबर बी जस्ता को फिक्स कीजिए।
0: ऑप्शन बी जस्ता
1: जी।
0: कंफर्म है?
1: कंफर्म तो नहीं है लेकिन लग रहा है यही होगा।
0: ओके, चलिए आपको लग रहा है तो ऑप्शन बी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी जस्ता बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी चांदी। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले संडे फिर रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, नाम बता दीजिए।
2: रंजन कुमार
0: जी। कहाँ से बात कर रहे हैं रंजन जी?
2: आजमापुर से
0: जी। क्या करते हैं आप?
2: पढ़ते हैं मैम, बीएड में
0: जी। आप इससे पहले भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं?
2: कौन सी
0: है? ओके, आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
2: पिताजी का नाम सिंगल है और मम्मी का नाम लाल पति
0: जी। क्या करते हैं आपके मम्मी पापा?
2: पापा फार्मर है, मम्मी हाउस वाइफ।
0: तो आप तैयार हैं आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
2: यस।
0: ओके, आज से आज का पहला प्रश्न ये है रंजन जी,

0: आकाश एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? आकाश एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र और ऑप्शन सी मंगल। आपका समय शुरू होता है अब।
1: हम इसको बुध को फिक्स कीजिए। बुध नहीं, मंगल को फिक्स कीजिए।
0: ऑप्शन सी मंगल। कंफर्म है?
1: कंफर्म नहीं है।
0: तो फिक्स करें?
1: कर दीजिए।
0: ओके, तो चलिए रंजन जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी मंगल को फिक्स करते हैं। आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर।
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ। फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
5: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
6: धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी लड़ाई एक गाथा जो हजारों सालों से दिलों में जीवित है, महाभारत। पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष, रिश्तों की उलझने और जीवन के सबसे कठिन सवाल, महाभारत की कथा हमें सिखाती है कि सही रास्ता चुनना आसान नहीं होता। कभी अर्जुन के शस्त्र उठाने के पहले की दुविधा, तो कभी श्री कृष्ण के गीता का उपदेश, हर मोड़ पे नए प्रश्न और उनके जवाब, धर्म, युद्ध और जीवन के असली अर्थ की खोज। सुनना ना भूलें हर शुक्रवार शाम 7 से रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। सुनो दिल से।
7: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
8: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
9: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
8: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 से कॉल करें 80-29-94-921 80-29-94-921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
10: हेलो, बहुत बहुत
0: स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हिलो क्यूज कॉन्टेस्ट में।
10: जी मैम,
0: नाम बता दीजिए।
10: आयुषी कुमारी
0: जी। कहाँ से बात कर रही हैं आयुषी जी?
10: गोपालगंज से।
0: क्या करती हैं?
10: स्टूडेंट हूँ।
0: किस क्लास में पढ़ती हैं?
10: सिक्स।
0: ओके, आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
10: अभिषेक कुमार अनुजी।
0: ओके, क्या करते हैं आपके पापा?
10: बिजनेस मैन।
0: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की है तो लिया जाए आपसे आपका पहला प्रश्न।
10: जी
0: जी, तो चलिए आयुषी जी आपसे आपका पहला प्रश्न ये है

0: दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? ऑप्शन ए अविनाश कौर, ऑप्शन बी प्रतिमा पुरी और ऑप्शन सी सलमा सुल्तान। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन बी प्रतिमा पुरी।
0: कंफर्म है? ओके, तो लॉक करूं? ओके, तो चलिए आयुषी जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी प्रतिमा पुरी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए? ओके, आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, महात्मा गांधी अफ्रीका कब गए थे? महात्मा गांधी अफ्रीका कब गए थे? ऑप्शन ए 1893, बी 1893 और सी 1883। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन ए 1893।
0: कंफर्म है?
1: जी।
0: लॉक करूं?
1: जी।
0: तो चलिए आयुषी जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए
1: 1893।
0: आप रिपीट कर रही हैं?
1: नहीं, अरे वो 1918 से मैं कंफ्यूज हो गई थी, ऑप्शन में दोनों था।
0: ओके, तो 1893 को लॉक करें?
1: जी।
0: ओके, तो आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर 1893 को मैं लॉक करती हूँ। और आपको बता दूं कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप तीसरे प्रश्न के लिए? ओके, आज से आपका तीसरा प्रश्न ये है, किस धातु को प्राचीन भारत में शीतल धातु कहा जाता था क्योंकि यह हाथ में ठंडा महसूस होता था? ऑप्शन ए सीसा, बी जस्ता और ऑप्शन सी चांदी। आपका समय शुरू होता है अब। कंफर्म है? ओके, तो लॉक कर दो ना?
1: जी।
0: ओके, तो चलिए आयुषी जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी को लॉक करते हैं। और बता दूं आपको कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप चौथे प्रश्न के लिए? ओके, आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है, भारत में किस जगह पर ऐसा मंदिर है जहां प्रतिमा की परछाई दिन में किसी समय जमीन पर नहीं गिरती? भारत में किस जगह पर ऐसा मंदिर है जहां प्रतिमा की परछाई दिन में किसी समय जमीन पर नहीं गिरती? ऑप्शन ए है गुजरात, बी है ओडिशा और सी है बिहार। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन ए गुजरात।
0: कंफर्म है?
1: जी।
0: लॉक करूं?
1: जी।
0: ओके, तो चलिए आयुषी जी, आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए गुजरात को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप पांचवें प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: ओके, आपसे आपका पांचवा प्रश्न ये है, इनमें से किस जीव का खून पारदर्शी होता है? इनमें से किस जीव का खून पारदर्शी होता है? ऑप्शन ए झींगा मछली, ऑप्शन बी आइस फिश और ऑप्शन सी स्टिंगरे। आपका समय शुरू होता है अब।
1: आइस फिश को लॉक किया।
0: कंफर्म है?
1: जी।
0: ओके, तो चलिए आयुषी जी, आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप छठे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: ओके, आपसे आपका छठा प्रश्न ये है आयुषी जी, किस धातु का नाम संस्कृत शब्द में रजत से लिया गया है? किस धातु क्वेश्चन ये है, आपका छठा प्रश्न ये है, किस धातु का नाम संस्कृत शब्द में रजत से लिया गया है? ऑप्शन ए है टीन, बी है चांदी, सी है जस्ता। आपका समय शुरू होता है अब।
1: चांदी।
0: कंफर्म है?
1: जी।
0: लॉक करो?
1: जी।
0: ओके, तो चलिए आयुषी जी, आपके छठे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी चांदी को लॉक करते हैं। और बता दें, आपके छठे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप सातवें क्वेश्चन के लिए?
1: जी।
0: ओके, आपसे आपका सातवां प्रश्न ये है, भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ द फ्लाइंग फॉक्स के नाम से जाना जाता है? भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ फ्लाइंग फॉक्स के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बड़ोदरा, बी ग्वालियर।
1: आवाज कटकट क्या रहा है, सिटी ऑफ क्या बोली हूँ,
0: सिटी ऑफ फ्लाइंग फॉक्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए बड़ोदरा, बी ग्वालियर, सी मैसूर। आपका समय शुरू होता है अब।
1: सिटी ऑफ फ्लाइंग
0: फॉक्स। आप कहीं चीट कर रही हैं, टाइप कर रही हैं?

0: हेलो
1: जी, रेडियो रेंजिंग के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, नाम बता दीजिए।
0: अंशु कुमार।
1: अंशु?
0: यस।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं अंशु जी?
0: सालारपुर
1: जी। क्या करते हैं आप?
0: पढ़ाई करते हैं।
1: किस क्लास की पढ़ाई करते हैं?
0: 9
1: जी। आगे का आपका क्या लक्ष्य है?
0: कंपटीशन का तैयारी करना।
1: और किस चीज का कंपटीशन?
0: दरोगा।
1: दरोगा का?
0: यस।
1: ओके, कहाँ पढ़ते हैं आप, किस स्कूल में?
0: DM इंटर कॉलेज भोपाल में।
1: ओके, तो आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं, तैयार हैं आप आज के प्रश्न के लिए?
0: यस।
1: ओके, इससे पहले भी आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लिए हैं?
0: नहीं
1: लिए हैं, आज फर्स्ट डे है आपका।
0: यस
1: जी। कहाँ से पता चला आपको हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के बारे में?
0: हम रेडियो रेंजिंग पे रिकॉर्ड सुन रहे थे तो।
1: ओके, तो आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए अंशु जी।
0: पापा का नाम जितेंद्र यादव, मम्मी का नाम बासमती देवी
1: जी। और क्या करते हैं आपके पापा?
0: मिल्क मैन है। मिल्क मैन।
1: ओके, तो लिया जाए आज का आपसे पहला प्रश्न।
0: यस।
1: ओके, तो चलिए अंशु जी, आज का आपसे पहला प्रश्न ये है

0: भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी लखनऊ और ऑप्शन सी देहरादून। आपका समय शुरू होता है अब।
1: एक बार ऑप्शन रिपीट कीजिएगा।
0: ऑप्शन ए भोपाल, बी लखनऊ और ऑप्शन सी देहरादून।
1: एको लॉट की
0: लखनऊ।
1: भोपाल
0: ऑप्शन ए।
1: यस
0: कंफर्म है?
1: कंफर्म तो नहीं है, लॉट कीजिए लेकिन।
0: ओके तो चलिए अंशु जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए भोपाल को हम फिक्स करते हैं। और आपको बता दें कि बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर ही गलत है। सही उत्तर होगा देहरादून, ना कि भोपाल। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब दोबारा फिर कोशिश करिएगा।
2: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
5: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
5: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
7: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
8: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
7: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
8: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
7: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
8: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
7: संपर्क करें 8470103092 या 9765065750।
5: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
4: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
5: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
4: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
5: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
5: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
4: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029-94-91 8029-94-91 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
9: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
9: अस्सलाम वालेकुम मैम।
0: वालेकुम सलाम, नाम बता दीजिए।
9: औरंगजेब
0: जी, कहाँ से बात कर रहे हैं औरंगजेब जी?
9: ताकुपाली
0: जी। क्या करते हैं आप?
9: हम पढ़ाई करते हैं
0: जी। किस क्लास में पढ़ते हैं?
9: 5
0: जी। तो आप इससे पहले भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं?
9: यस मैम।
0: ओके, तो आपको आगे चल के क्या बनना है, आपका लक्ष्य क्या है औरंगजेब जी?
9: मैम अभी नहीं सोचे हैं।
0: अभी नहीं सोचे हैं, ओके। तो आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
9: पापा का नाम शेख अनवर आलम, मम्मी का नाम हसन बारा खातून।
0: जी, आपने हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, तैयार हैं आप पहले प्रश्न के लिए?
9: यस मैम।
0: ओके, लिया जाए आपसे आपका पहला प्रश्न।
9: यस मैम।
0: ओके, तो चलिए औरंगजेब जी, आपसे आपका पहला प्रश्न ये है

0: बिहार का कौन सा फल बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा फल बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए लीची, बी आम, सी केला। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम आम।
0: कंफर्म है?
1: यस मैम।
0: ओके, तो लॉक करूं?
1: यस मैम।
0: चलिए औरंगजेब जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी को लॉक करते हैं। और बता दे आपको कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर ही गलत है। सही उत्तर होगा लीची, ना कि आम। हेलो, किस कॉन्टेक्स्ट में कॉल किए आपका? बहुत
2: गुड आफ्टरनून मैम।
0: गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: थैंक यू।
0: नाम बता दीजिए।
2: शबनम सिद्दीकी।
0: जी, अभी इसी नंबर से कॉल आया था।
2: जी, तो वो मेरा कजन है, मतलब एक ही घर के आदमी नहीं खेल सकता एक ही फंड में? तो
0: बिल्कुल कर सकते हैं, बस पूछे हैं जानकारी के लिए।
2: जी
0: जी, नाम अपना फिर से बताइए।
2: शबनम सिद्दीकी।
0: ओके, कहाँ से बात कर रही है शबनम जी?
2: जी जी, पासे पाली घर है, बट अभी थावे पे हैं।
0: जी जी, क्या करती हैं आप?
2: जी मैम, 12th कम्प्लीट है, अब मैं ब्यूटिशियन कर रही हूँ।
0: ओके, आप इससे पहले भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की हैं?
2: जी, पिछले बुक की।
0: जी जी, आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
2: तूफान और आलम, और मम्मी का नाम हसन तारा खातून।
0: ओके, तो लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न।
2: जी जी।
0: ओके, आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? 12th तक।
2: जी जी।
0: ओके, तो आपसे आपका पहला प्रश्न ये है

0: पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? ऑप्शन ए जर्मनी, बी अमेरिका, सी ग्रेट ब्रिटेन। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम ग्रेट ब्रिटेन में।
0: कंफर्म है? लॉक करूं?
1: जी।
0: ओके, तो चलिए शबनम जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी को लॉक करते हैं। और बता दें आपको कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी ग्रेट ब्रिटेन बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी जी।
0: ओके, आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, महात्मा गांधी अफ्रीका कब गए थे? ऑप्शन ए है 1993 ईस्वी में, बी है 1893 और सी है 1883। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम 1893 में।
0: कंफर्म है?
1: जी।
0: लॉक करूं?
1: कीजिए।
0: ओके, तो चलिए शबनम जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 1893 को लॉक करते हैं। और बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: हाँ मैम।
0: ओके, आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? ऑप्शन ए है अविनाश कौर, बी है प्रतिमा पुरी, सी है सालमा सुल्तान। आपका समय शुरू था अब।
1: प्रतिमा पुरी थी।
0: कंफर्म है?
1: हाँ मैम।
0: लॉक करूं?
1: कीजिए कीजिए।
0: ओके, तो चलिए शबनम जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी प्रतिमा पुरी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: हाँ।
0: ओके, आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है, इनमें से कौन सी मछली नहीं है? ऑप्शन ए है स्टार फिश, ऑप्शन बी है पाइप फिश और ऑप्शन सी है गिटार फिश। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम इनमें से कौन मछली नहीं है?
0: हाँ, मछली होते हुए भी मछली नहीं है।
1: ऑप्शन दीजिए।
0: ऑप्शन ए है स्टार फिश, ऑप्शन बी है पाइप फिश और ऑप्शन सी है गिटार फिश।
1: ए
0: स्टार
1: फिश। कंफर्म नहीं है
0: तो लॉक क्या करूँ, स्टार फिश, पाइप फिश या गिटार फिश?
1: स्टार फिश को लॉक कीजिए, देखिए।
0: ओके, तो चलिए शबनम जी, आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप पांचवें प्रश्न के लिए? आपसे आपका पांचवा प्रश्न ये है, किस धातु को प्राचीन भारत में शीतल धातु कहा जाता था? क्योंकि यह हाथ में ठंडा महसूस होती थी। ऑप्शन ए है सीसा, बी है जस्ता, सी है चांदी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: चांदी।
0: कंफर्म है?
1: यस मैम।
0: लॉक करूं?
1: ऑप्शन क्या क्या था?
0: ऑप्शन ए सीता, बी जस्ता, सी चांदी।
1: चांदी होगा।
0: ओके, तो चलिए शबनम जी, आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी चांदी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। जी। तो तैयार है आप छठे प्रश्न के लिए?
1: हाँ।
0: आपसे आपका छठा प्रश्न ये है, भारत के किस राज्य में ऐसी नदी पाई जाती है जो वर्ष में केवल 2 से 3 महीने ही बहती है और बाकी समय पूरी तरह से सूख जाती है? भारत के किस राज्य में ऐसी नदी पाई जाती है जो केवल वर्ष में 2 से 3 महीने ही बहती है और बाकी समय पूरी तरह से सूख जाती है?
1: जी।
0: ऑप्शन ए है मेघालय में, ऑप्शन बी है राजस्थान में और ऑप्शन सी है केरल में। आपका समय शुरू होता है अब।
1: राजस्थान में जी।
0: कंफर्म है?
1: हाँ जी।
0: तो लॉक करूँ?
1: कर दीजिए।
0: ओके, तो चलिए सबनम जी, आपके छठे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी राजस्थान को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके छठे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तो तैयार है आप सातवें प्रश्न के लिए?
1: हाँ मैम।
0: ओके, आपसे आपका सातवां प्रश्न ये है, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई? भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए है 1950, बी है 1960 और सी है 1972। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम 1960, 20 नवंबर 1960 को हुआ था।
0: कंफर्म है?
1: हाँ हाँ कंफर्म है, मैं पहले सुनी हुई मतलब ये पता है मेरे।
0: तो चलिए सबनम जी, आपके सातवें प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके सातवें प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप आठवें प्रश्न के लिए?
1: हाँ हाँ।
0: आपसे आठवां प्रश्न ये है, भूरा कोयला किसको कहा जाता है? भूरा कोयला किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए है कोक, बी है बिटुमिन और सी है लिग्नाइट। आपका समय?
1: लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है।
0: कंफर्म है?
1: हाँ मैम, पढ़े हैं तो पता है।
0: ओके, तो लॉक कर दूं?
1: हाँ एकदम।
0: ओके, तो चलिए शबनम जी, आपके आठवें प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी लिग्नाइट को लॉक करते हैं। और बता दें कि आपके आठवें प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तो कैसा लग रहा है आपको आठवें प्रश्न तक पहुंच के?
1: अच्छा तो लग रहा है, दो सीढ़ी और बाकी है मंजिल तक पहुँचने के लिए।
0: जी जी बिल्कुल, दो सीढ़ी और है। तो तैयार है आप अगले क्वेश्चन के लिए?
1: हाँ मैम तैयार है।
0: ओके, तो आपसे आपका नौवां प्रश्न ये है, भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ फ्लाइंग फॉक्सेस के नाम से जाना जाता है? भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ फ्लाइंग फॉक्सेस के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ग्वालियर, बी बनारस, सी बड़ोदरा। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन क्या था? ग्वालियर, बनारस और
0: बड़ोदरा।
1: मैम भारत का कौन सा शहर
0: सिटी ऑफ फ्लाइंग फॉक्सेस के नाम से जाना जाता है? आपका समय निकल रहा है, बताएं 10 सेकंड के अंदर।
1: जी आप बी को फिक्स कीजिए।
0: बनारस।
1: ग्वालियर, बड़ोदरा, ऑप्शन सी क्या है?
0: तो लॉक करूं?
1: कर दीजिए।
0: आप कहीं सर्च कर रही हैं क्या?
1: क्या मैम, कहाँ हम सर्च कर रहे हैं, मेरी माँ आवाज दे रही है, बुला रही है खाने के लिए।
0: बुला रही हैं आप, बीच बीच में रुक जा रही हैं इसीलिए मैं पूछ रही हूँ।
1: नहीं ऐसा नहीं है, सर्च करती तो शायद मैं अभी तक राइट आंसर दे दी होती।
0: ओके, तो सर्च करने में टाइम लगता है ना, चल रही है तो।

0: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: अब बेटा, बहू घर आने वाली है। सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
2: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स। BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
3: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
5: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
6: ई सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
5: अरे ई सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
6: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
5: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
6: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या। दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
7: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
5: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
8: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
9: अरे तो उसे डांटती क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
10: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
11: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
10: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
8: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
3: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
12: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
3: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
13: ठक ठक।
14: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
15: अच्छा, मिला ही नहीं
14: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
10: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
14: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
10: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
0: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, और मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो दोस्त आरजे सोनी।
16: इस कार्यक्रम को हम स्मार्ट संस्था नई दिल्ली और रेडियो रिमझिम के सहयोग से आप सभी तक पहुंचा रहे हैं।
0: आज की कड़ी बहुत खास है, क्योंकि आज 28 मई है, एक ऐसा दिन जब हम दो बहुत ही जरूरी विषयों पर बात करते हैं। पहला है मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, यानी मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, और दूसरा है विश्व पोषण दिवस, यानी हमारे खाने पीने और सेहत से जुड़ा दिन। पहली नज़र में ये दोनों विषय अलग लग सकते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं, खासकर महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य के लिए।
16: बहुत बहुत धन्यवाद आपको और सभी श्रोताओं को। आपने बिल्कुल सही कहा, मासिक धर्म और पोषण, ये दोनों ही विषय ऐसे हैं जिन पर खुलकर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तरफ जहां मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, वहीं दूसरी तरफ सही पोषण उस प्रक्रिया की स्वस्थ और सुरक्षित बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे समाज में आज भी इन दोनों विषयों को लेकर बहुत सी गलतफहमियां और झिझक मौजूद हैं।
0: सच कहूं से अतिया भैया, आज भी कई घरों में पीरियड शब्द बोलना भी आसान नहीं होता। लड़कियां चुपचाप सब सहती हैं और कई बार तो उन्हें सही जानकारी भी नहीं मिलती। आखिर ऐसा क्यों है?
16: देखिए, ये एक सामाजिक सोच का मसला है। सालों से मासिक धर्म को एक छुपाने वाली चीज बना दिया गया है, जैसे ये कोई गंदगी हो या शर्म की बात हो, जबकि सच्चाई ये है कि यह हर लड़की और महिला के जीवन का एक सामान्य और जरूरी हिस्सा है। अगर हम इसे समझेंगे नहीं, इसके बारे में खुलकर बात नहीं करेंगे, तो हमारे समाज की लड़कियां सही जानकारी से वंचित रह जाएंगी और उनका स्वास्थ्य प्रभावित होगा।
0: मतलब ये सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे परिवार और समाज की जिम्मेदारी है।
16: बिल्कुल, माँ, पिता, भाई, पति, शिक्षक, सभी की भूमिका होती है। जब परिवार समर्थन देता है तो लड़की आत्मविश्वास के साथ अपनी सेहत का ध्यान रख पाती है, उसे साफ सफाई, सही सामग्री और सुरक्षित जगह मिलती है।
0: तो सेहतिया भैया, अगर हम सीधे तौर पर समझे तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन यानी मासिक धर्म स्वच्छता का मतलब क्या है?
16: मासिक धर्म स्वच्छता का मतलब है साफ और सुरक्षित तरीके से पीरियड को संभालना, जैसे कि साफ सैनिटरी पैड, कपड़ा या अन्य सुरक्षित साधन का इस्तेमाल करना, उसे समय समय पर बदलना, हाथ धोना, शरीर की सफाई रखना और इस्तेमाल किए गए सामग्री का सुरक्षित निपटान करना। इसके साथ ही जरूरी है कि लड़की या महिला के पास एक निजी और सुरक्षित जगह हो जहां वो आराम से खुद का ख्याल रख सके।
0: लेकिन सेहतिया भैया, गांव में या कम साधनों वाले इलाकों में ये सब सुविधाएं हर किसी को मिल पाती है क्या?
16: यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। कई जगहों पर आज भी लड़कियां पुराने गंदे कपड़े इस्तेमाल करती हैं या फिर समय पर बदल नहीं पाते, क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं होती है या संसाधन नहीं मिल पाते। इससे संक्रमण का खतरा और भी बढ़ जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम इस विषय पर जागरूकता बढ़ाएं और सरकार व समुदाय से मिलकर सुविधा सुनिश्चित करें।
0: और यहीं पर विश्व पोषण दिवस की बात भी जुड़ जाती है, क्यों? अगर शरीर को सही पोषण नहीं मिलेगा तो इसका असर मासिक धर्म पर भी पड़ेगा, है ना?
16: बिल्कुल सही समझा आपने। अगर लड़की या महिला को सही पोषण नहीं मिलेगा, जैसे कि आयरन, प्रोटीन, विटामिन, तो उसे कमजोरी, चक्कर, ज्यादा दर्द या अनियमित पीरियड्स जैसी समस्या हो सकती है। इसीलिए पोषण और मासिक धर्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं।
0: तो एक संतुलित आहार कैसा होना चाहिए? हमारे श्रोता क्या क्या चीजें अपने रोज के खाने में शामिल कर सकते हैं?
16: देखिए, संतुलित आहार का मतलब है थाली में विविधता। आधी थाली में सब्जियां हो, साथ में दाल या अन्य प्रोटीन हो, अनाज जैसे कि रोटी या चावल हो, और अगर संभव हो तो दूध या दही, हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, फल, मेवे, ये सब बहुत जरूरी है। और सबसे अहम बात, जंक फूड, ज्यादा तला भुना और ज्यादा नमक चीनी से बचना चाहिए और पानी पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए।
0: मतलब अच्छा खाना सिर्फ महंगा खाना नहीं होता, बल्कि सही और संतुलित खाना होता है।
16: बिल्कुल, हमारे गांव में जो स्थानीय और मौसमी खाना मिलता है ना, वही सबसे अच्छा है। बस हमें उसे सही तरीके से अपनाना है।
0: सेहतिया भैया, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई, लेकिन कई बार लोग तब तक नहीं समझते जब तक वे किसी असली कहानी से न जुड़े। क्या आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो हमारे श्रोताओं को ये समझा सके कि सही जानकारी और पोषण कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं?
16: हाँ हाँ, बिल्कुल है। देखिए सोनी जी, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। हमारे ही गांव की एक लड़की रीना की ये कहानी है। रीना करीब 14 साल की थी। पढ़ने में तेज लेकिन बहुत चुपचाप रहने वाली लड़की थी। जब उसे पहली बार पीरियड्स हुआ तो घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। घर में इस बारे में कभी भी खुलकर बात नहीं हुई थी। उसकी माँ ने उसे बस एक पुराना कपड़ा दे दिया था और कहा था कि किसी को बताना मत, बस चुपचाप संभाल लेना। रीना को ना तो ये पता था कि कपड़ा साफ होना चाहिए, ना ये कि उसे कितनी बार बदलना चाहिए। वो उसी कपड़े को कई कई घंटों तक इस्तेमाल करती रही। धीरे धीरे उसे खुजली होने लगा, जलन होने लगा, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसे लगता था कि शायद यह नॉर्मल है। लेकिन दोस्तों, रीना के साथ एक और समस्या थी। रीना का खान पान, घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और खाने में अक्सर सिर्फ रोटी और नमक या कभी कभी दाल मिलती थी। हरी सब्जियां, फल, ये सब बहुत कम मिलते थे। धीरे धीरे रीना को कमजोरी महसूस होने लगी। पीरियड्स के समय उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगा, चक्कर आते थे उसे और कई बार वह स्कूल भी नहीं जा पाती थी। एक दिन की बात है, स्कूल में स्वास्थ्य शिविर लगा था। वहाँ आशा दीदी और एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी आए थे। उन्होंने लड़कियों से खुले में बात की, पीरियड्स क्या होते हैं, कैसे संभालना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए। रीना पहली बार किसी को इतनी खुलकर बात करते हुए सुनी थी। दोस्तों, शिविर के बाद उसने हिम्मत जुटाकर अपनी परेशानियां बताई। फिर स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने रीना को समझाया कि साफ सफाई कितनी जरूरी है। इसके अलावा रीना को सैनिटरी पैड दिए और ये भी बताया कि उसे आयरन की कमी है। उसे आयरन की गोलियां भी दी और खाने में हरी सब्जियां, दाल, गुड़ और फल शामिल करने की सलाह दी। साथियों, रीना घर आ गई। धीरे धीरे रीना ने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करने शुरू कर दिए। साफ सफाई का ध्यान रखना शुरू कर दिया, समय पर पैर बदलना शुरू कर दिया और अपने खाने पीने में सुधार कर लिया। कुछ ही महीनों में उसका स्वास्थ्य बेहतर होने लगा। अब उसे पहले जैसी कमजोरी नहीं होती थी और वह नियमित रूप से स्कूल जाने लगी। साथियों, आज रीना अपने गांव की दूसरी लड़कियों को भी जागरूक करती है। वह उन्हें बताती है कि पीरियड्स कोई शर्म की बात नहीं है और सही जानकारी और पोषण से हम इसे आसानी से संभाल सकते हैं।
0: सच में सेहतिया भैया, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सीख है। अगर सही समय पर जानकारी और मदद मिल जाए तो जिंदगी बदल सकती है।
16: बिल्कुल, और यही स्मार्ट संस्था नई दिल्ली और रेडियो रिमझिम का प्रयास है और हमारे इस कार्यक्रम का यही मकसद है कि हर रीना तक सही जानकारी पहुंचे, ताकि कोई भी लड़की अज्ञानता या झिझक के कारण अपनी सेहत से समझौता ना करे।
0: सेहतिया भैया, रीना की कहानी ने सच में दिल को छू लिया, लेकिन एक बात जो बार बार सामने आ रही है वो है पोषण। आपने बताया कि सही खाना मिलने के बाद ही रीना की सेहत सुधरी, तो क्या ये समस्या सिर्फ लड़कियों और महिलाओं तक सीमित है या पुरुषों में भी पोषण की कमी एक बड़ी चुनौती है?
16: ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने सोनी जी। अक्सर हम पोषण की बात सिर्फ महिलाओं और बच्चों तक सीमित कर देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि पुरुषों को भी पोषण की कभी कभी एक गंभीर समस्या हो जाती है। हमारे देश में बहुत से पुरुष दिन भर मेहनत करते हैं, खेतों में या निर्माण कार्य में दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, लेकिन उनका खान पान संतुलित नहीं होता। कई बार वे सिर्फ पेट भरने के लिए खाते हैं, शरीर को सही पोषण देने के लिए नहीं, और इसके वजह से इसका सीधा असर उनकी ताकत, काम करने की क्षमता और लंबी अवधि में उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है।
0: मतलब कमजोरी और थकान जो हम आम समझ लेते हैं, उसके पीछे भी पोषण की कमी हो सकती है।
16: बिल्कुल, और यही बात हमें विश्व पोषण दिवस के संदेश

0: देखिए, एनीमिया भारत में एक बहुत ही बड़ी समस्या है, खासकर किशोर लड़कियों और महिलाओं में इसकी दर काफी ज्यादा है, लेकिन पुरुष भी इससे अछूते नहीं है। खून की कमी का मतलब है शरीर में हीमोग्लोबिन का कम होना, जिससे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। इसके कारण व्यक्ति को जल्दी थकान, चक्कर, सांस फूलना और कमजोरी महसूस होता है। महिलाओं में ये समस्या ज्यादा है, इसलिए है क्योंकि उन्हें हर महीने मासिक धर्म के दौरान खून की कमी होती है, और अगर उनका खान पान सही ना हो तो यह कमी और बढ़ जाती है।
1: तो इसका सीधा मतलब है कि अगर हम पोषण पर ध्यान नहीं देंगे तो इसका असर सिर्फ ताकत पर नहीं बल्कि पूरे शरीर पर पड़ेगा।
0: बिल्कुल सही समझा आपने। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने रोज के खाने में कुछ खास चीजों को शामिल करें, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियाँ, जैसे कि पालक, मेथी, दालें और चने, गुड़, मूंगफली, तिल, अगर संभव हो तो दूध, दही, अंडा या अन्य प्रोटीन के स्रोत जैसे कि फल, केला, अमरूद, संतरा, ये बहुत फायदेमंद होते हैं। और सबसे जरूरी बात है कि खाने में विविधता होनी चाहिए। एक ही चीज रोज खाने से शरीर को सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते।
1: मतलब थाली जितनी रंग बिरंगी होगी सेहत उतनी मजबूत होगी।
0: बिल्कुल सोनी जी, यही सबसे आसान तरीका है समझने का। और एक बात और है, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जो खा रहे हैं वो साफ सुथरा और सही तरीके से पकाया गया हो, क्योंकि अगर खाना साफ नहीं है तो वह बीमारी का कारण भी बन सकता है।
1: साथियों, आज की बातचीत से तो एक बात साफ हो गई है कि पोषण सिर्फ खाना नहीं है बल्कि ये हमारी ताकत, हमारी ऊर्जा और हमारे पूरे जीवन का आधार है। और जब हम मासिक धर्म और पोषण को साथ में समझते हैं तो हमें एहसास होता है कि सही जानकारी और सही आदतें मिलकर ही एक स्वस्थ समाज बनाती है। तो साथियों, आज की इस खास कड़ी में हमने जाना कि मासिक धर्म और पोषण दोनों हमारे जीवन के अहम हिस्से हैं। अगर हम इन्हें समझेंगे, अपनाएंगे और दूसरों तक पहुँचाएंगे तो हम एक स्वस्थ और सशक्त समाज बना सकते हैं।
0: श्रोताओं, याद रखिए, साफ सफाई, सही जानकारी और अच्छा पोषण, यही है स्वस्थ जीवन का आधार।
1: इसी के साथ हम अपना आज का प्रोग्राम यहीं खत्म करते हैं, पर जाने से पहले हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे, साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके, नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे, संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। मैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त आरजे सोनी आपसे विदा लेती हूँ, लेकिन जाते जाते बस इतना कहना चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए। फिर मिलेंगे इसी शो में सेहत सही लाभ कई में एक नए विषय और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
3: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
4: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
7: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब

0: समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
0: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
2: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
3: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
4: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
5: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
6: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
4: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
4: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
6: कॉल करें 87-894-18744।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
6: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
6: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
6: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
9: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 80-29-94-921 80-29-94-921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
10: नमस्कार मैम।
9: नमस्कार, रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
10: बहुत बहुत धन्यवाद।
9: नाम बता दीजिए आप अपना।
10: शिवम कुमार।
9: शिवम
10: जी,
9: कहाँ से बात कर रहे हैं शिवम जी?
10: पटना।
9: ठीक, क्या करते हैं आप? आपका आगे का लक्ष्य क्या है?
10: आगे का लक्ष्य है मुक्ति पाना। आगे का लक्ष्य है मुक्ति पाना।
9: अच्छा, आपकी आवाज कट रही है, आपका फोन स्पीकर पे है?
10: नहीं, बिल्कुल नहीं।
9: अच्छा ठीक है, आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
10: माँ का नाम है मनोरमा देवी, पिताजी का नाम है मनोज सिंह
9: जी। आप इससे पहले भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लिए हैं?
10: हर रविवार को करता हूँ, हर रविवार, दो महीने, तीन महीने, सदा अवकाश से जुड़ा हूँ 2018 से।
9: जी जी, चलिए अच्छी बात है, आप 2018 से जुड़े हैं, तो आप विनर कितनी बार बने हैं?
10: नहीं नहीं अभी हमने कॉल कहाँ करता हूँ, क्यों सुनता था, कॉल नहीं लग पा रहा था हमारा, उसमें टाइम नहीं करता था। एक भी बार नहीं बना।
11: जी जी कोई बात नहीं, कोशिश जारी रखिए, हो सकता है बन जाइए।
10: अब बने या ना बने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, होने के लिए फोन नहीं करते हैं
11: हम। ओके ओके, और आपकी आवाज कट रही है बार बार।
10: तो हवा चल रहा है, आवाज कट रही है
11: जी।
10: मैं रूम में आ गया हूँ।
11: जी जी, तो आप तैयार हैं आज के पहले प्रश्न के लिए?
10: हाँ बिल्कुल,
11: लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न।
10: हाँ
11: ओके, चलिए आज का आपसे पहला प्रश्न ये है

0: पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? ऑप्शन ए जर्मनी, बी अमेरिका, सी ग्रेट ब्रिटेन। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ग्रेट ब्रिटेन।
0: ओके, तो लॉक करूं? कंफर्म है?
1: कंफर्म तो है, लेकिन थोड़ा जर्मनी का भी निवर है, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन होगा।
0: ओके, तो लॉक करूं? ओके, तो शिवम जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी ग्रेट ब्रिटेन को लॉक करते हैं। और बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: ओके, आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? ऑप्शन ए है अविनाश कौर, ऑप्शन बी है प्रतिमा पुरी और ऑप्शन सी है सलमा सुल्तान। आपका समय शुरू होता है अब।
1: प्रतिमा पुरी।
0: कंफर्म है?
1: यही एकदम कंफर्म है।
0: ओके, चलिए अच्छी बात है।
1: पिछले शो में भी क्वेश्चन पूछा गया।
0: ओके, कुछ क्वेश्चन रिपीटेड रहते हैं,
1: कुछ ना बहुत सारा होते हैं।
0: ओके, तो चलिए लॉक करते हैं आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: हाँ।
0: ओके, आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए बॉब खान, ऑप्शन बी मैक और ऑप्शन विंड सर्फ। आपका समय शुरू होता है अब। कंफर्म है?
1: नहीं है।
0: ओके, तो लॉक करो?
1: अनलॉक करिए।
0: ओके, तो चलिए शिवम जी आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी विंड सर्फ को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: हाँ।
0: ओके, आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1960 और ऑप्शन सी 1972। आपका समय शुरू होता है
1: 1960।
0: कन्फर्म है? ओके, तो लॉक करूं? ओके, तो चलिए सुमन जी आपके चौथे प्रश्न का उत्तर 1960 को लॉक करते हैं। और बता दें आपको कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप पांचवे प्रश्न के लिए? आपसे आपका पांचवा प्रश्न ये है, भारत में किस जगह पर ऐसा मंदिर है जहाँ प्रतिमा की परछाई दिन में किसी समय जमीन पर नहीं गिरती? ऑप्शन ए है गुजरात, बी है उड़ीसा और सी है बिहार। आपका समय शुरू होता है अब।
1: उड़ीसा।
0: कंफर्म है?
1: हम तो पूरा नहीं है, लेकिन उड़ीसा में शायद
0: हो सकता है।
1: 80% हो सकता है।
0: ओके, तो लॉक करो?
1: बिल्कुल।
0: ओके, तो चलिए शिवम जी आपके पांचों प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी उड़ीसा को लॉक करते हैं। आपको बता दें कि आपके पांचों प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा गुजरात, सोमनाथ मंदिर। जी,
1: सोमनाथ मंदिर।
0: जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया।
2: तो दोस्तों ये रहा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का आज का एपिसोड। अगर आप भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029294921 8029294921 पर और बने हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के विनर, और हमें दीजिए अब जाने की इजाज़त और रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
5: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
4: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
5: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
4: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
6: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
7: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
6: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
7: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
6: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
7: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
8: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
9: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
10: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
11: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
12: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
10: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
9: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
10: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
12: कॉल करे 87894-18744।
13: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
14: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
13: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
15: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
16: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
10: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
15: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
10: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
15: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष शग्यो द्वारा।
10: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
15: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
10: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
15: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
17: ये कहानी है एक अतुलनीय पराक्रम की, ऐसे योद्धाओं की जिन्होंने अपने प्यारे देश के लिए बिना झिझके अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ये कहानी है असीम वीरता की, गाथा है अमर बलिदान की, ये कथा है एक ऐसे देश की जो संकट में एकजुट हुआ। कहानी करगिल की।

ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का सीना चीरती ये सड़क पहुंचती है सरहद पर बसे एक शहर में। सुरू नदी के किनारे बसा ये शहर करीब 8000 फीट की ऊंचाई पर है। इसके चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ी चोटियां हैं। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर से भी दूर मौजूद इस छोटे से शहर का नाम है करगिल। जी हाँ, वही करगिल जिसका नाम सुनते ही जहन में खास तस्वीर उभर आती है। तस्वीर एक ऐसे युद्ध की जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता।

0: आज यहाँ न गोलियों की गूंज है न युद्ध के निशान। सरहद पर होने की वजह से सेना की मौजूदगी जरूर देखी जा सकती है, लेकिन बाजारों में वैसी ही हलचल है जैसी दूसरे शहरों में होती है। वक्त के साथ जिंदगी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन हवा में लहराता ये तिरंगा अब भी सुनाता है करगिल की वो कहानी जो भारतीय सेना के वीरों ने अपने लहू से लिखी थी। श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाला हाईवे हो या यहां मौजूद चोटियां, ये सब करगिल की कहानी का अहम हिस्सा है। बर्फ से ढकी ये पहाड़ी चोटी कभी दुश्मनों के कब्जे में थी, लेकिन जब भारतीय सेना के जवानों ने इस चोटी पर तिरंगा लहराया तो ये तस्वीरें यादगार बन गईं। करगिल के चारों तरफ मौजूद हर चोटी की ऐसी ही कहानी है।
1: 26 जुलाई 1999, ये वही दिन था जब भारत ने पाकिस्तान पर विजय हासिल की थी। इसी दिन करगिल की जंग खत्म हुई थी। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी फौज को ऐसा सबक सिखाया कि उनके लिए जान बचाकर भागना भी मुश्किल हो गया था। ये भारत और पाकिस्तान की चौथी लड़ाई थी। पाकिस्तान हमेशा से ही भारत के साथ धोखा करता आ रहा है, लेकिन 1999 में पाकिस्तान ने किया सबसे बड़ा विश्वासघात।

0: माई मैसेज टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान विल बी शॉर्ट एंड सिंपल. पुट असाइड द बिटरनेस ऑफ द पास्ट. टुगेदर लेट अस मेक अ न्यू बिगिनिंग.
1: इस संदेश के साथ शुरू हुआ साल 1999. भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ रिश्तों की एक नई शुरुआत की अपील की. भारत पाकिस्तान की सीमा पर घट रही इस ऐतिहासिक घटना पर पूरी दुनिया की नजर थी. लाहौर में पाकिस्तान ने जिस गर्मजोशी से भारत की दोस्ती का हाथ थामा, भारत ने उतनी ही आत्मीयता से पाकिस्तान को गले लगाया. दिल्ली से लाहौर तक जाने वाली ये बस न सिर्फ दो पड़ोसी मुल्कों को जोड़ रही थी बल्कि उनके बीच भरोसे की एक नई कहानी लिख रही थी. अटल बिहारी वाजपेयी ने यह वादा किया था कि उस साल के अंत तक दोनों मुल्क मिल बैठकर कश्मीर मसले का हल निकाल लेंगे. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी इस नए रिश्ते को पूरी शिद्दत से निभाने का वादा किया था.
2: Underscore to Prime Minister Vajpayee the immense potential of building a mutually beneficial cooperative relationship once we achieve a final settlement of Jammu and Kashmir issue.
1: Aman, chain aur dosti ki ummeed se bhare is mahol mein 21 फरवरी 1999 को दोनों देशों ने लाहौर घोषणा पत्र जारी किया. लेकिन जिस वक्त लाहौर में ये सब हो रहा था उसी वक्त पाकिस्तानी जमीन पर भारत के खिलाफ एक खतरनाक साजिश रची जा रही थी. ये साजिश थी भारत की सीमा में घुसकर हमले की. भारत को इस बात की भनक भी नहीं थी कि जिस पाकिस्तान को वो गले लगा रहा है वो उसकी पीठ में खंजर भोंकने की तैयारी कर रहा है. पाकिस्तान के इस छल का खुलासा हुआ मई 1999 में.
3: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है. कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा.
4: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट.
5: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं. साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है. तो आज ही पहुंचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में.
6: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में.
7: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर.
6: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए. स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HFD लक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 1,01,354 रुपए और एक्सट्री 125R 1,10,836 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ.
7: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
6: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97746164.
8: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया.
7: बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर.
6: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय. अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट. यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर.
7: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है. S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोड़ गोपालगंज. S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी.
9: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा.
10: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली.
9: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24
11: घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
6: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
12: संपर्क करें 9939365923।
13: ठक ठक।
14: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
15: अच्छा मिला ही नहीं।
14: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
15: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
14: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
15: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
1: कहानी करगिल की, अमन, चैन और दोस्ती की उम्मीद से भरे इस माहौल में 21 फरवरी 1999 को दोनों देशों ने लाहौर घोषणा पत्र जारी किया। लेकिन जिस वक्त लाहौर में यह सब हो रहा था, उसी वक्त पाकिस्तानी जमीन पर भारत के खिलाफ एक खतरनाक साजिश रची जा रही थी। यह साजिश थी भारत की सीमा में घुसकर हमले की। भारत को इस बात की भनक भी नहीं थी कि जिस पाकिस्तान को वो गले लगा रहा है, वो उसकी पीठ में खंजर भोंकने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के इस छल का खुलासा हुआ मई 1999 में।
16: 1999 की करगिल जंग की शुरुआत बटालिक सेक्टर से हुई थी। इस समय हम बटालिक सेक्टर में है और मेरे ठीक पीछे पाकिस्तानी नियंत्रण वाले कश्मीर का गांव है। लेकिन जो जंग लड़ी गई थी वो इन पहाड़ियों के ऊपर लड़ी गई थी। जब बटालिक के एक शख्स ने अपनी भेड़ बकरियां लेके ऊपर इस पहाड़ की तरफ गए थे, तो यहाँ पे उनको पाकिस्तानी घुसपैठिए दिखाई दिए थे, जिसकी खबर बाद में उन्होंने मई महीने में ही सेना को दी थी। यानी जो पहले घुसपैठिए देखे गए थे करगिल जंग में, वो इन्हीं पहाड़ियों में दिखे थे।
1: बटालिक सेक्टर के इसी गरकुन गांव के कुछ गडेरियों ने सबसे पहले पाकिस्तानी घुसपैठियों को देखा। उनके मुताबिक पठान सूट पहने कुछ लोग बंकर खोद रहे थे। इस खबर के बाद सेना की कुछ गश्ती टुकड़ियों को भेजा गया, लेकिन भारत को तब यह अंदाजा नहीं था कि जिन्हें वो घुसपैठिया समझ रहे हैं, वो दरअसल पाकिस्तानी फौज के सिपाही हैं। पाकिस्तान के धोखे का पता तब चला जब कैप्टन सौरभ गालिया की पेट्रोलिंग टीम लापता हो गई।
17: ये जो पहले पहले जो खबर इन लोगों को मिली यहाँ पर लोकल फॉर्मेशंस को, यूनिट्स को, तो उन्होंने ये समझा कि कुछ घुसपैठिए आ गए हैं यहाँ पर, क्योंकि वो उन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे। लोकल फॉर्मेशन ने समझा कि हम इनको निकाल फेंकेंगे और इनके पास ज़्यादा हथियार नहीं होंगे। जब ये असेसमेंट को चेंज किया गया, जब हमको खुद आर्मी को लगा कि नहीं, ये घुसपैठिए नहीं है, ये तो रेगुलर आर्मी के लोग हैं, तो उस वक्त हमको पूरा का पूरा स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स सब बदलनी पड़ी।
18: जब तक भारत को पता चल पाता, तब तक पाकिस्तान ने भारत की करीब 150 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तानी सेना ने उन चौकियों पर कब्जा किया था जिन्हें भारतीय सेना सर्दियों में खाली कर देती थी और गर्मियों में वापस जाया करती थी। लेकिन 1999 में भारतीय सेना की उन चौकियों पर जाने से पहले ही पाकिस्तानी फौज ने उन चौकियों पर अपना कब्जा जमा लिया था। जाहिर है, इसके लिए पाकिस्तान ने एक बड़ी तैयारी की होगी। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या फरवरी 1999 में जब नवाज शरीफ अटल बिहारी वाजपेयी से लाहौर में मिल रहे थे, तो क्या उन्हें इस घुसपैठ की जानकारी थी?
1: नवाज शरीफ खुद ये दावा करते रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान की साजिश की भनक भी नहीं थी। खुद को इस मामले से पूरी तरह अलग करते हुए शरीफ ने यहां तक कह डाला कि उन्हें तो अटल बिहारी वाजपेयी के फोन से मालूम चला कि पाकिस्तानी फौज भारत में घुस चुकी है।
19: मेरे भाई मुशर्रफ ने कारगिल पे हमला किया और उस फौजी हमले का मुझे इल्म नहीं था। मैंने उसका नोटिस लिया और नोटिस मैंने तब लिया जब वाजपेयी साहब का मुझे टेलीफोन आया, मुझे कहने के नवाज शरीफ साहब, ये आपने क्या कर दिया हमारे साथ? मैं तो थोड़े दिन पहले आपके पाकिस्तान से होके आया हूँ, इतना अच्छा जज्बा लेके मैं हिंदुस्तान वापस आया हूँ और आपने हमारे ऊपर हमला कर दिया है। तो मैंने कहा क्या हुआ वाजपेयी साहब? कहने आपको मालूम नहीं क्या हुआ है, आपकी फौज ने हमारी फौज पे हमला कर दिया। मैंने मुशर्रफ साहब से बात की और फिर हकायक जो वाजपेयी साहब कह रहे थे उसके बिल्कुल ऐन मुताबिक निकले और फिर मैंने कहा कि आपने ये सब कुछ क्या किया।
1: परवेज मुशर्रफ, जिन्होंने बाद में नवाज शरीफ का तख्ता पलटकर पाकिस्तान की सत्ता अपने हाथ में ले ली, उस वक्त पाकिस्तानी सेना के प्रमुख हुआ करते थे। जानकारों के मुताबिक 1998 में पाकिस्तानी सेना की कमान संभालते ही मुशर्रफ ने भारत पर हमले की योजना बना ली थी। नवाज शरीफ को इस घुसपैठ के बारे में कितना इल्म था, इस सच का पता तो नहीं चल सका, लेकिन ये बात अब पूरी दुनिया जानती है कि करगिल का मास्टरमाइंड कौन था।
20: अनऑक्युपाइड एरिया में इंडिया सियाचिन में आ गया, यहाँ हम चले गए, ये हमें और हमने, मैं आई से विद कॉन्फिडेंस, हमने हिंदुस्तानी फोर्स को गले से पकड़ लिया, और मैं रिपीट कर रहा हूं, उनको गले से पकड़ लिया, क्योंकि हम उन जगहों में चले गए जहां उनकी जो मेन आर्टरी है, जो श्रीनगर से द्रास, कारगिल और लद्दाख ले जाती है, उसको हम डोमिनेट कर गए। उस पे गाड़ी नहीं चल सकती थी अगर हम ना चाहते।
1: इससे पहले की तीन लड़ाइयों में भारत से मुंह की खाने के बाद भी 1999 में पाकिस्तान ने भारत पर हमले की हिमाकत की। उसकी सबसे बड़ी वजह थी 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट। उस साल दोनों ही मुल्क एटमी हथियारों से लैस हो चुके थे। जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान एटमी हथियारों का डर दिखाकर ऐसा कुछ करना चाहता था जिससे कश्मीर के मुद्दे पर भारत पर दबाव डाला जा सके।
21: इन न्यूक्लियर टेस्ट के बाद पाकिस्तान में एक ह्यूबरिस की स्थिति आई कि साहब अब तो हम एटमी ताकत बन गए हैं, भारतवर्ष हिम्मत नहीं करेगा, अगर हम कोई प्रोवोकेशन करते हैं सब कन्वेंशनल दर्जे पे तो भारत में हिम्मत नहीं होगी कि उसका वो जवाबी कार्रवाई कर सके, और इसी के चलते उन्होंने कारगिल का युद्ध जो है छेड़ दिया था।
1: जनरल परवेज मुशर्रफ का प्लान बिल्कुल साफ था, लद्दाख को जम्मू कश्मीर से काटकर सियाचिन में भारत की पकड़ कमजोर करना।
22: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
23: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
22: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
23: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
24: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
25: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन, मात्र 2 लाख रूपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
24: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
25: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
24: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
26: प्रसाद क्लिनिक,
27: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
26: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
27: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
28: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
29: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
30: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहां है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
31: हमारे यहां दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
30: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
0: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: कहानी कारगिल की। जनरल परवेज मुशर्रफ का प्लान बिल्कुल साफ था। लद्दाख को जम्मू कश्मीर से काट कर सियाचिन में भारत की पकड़ कमजोर करना। मुशर्रफ ने बेहद खुफिया तरीके से यह साजिश रची। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार नजम सेठी के मुताबिक करगिल में घुसपैठ के सीक्रेट ऑपरेशन में मुख्य तौर पर पाकिस्तानी सेना के 4 ऑफिसर शामिल थे।
2: आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ, कमांडो, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल अजीज, हेड ऑफ कश्मीर, जिहाद, ये वो सारा कुछ। आईएसआई में जब वो थे तो अब वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बन गए। जनरल महमूद, कोर कमांडर 10 कोर, और हमारा फॉर्मर एम्बेसडर टू अमेरिका ब्रिगेडियर जावेद हसन, इंचार्ज ऑफ नॉर्दर्न इन्फेंट्री फोर्स कमांड, नॉर्दर्न इन्फेंट्री, जो कि इन इलाकों के, ये थे The four people who conceived the gang of four. October, November 98. अभी बस डिप्लोमेसी शुरू भी नहीं हुई थी, तो इन्होंने फैसला किया कि कुछ करते हैं, देखते हैं। उस वक्त कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी कि इंडिया इस सेक्टर के अंदर कुछ अग्रेसिव शेलिंग हो रही है, इंडिया के कुछ प्लान्स बन रहे हैं, कोई और ना कुछ सीज कर ले एलओसी के ऊपर। तो इन्होंने ब्रिगेडियर साहब को कहा कि जी, क्योंकि वो इंचार्ज थे, कि आप जाके चेकआउट तो करें वहां इंडिया के क्या इरादे हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये जब ब्रिगेडियर साहब गए उस इलाके में रेकी करने, तो देखा वहां तो बंदा ना बंदे की जात, थोड़ा और आगे गए तो बंदा ना बंदे की जात। सोचे कोई तो रास्ता खुला है, तो है ही कुछ नहीं, पता नहीं चलना किसी को। वहां से ये प्लान बना।
1: मुशर्रफ के इस प्लान को नाम दिया गया ऑपरेशन बद्र। नजम सेठी के मुताबिक 1999 के जनवरी फरवरी महीने में मुजाहिदीनों की शक्ल में पाकिस्तान के करीब 200 सैनिक लाइन ऑफ कंट्रोल को लांग कर करगिल की सुनसान पहाड़ियों में घुस गए। धीरे धीरे इन सैनिकों की संख्या बढ़ती गई और मार्च अप्रैल तक उन्होंने भारत की 140 से ज्यादा पोस्ट पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, उस वक्त पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन डायरेक्टोरेट में रहे कर्नल अशफाक हुसैन ने अपनी किताब विटनेस टू ब्लंडर में लिखा है कि हमले से पहले परवेज मुशर्रफ खुद एलओसी क्रॉस करके भारतीय नियंत्रण रेखा में 11 किलोमीटर अंदर तक गए और वहां एक रात भी गुजारी।
3: करगिल की लड़ाई का ये पहला चरण था। पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री यानी एनएलआई के फौजी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर अपनी पोजीशन ले चुके थे, लेकिन भारत को इसकी खबर तक नहीं थी। करगिल, द्रास और बटालिक सेक्टर की ऊंची ऊंची पहाड़ियां करीब 16,000 से 18,000 फीट तक की हैं और यहां पर बैठे पाकिस्तानी सैनिकों के सीधे निशाने पर था नेशनल हाईवे नंबर 1A, यानी वो रास्ता जो कि लद्दाख को श्रीनगर से जोड़ता है। पाकिस्तान की योजना ये थी कि इस हाईवे पर लगातार फायरिंग कर लद्दाख को बाकी के जम्मू कश्मीर से काट दिया जाए।
1: जम्मू कश्मीर का सबसे शांत इलाका लद्दाख पर पाकिस्तानी कब्जा ऑपरेशन बद्र का पहला लक्ष्य था। इसी रणनीति के तहत करगिल की चोटियों पर बैठे पाकिस्तानी सैनिक नेशनल हाईवे पर जबरदस्त गोले बरसा रहे थे।
4: उनका इरादा मेरे ख्याल से ये भी था कि एक बार अगर श्रीनगर से लद्दाख का रोड कम्युनिकेशन को काट दिया जाए तो उसके बाद वो शायद सियाचिन मुद्दे के ऊपर भी भारत के ऊपर दबाव डाल सकते और उसके बाद भारत को एक कमजोर स्थिति से फिर पाकिस्तान के साथ बात करनी पड़ेगी।
1: शुरुआत में भारत यही समझता रहा कि हमला करने वाले पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, लेकिन जैसे ही भारत को इस बात के सबूत मिलने लगे कि आतंकवादियों की शक्ल में पाकिस्तानी सेना गोले बरसा रही है, भारत ने मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी। दुनिया के इतिहास में पहली बार महाविनाशक एटॉमिक हथियारों से लैस दो देश युद्ध के मैदान में आमने सामने थे।
5: इस समय देश के सामने युद्ध जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। कारगिल में, उसके आसपास के क्षेत्र में बड़ी तादाद में पाकिस्तान से सशस्त्र घुसपैठी आए।
1: भारत एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा था। उसे ऐसा जवाब देना था जिससे पाकिस्तान को सबक भी सिखाया जा सके और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर माहौल उसके पक्ष में रहे। यही वजह थी कि 24 मई को CCS यानी कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। भारत ने पाकिस्तानी हमले का जवाब देने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया, लेकिन सेना को किसी भी हाल में लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस न करने की हिदायत दी।
6: बहुत लोग चाहते थे कि हम पलटवार करें, लाइन ऑफ कंट्रोल को जाके पार करें, लेकिन मैं ये समझता हूं कि हमारी जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट का ये फैसला था LC ना पार करने का, ये बहुत समझदार फैसला था, क्योंकि इससे कोई विदेशी ताकत इसमें अब हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। अगर हम लाइन ऑफ कंट्रोल पार करते तो ये इंटरनेशनल स्थिति बन जाती, UN उसमें बीच में टपक पड़ता, अमेरिका दबाव डालता कि लड़ाई बंद करो, मैक्सिमम हम 7-8-10 दिन 15 दिन तक लड़ाई लड़ सकते थे। जबकि ऐसे पहाड़ों पे हमारा अंदाजा था कि 2-2.5-3 महीने लग जाएंगे उनके पांव उखाड़ने में, तो इसलिए अगर हमने लाइन पार की होती, हम पे दबाव पड़ता, 15 दिन में हमको खत्म करना पड़ता और काफी सारा इलाका उसके हाथ में रह जाता ऐसे अहम जगह में।
5: शांति और शक्ति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शांति में राष्ट्र की शक्ति तैयार होती है, आर्थिक सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया तेज होती है, शांति में जीवन की रक्षा होती है, विकास होता है, लेकिन जब शांति खतरे में पड़ जाए दूसरों के व्यवहार के कारण, तो फिर शक्ति से काम लेना पड़ता है।
3: युद्ध के इतिहास में करगिल की लड़ाई को सबसे मुश्किल लड़ाइयों में गिना जाता है, जहां दुश्मन 16,000 से 18,000 फीट की ऊंचाइयों पर बंकर में छुपा बैठा था और उनसे मुकाबला करने वालों को हमला करने वालों का नीचे से जवाब देना था। इसलिए भारत रणनीतिक तौर पर कमजोर स्थिति में था। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने हमलावरों की संख्या करीब 5,000 थी और उन्हें खदेड़ने के लिए भारतीय सेना को करीब 30,000 जवानों को भेजना पड़ा था।
1: भारतीय सेना की मुश्किल ये थी कि जिस हाईवे को वो अपने सप्लाई रूट की तरह इस्तेमाल कर सकते थे, उस पर पाकिस्तान लगातार गोलाबारी कर रहा था। इसलिए भारत ने सबसे पहले उन चोटियों को निशाना बनाने की योजना बनाई जो सीधे हाईवे के सामने थी, यानी तोलोलिंग और टाइगर हिल्स। भारत की जवाबी कार्रवाई के इस पहले चरण में सबसे अहम भूमिका निभाई बोफोर्स गन ने। कुछ साल पहले राजनीति के मैदान में बदनाम हो चुकी बोफोर्स गनों ने करगिल के मैदान में अपना दम दिखाया। जमीन पर बोफोर्स के गोले तो आसमान में एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने बम बरसाना शुरू किया।
6: लड़ाई के मैदान में इसने अपना पूरा जौहर दिखाया और जैसे मैंने बताया कि इस ऊंची पहाड़ी चोटियों पर अगर हम दुश्मन को हिला पाए तो सबसे ज्यादा उसमें भूमिका थी हमारी बोफोर तोपों की और हमारे इन्फेंट्री के सिपाहियों की हिमाकत और शुजात की। और ये बोफोर तोपें हमने बताया हर इन्फेंट्री पलटन के अटैक के लिए हमने 100 गन वहां पे पहुंचवाई थी और जो ग्रैंड रॉकेट लॉन्चर्स थे वो वहां पहुंचाए ताकि दुश्मन को हिला लिया जाए हमले के पहले और तभी दुश्मन के पांव उखड़े, नहीं तो उस हाइट से उसको निकालना असंभव था।
3: करगिल की कहानी बिना बोफोर्स के पूरी नहीं होती। 155 मिलीमीटर की होविट्जर गन का बैरल करीब 70 डिग्री तक घूम सकता है, यानी इसका गोला ऊंची से ऊंची पहाड़ियों तक पहुंच सकता है। करीब 40 किलोमीटर की रेंज वाली इन गनों ने ऊंची पहाड़ियों पर बने दुश्मनों के बंकरों को तबाह कर दिया।
1: छब्बीस मई 1999 को भारतीय वायुसेना ने हवाई हमला शुरू किया। हालांकि दुश्मन की सही पोजीशन पता न होने की वजह से वायुसेना को शुरुआती झटके लगे। 27 मई को MiG-27 तकनीकी खराबी की वजह से दुर्घटना का शिकार हुआ। सहायता के लिए बढ़ा दूसरा MiG-21 विमान पाकिस्तानी मिसाइल के निशाने पर आ गया। MiG-27 के पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट के नचिकेता को युद्ध बंदी बना लिया गया, जबकि मिसाइल के निशाने पर आए विमान MiG-21 के पायलट स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा को पाकिस्तानियों ने बर्बरता से मार डाला।
7: First report and preliminary inspection of the body, we find bullet wounds. Now the body is being taken for post-mortem, and when we have the full report of the post-mortem, we shall present it to you.
1: शुरुआती झटकों के बाद वायुसेना ने अपनी रणनीति बदली। 1971 के बाद पहली बार वायुसेना के जंगी जहाज युद्ध में शामिल हो रहे थे। इसे ऑपरेशन सफेद सागर का नाम दिया गया। MiG-29 हवा में दूसरे विमानों को सुरक्षा देता था। इसने पाकिस्तानी F-16 विमान को भारतीय सीमा से दूर रहने पर मजबूर किया, जबकि MiG-27, MiG-21 और Mirage-2000 विमान जमीनी निशाना
8: बन गया है। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दोहराया संकल्प। राष्ट्रीय लोक मोर्चा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, राज्य की सरकारी नौकरियों में OBC को 65% आरक्षण दिलाने के लिए पार्टी करेगी प्रयास। और भोजपुर, पटना, मुंगेर और भागलपुर के निचले इलाकों में बाढ़ का संकट बढ़ा, प्रभावित लोग सुरक्षित स्थानों पर ले रहे हैं शरण। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर स्पेस सेक्टर के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के कार्य की सराहना की।
9: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
8: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य सरकार युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। श्री चौधरी ने पटना के ज्ञान भवन में आयोजित रोजगार मेले में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए कहा कि अगले वर्ष से हर जिले में मेगा जॉब मेला आयोजित किया जाएगा।
10: हम लोगों ने तय किया है कि नियोजन मेला के लिए, नियोजन करने के लिए सभी जिले में इसकी व्यवस्था की जाएगी और अगले साल से प्रत्येक जिले में इस तरह का नियोजन मेला लगाकर वहीं पर लोगों को रोजगार देने का काम किया जाएगा। यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
8: युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग द्वारा आयोजित इस मेगा जॉब फेयर में बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज और रिटेल सेक्टर से जुड़ी अग्रणी कंपनियों ने 3,727 युवाओं का चयन किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी समेत राज्य कैबिनेट के कई मंत्री मौजूद थे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि पार्टी राज्य में सरकारी नौकरियों में ओबीसी के लिए 65% आरक्षण का प्रावधान लागू कराने के लिए प्रयास करेगी। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री कुशवाहा ने नालंदा के राजगीर में आयोजित पार्टी के विमर्श शिविर में पारित प्रस्तावों की जानकारी देते हुए यह बात कही। श्री कुशवाहा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में यह निर्णय लिया गया था।
11: नीतीश कुमार जी ने बिहार में जातीय सर्वे कराया था और उसमें जो आंकड़े आए थे उन आंकड़ों के आधार पर 65% रिजर्वेशन की बात नीतीश कुमार जी ने अंतिम रूप से तय कर दिया था, लेकिन वो किया नहीं हुआ। तो हम लोगों ने अपनी पार्टी में प्रस्ताव लिया है, इस बात को लेकर हम आगे अपनी बात करते रहेंगे कैसे कार्य रूप दिया जाए। तो यह एक महत्वपूर्ण इसे प्रस्ताव के रूप में हम सब लोगों ने लिया है।
8: श्री कुशवाहा ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए उन्होंने राज्य सरकार को शिक्षा आयोग के गठन का सुझाव दिया है।
11: बच्चे भी हैं तो कल के युवा होंगे, तो टैलेंट तो काफी है, लेकिन उनको वातावरण, उनको जो सुविधा समाज को देने की सरकार की जवाबदेही है, तो इस दृष्टि से हमने सरकार को सुझाव दिया है कि एक शिक्षा आयोग सरकार बनाए। और दुनिया भर में कहां क्या हो रहा है, देश में अन्य राज्यों में कहां क्या हो रहा है, उसका स्टडी करके, अध्ययन करके और तब एक रिपोर्ट सरकार को दे और उस रिपोर्ट के आधार पे आगे सरकार निर्णय ले।
8: 3 दिवसीय पार्टी के विमर्श शिविर के दौरान सिवान के जीरादेई निवासी और सामाजिक कार्यकर्ता त्रिभुवन तिवारी समेत सैकड़ों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लघु जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा है कि जमाखोरी के कारण चीनी की कीमत बढ़ी है। मुंगेर में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री सुमन ने कहा कि कीमत पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है।
12: जब त्योहारों का सीजन आता है तो कुछ लोग होते हैं स्टॉक करते हैं ताकि स्टॉक करके चीनी का दाम बढ़ाया जाए। स्टॉकिस्ट का ही अति है कि चीनी का दाम बढ़ा है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी इसकी समीक्षा किए हैं और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, उनको दंडित किया जा रहा है। सरकार इसके लिए कोशिश कर रही है, आयात करने की भी कोशिश कर रही है ताकि सारा चीज जनरलाइज हो जाए और दाम कम हो जाए।
8: राज्य सरकार ने मुजफ्फरपुर के मोतीपुर स्थित चीनी मिल की जमीन वापस लेने की प्रक्रिया तेज कर दी है। गन्ना उद्योग विभाग ने इस संबंध में मेजर्स इंडिया पोटाश लिमिटेड को पत्र जारी कर 266 एकड़ जमीन वापस लेने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि 2010 में निविदा के माध्यम से चीनी मिल को दोबारा चालू करने के लिए कंपनी को जमीन लीज पर दी गई थी। इसके बाद भी कंपनी ने मिल चालू करने को लेकर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण यह निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि पंडित राजकुमार शुक्ल की जयंती अगले वर्ष से राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाएगी। श्री चौधरी ने आज बिहार विधान परिषद के एनेक्सी हॉल में आयोजित जयंती समारोह को संबोधित करते हुए ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि पंडित शुक्ल के बुलावे पर ही पहली बार गांधी जी बिहार आए थे और चंपारण सत्याग्रह करके वे मोहनचंद करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बने थे। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में पंडित शुक्ल की जीवनी को शामिल किया जाएगा।
13: बिहार के पाठ्य पुस्तकों में पंडित राजकुमार शुक्ल की जीवनी पढ़ाई जाएगी और कल ही इस आशय का ऑर्डर मैं अपने SC RT को भेज दूंगा और इसको पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा।
8: इस अवसर पर प्रसिद्ध भोजपुरी गायिका कल्पना पटवारी समेत कई शख्सियतों को सम्मानित किया गया। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। जदयू के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय झा की अध्यक्षता वाली संसदीय स्थायी समिति कल पटना में राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास और रख रखाव के मुद्दे पर संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करेगी। इस दौरान सड़क परिवहन के सुविधापूर्ण विस्तार से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विमर्श किया जाएगा। बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर संसदीय दल आज पटना पहुंचा है। ये दल मीठापुर महुली एलिवेटेड कॉरिडोर का निरीक्षण करेगा, साथ ही टीम पटना गया डोभी फोरलेन सड़क का जायजा भी लेगी। राज्य के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम भागों में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण मानसून की सक्रियता बढ़ गई है। मौसम विभाग ने आज राज्य के अधिकांश भागों में तेज हवा के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका जताई है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और गया जिले में कई स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
1: दिनांक 24 अगस्त को राज्य के उत्तर पश्चिम भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की बहुत संभावना है। साथ ही समस्त दक्षिण भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण एवं गया जी जिलों के एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने का पूर्वानुमान है।
0: उत्तर भारत के विभिन्न भागों के साथ ही प्रदेश के कुछ भागों में भारी बारिश के कारण गंगा समेत विभिन्न नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर बक्सर से भागलपुर के कहलगांव तक तेजी से बढ़ा है। पटना के दीघा घाट, गांधी घाट, हाथीदह और भागलपुर के कहलगांव में गंगा नदी का जलस्तर लाल निशान को पार कर गया है। इधर सोन नदी पटना के मनेर में, घाघरा नदी सीवान के दरौली में, गंडक नदी गोपालगंज के डुमरिया घाट में खतरे के निशान को पार कर गई है। बूढ़ी गंडक नदी खगड़िया में खतरे के निशान से 15 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जबकि कोसी नदी खगड़िया

0: लोगों ने ऊंचे स्थानों पर शरण लेना शुरू कर दिया है। शहरी क्षेत्र में गांधी घाट, भद्र घाट, महावीर घाट समेत विभिन्न घाटों पर जलस्तर काफी बढ़ गया है। जेपी गंगा पथ पर भी बाढ़ का पानी आ गया है। इधर पुनपुन नदी का जलस्तर श्रीपालपुर में खतरे के निशान से 50.60 मीटर के अत्यंत करीब पहुंच गया है। नदियों में आए उफान से उत्पन्न स्थिति को लेकर जिला प्रशासन ने अलर्ट घोषित किया है। कई स्थानों पर राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। साथ ही प्रभावित लोगों के लिए सुरक्षित स्थान और राहत शिविरों का इंतजाम का प्रबंध किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
1: सहकारिता मंत्री और दानापुर के स्थानीय विधायक रामकृपाल यादव ने आज कटाव प्रभावित पानापुर दियारा क्षेत्र में स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए बेहतर इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। इधर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वैशाली जिले के राघोपुर का दौरा किया और बाढ़ प्रभावित लोगों की समस्याओं को जाना। श्री यादव ने राज्य सरकार से बाढ़ रोधी कार्य और प्रभावितों को राहत पहुंचाने के इंतजाम में तेजी लाने का अनुरोध किया है। मधुबनी जिले के बिस्फी प्रखंड अंतर्गत रामसागर टोला में पेड़ के नीचे प्राथमिक विद्यालय के संचालन से जुड़ा वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने इस मामले में लापरवाही के आरोपी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी शेखर कुमार को पदमुक्त कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने आज सीतामढ़ी के बाजपट्टी में शहीद रामफल मंडल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं रून्नी सैदपुर में प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया। अररिया जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस ने 16 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 7 किलो गांजा, 610 ग्राम स्मैक, 152 लीटर नेपाली शराब और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। मुंगेर जिले के जमालपुर स्थित बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बीसैप 9 में प्रशिक्षु ट्रांसजेंडर सिपाही की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। मृतिका पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया की रहने वाली थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नालंदा के संस्कृति ग्राम परिसर में विश्व के पहले बोधि वन का लोकार्पण किया गया। विश्वविद्यालय के कुलपति, प्राध्यापकों और विभिन्न देशों से आए बौद्ध भिक्षुओं ने 28 पवित्र पौधों का रोपण किया। प्रख्यात लेखिका, समाजसेवी और राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति ने जहानाबाद जिले में विश्व प्रसिद्ध और ऐतिहासिक बराबर गुफाओं का भ्रमण किया। श्रीमती मूर्ति ने इस ऐतिहासिक स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल करने की अपील की है। सीवान जिले में आज से 3 दिवसीय मोबाइल पासपोर्ट कैंप की शुरुआत हुई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत का स्पेस सेक्टर आज दुनिया भर के निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण स्थान बन गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दोहराया संकल्प, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता। राष्ट्रीय लोक मोर्चा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, राज्य की सरकारी नौकरियों में ओबीसी को 65% आरक्षण दिलाने के लिए पार्टी करेगी प्रयास। और भोजपुर, पटना, मुंगेर और भागलपुर के निचले इलाकों में बाढ़ का संकट बढ़ा, प्रभावित लोग सुरक्षित स्थानों पर ले रहे हैं शरण। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: भारतीय वायु क्षेत्र में रहकर विमानों ने वो काम किया जो अब तक दुनिया की किसी भी वायुसेना ने नहीं किया था। 13,000 फुट से 18,000 फुट की ऊंचाई पर छुपे पाकिस्तानी फौज के सैनिकों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। पहली बार लेजर गाइडेड बम का इस्तेमाल हुआ।
1: फॉर्चुनेटली बाय अ सिस्टम दैट वी हैड अडॉप्टेड इन वेस्टर्न एयर कमांड द एनिमी वाज कन्विंस्ड दैट वी आर रेडी फॉर द एयर बैटल, विलिंग फॉर द एयर बैटल। आप आओ, हम आपसे लड़ाई करने के लिए तैयार हैं एंड वी आर वेटिंग फॉर इट। वो नहीं आया।
0: इसके साथ भारत ने जल्द ही दुनिया के सामने पाकिस्तानी फौज की मौजूदगी के पुख्ता सबूत दे दिए।
2: डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी इन दीज इंट्रूजन्स हैव बीन प्रूव्ड बियॉन्ड डाउट।
0: भारतीय सेना के लिए जमीन पर हालात तब बदले जब तोलोलिंग पर कब्जा हुआ।
3: कोई नाइट 12-13 को टू राजरिफ ने आर्टिलरी की सपोर्ट के साथ ये ऑपरेशन लॉन्च किया और सुबह 13 तारीख को उन्होंने टोलोलिंग के ऊपर कब्जा कर लिया। ये सबसे बड़ा सक्सेस था हमारे लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि कोई 2-3 हफ्ते तक कोई हमको सक्सेस नहीं मिल रहा था और टोलोलिंग एक ऐसा फीचर था जो रोड के ऊपर बड़ी अच्छी तरह डोमिनेशन कर रहा था दुश्मन।
0: टोलोलिंग के बाद भारतीय सेना का मकसद था टाइगर हिल से पाकिस्तानियों को खदेड़ना। टाइगर हिल को दुश्मनों के चंगुल से आजाद कराने को निकले भारतीय सैनिक अपने साथ रसद की जगह ज्यादा से ज्यादा हथियार ले गए थे। यह इस लड़ाई का सबसे मुश्किल मुकाबला था। इसके लिए भारतीय सेना की 3 बटालियनों ने पाकिस्तानी फौज को 3 तरफ से घेरा। करीब 11 घंटे की जंग के बाद 4 जुलाई को भारतीय जवानों ने टाइगर हिल पर भी तिरंगा फहरा दिया। यह इस जंग की सबसे बड़ी जीत थी।
4: धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी लड़ाई एक गाथा जो हजारों सालों से दिलों में जीवित है, महाभारत। पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष, रिश्तों की उलझने और जीवन के सबसे कठिन सवाल, महाभारत की कथा हमें सिखाती है कि सही रास्ता चुनना आसान नहीं होता। कभी अर्जुन के शस्त्र उठाने के पहले की दुविधा, तो कभी श्री कृष्ण के गीता का उपदेश, हर मोड़ पे नए प्रश्न और उनके जवाब, धर्म, युद्ध और जीवन के असली अर्थ की खोज। सुनना ना भूलें हर शुक्रवार शाम 7 बजे से रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। सुनो दिल से।
5: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
6: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
7: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
6: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
9: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
10: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
9: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
10: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
9: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
10: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
9: संपर्क करें 9006978856 या 6203139। 5-6-4। अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
10: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
9: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
10: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
9: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
10: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
9: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
10: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-6750।
0: कहानी करगिल की। पाकिस्तान को घेरने के लिए भारत ने कई मोर्चे पर जंग छेड़ दी थी। राजनयिक एक तरफ काम कर रहे थे तो दूसरी तरफ रोज दिल्ली में वायुसेना, थल सेना और विदेश विभाग के प्रवक्ता प्रेस ब्रीफिंग करते थे। टेलीविजन के जरिए करगिल घर घर तक पहुंच रहा था।
11: What you heard right behind you was the sound of Bofors guns directly targeting the top of Tiger Hill, the prelude to the final assault. Also going on simultaneously are multi-barrel rocket launchers also attacking the same positions on Tiger Hills.
12: This part of the Batalik sector where I am sitting right now was actually what the Pakistani forces did just a short while back. In fact, even now they are continuing to shell this region looking for the forward posts which have been formed here. We heard a shell going up just a short while ago.
13: Usse humko sahayata mili. क्योंकि उन्होंने पूरे देश में जो एकदम देश को जोड़ दिया आर्मी का साथ देने के लिए, तो मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि मैंने पूरा देश ऐसे जुड़ा हुआ कभी भी नहीं देखा जैसा मैंने कारगिल वॉर के टाइम में देखा। और उसके लिए मीडिया का इस्तेमाल करना वो अच्छी बात थी।
0: पूरा मुल्क देख रहा था कि किन हालात में भारतीय फौज लड़ाई लड़ रही थी, भारतीय जवान कितनी मुश्किलों के बावजूद पाकिस्तानियों को धूल चटा रहे थे। ऐसी ही एक कहानी है एक नौजवान कैप्टन विक्रम बत्रा की।
14: In case we would have stopped at any point of time, we knew that we would have been the pinpoint target for them. Either we would have been there or they would have been there. We had already decided our success signal before advancing for the attack, and it was like Bravo Company's success signal, OAIA, which was passed to our CO Colonel Joshi on the radio set. And after the another bunker was captured, my company's success signal was Ye Dil Mange More. The guys were so highly charged up that they were wanting that some more bunkers should have been there, and we would have got the more chaps.
0: ये फौजी जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में है। ये तब की बातचीत है जब ये अफसर द्रास के पॉइंट 5140 के एक अहम चौकी पर कब्जा करके लौट रहे थे। विक्रम को उसके दोस्त शेर शाह बुलाते थे, दुश्मनों की उन पर नजर थी। विक्रम और उनके साथियों का मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था।
14: They were on the same frequency which were we on our radio sets. And one of the Pakistani soldiers or officer, whosoever it was, he said me, my code name was Shesha. Oh, Shesha, you have come. Don't try to come up, otherwise you'll have a tough time. And that was the time they gave us a challenge. And my guys, they went wild. How dare a Pakistani troop can challenge us?
0: 7 जुलाई को उन्होंने दूसरे पॉइंट पर चढ़ाई की। जबरदस्त लड़ाई के बाद वहां भी जीत मिली, लेकिन जीत का जश्न मनाने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा मौजूद नहीं थे।
15: I owe this capture point 4875 to Captain Vikram Batra of my battalion who laid his life here for the capture of this feature.
14: दिल मांगे मोर।

0: कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया। ये पहली लड़ाई थी जिसमें जंग के मैदान से शहीदों की लाश उनके गांव तक पहुंचाई गई। शहीदों की लाश को गांव तक पहुंचाने का फैसला काफी बड़ा साबित हुआ। इससे करगिल की लड़ाई सिर्फ करगिल तक सीमित नहीं रही, पूरा देश इसके साथ जुड़ गया। जबकि पाकिस्तान अपने शहीदों की लाश तक कबूलने से इनकार करता रहा।
1: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास, जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
3: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलता पूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
6: तब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
7: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
6: अरे ई सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
7: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
6: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
7: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा।
8: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
6: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
10: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
9: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
10: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
9: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
11: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
12: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
11: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
12: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर, ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब, गोपालगंज।
11: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी, गोपालगंज में है।
12: जानकारी है तो कॉल करे 6052-62112 पे।
0: कहानी करगिल की। ये पहली लड़ाई थी जिसमें जंग के मैदान से शहीदों की लाश उनके गांव तक पहुंचाई गई। शहीदों की लाश को गांव तक पहुंचाने का फैसला काफी बड़ा साबित हुआ। इससे करगिल की लड़ाई सिर्फ करगिल तक सीमित नहीं रही, पूरा देश इसके साथ जुड़ गया। जबकि पाकिस्तान अपने शहीदों की लाश तक कबूलने से इनकार करता रहा। इस बीच एक बड़ा खुलासा हुआ। पाकिस्तान को आईना दिखाने के लिए भारत ने वो किया जो अब तक कभी नहीं हुआ था। 11 जून 1999 को विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने संवाददाता सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन में एक टेप रिकॉर्डिंग सुनाई गई।
13: उनसे बात तो नहीं हुई कोई, कल मुलाकात वगैरह हुई कोई? कल सर हुई शाम को, तो वो ब्रीफिंग हमने की जो मियां साहब के साथ वही फोरम था, जो फुल फोरम था, पहले जहां हमने ब्रीफिंग की थी।
14: और उधर ही हुई जमशेद के पास?
13: नहीं, मियाँ साहब के दफ्तर में।
14: अच्छा अच्छा, जो उधर
0: टेप में आवाज पाकिस्तानी सेना के मुखिया जनरल परवेज मुशर्रफ और पाकिस्तान के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अजीज के बीच की थी। मुशर्रफ चीन में थे और अजीज इस्लामाबाद में। करगिल में पाकिस्तान की सेना का दम बहुत जल्दी फूलने लगा था। हालात बिगड़ते देख नवाज शरीफ ने अटल बिहारी वाजपेयी को फोन किया। नवाज शरीफ हवाई हमलों को रुकवाना चाहते थे।
15: कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे श्रीनगर में टेलीफोन किया था, बातचीत की थी और मुझे ये कहते रहे कि इस मामले को आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। ये भी कहते रहे कि पाकिस्तान इस मामले को ठंडा करना चाहता है। हमने कहा ये बताइए ये मामला शुरू कैसे हुआ। हम तो दोस्ती का पैगाम लेकर लाहौर गए थे और लाहौर की सड़क कारगिल में चली जाएगी ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। कारगिल में आपने हमला कर दिया। कल भी उन्होंने जब हम गए हमारा दल गया तो उन्होंने तोपों से सलामी दी, एक के बाद एक गोले डाले। किस लिए? गोलों से हमारा देश दबने वाला नहीं है, हमारे जवान गोलों से झुकने वाले नहीं।
0: भारत की जवाबी कार्रवाई से घबराया पाकिस्तान मदद के लिए अमेरिका के पास पहुंच गया, लेकिन अमरीकी राष्ट्रपति क्लिंटन ने कहा कि पहले पाकिस्तान करगिल से निकले और लाहौर शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। युद्ध के मैदान में पाकिस्तान को परास्त कर चुका भारत कूटनीति के मैदान में भी भारी पड़ रहा था।
16: वर्ल्ड ओपिनियन जो था दुनिया की तरफ से ये बात साफ थी कि इसमें पाकिस्तान की तरफ से खुराफात हुई है और भारत जो भी कर रहा है, भारत ना सिर्फ भारत ने बहुत संयम बरता कि उस लड़ाई को और आगे ना बढ़ने दिया, बट सिर्फ अपने इलाके को खाली कराने के लिए युद्ध किया जिसके लिए हमें काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा। तो उस हालात में दुनिया को भारत की छवि जो थी एक बहुत संयम वाले देश की, एक सोच समझ के कार्रवाई करने वाले देश की और ऐसा देश के जो अपने हितों की रक्षा के लिए जो उसके जायज हक है सिर्फ उन्हीं के लिए कार्रवाई करेगा, ना कि दूसरे देश की किसी इलाके ऊपर नजर रखेगा।
17: ऑपरेशन विजय इज गोइंग टू बी ए ग्रेट विजय।
0: करगिल की दुर्गम और ऊंची चोटियों में भारतीय जवानों ने जिस साहस और शौर्य का परिचय दिया उसी का नतीजा था एक शानदार जीत। लेकिन इस जीत के साथ भारत के लिए कई सबक भी थे। दुश्मन जिस तरह भारतीय सीमा में घुसकर बैठ गया था उसे भारत की खुफिया तंत्र की नाकामी माना गया। इस लड़ाई में भारत के 527 वीर शहीद हुए और 1000 से भी ज्यादा घायल हुए। भारत आज भी करगिल में शहीद हुए अपने जवानों को श्रद्धांजलि देता है, जबकि पाकिस्तान ने करीब 11 साल बाद अपने 453 सैनिकों के मारे जाने की बात कबूली। हालांकि नवाज शरीफ के मुताबिक इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के 4000 सैनिक मारे गए थे। 453 से 4000 के आंकड़ों के बीच उलझा पाकिस्तान, क्या करगिल से कुछ सीख ले पाया? शायद नहीं।
18: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
19: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
20: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
21: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH-27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
20: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
21: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष शग्यों द्वारा।
20: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
21: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
20: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH-27। 22 गोपालगंज।
21: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
1: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया?
14: बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
20: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
14: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोड़ गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
22: ठक ठक।
23: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
24: अच्छा मिला ही नहीं।
23: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
24: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
23: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
24: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: ये सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
4: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
3: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में,
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
6: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
7: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
8: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
9: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
10: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
11: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704 34468 पे।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास, जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
3: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
4: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
5: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
6: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
2: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
7: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
8: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
7: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
3: सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
7: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
8: भरोसे वाले से लेंगे,
7: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
8: और कीमत भी।
7: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
9: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
10: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
11: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
12: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर की करे खरीदारी।
11: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
6: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
11: कॉल करें 85070-32042 पे।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
4: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
5: प्रतिदिन संध्या 7:50 से 8:45 तक होता है, जिसे आप मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर सुन सकते हैं और DTH पर भी सुन सकते हैं। और इसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर है
6: आकाशवाणी 9431021738
5: पर आप संपर्क कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा ये कट।
6: राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र से नवाचार की वैश्विक छवि बनाने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया, देश में स्वाइन फ्लू का कोई नया स्ट्रेन नहीं है, आश्वासन दिया वर्तमान टीके प्रभावी बने हुए हैं। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक, खेल में सहयोग, समावेशिता और आपसी सम्मान को मजबूत करने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाने के साथ संपन्न हुई। ईस्ट बंगाल ने मोहन बागान को 4-1 से हराकर रिकॉर्ड 17वीं बार डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता जीती। और महिला हॉकी विश्व कप में आज रात भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को जीतना जरूरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य

0: कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें। तो एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। स्पेसटेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस बीच राष्ट्र आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। ये दिन हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्पेस साइंस की इस सुविधा को प्राइवेटाइजेशन करके भारत के लिए अपार संभावनाओं का द्वार सज्जित किया गया और जिस तरह की क्षमता प्रोफेसर साराभाई से लेकर के आज तक भारत के महान वैज्ञानिकों ने जिस तरह का मुकाम हासिल किया है, भारत जो आज एक मजबूत स्थिति में इस क्षेत्र में खड़ा है आने वाले समय में विश्व का अग्रणी और लीडरशिप स्टेटस को प्राप्त करेगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध पोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रूपये की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है।
4: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इंडिजिनस स्वदेशी हथियार प्रणालियों की क्षमता को भी देखा है और आगे भी रक्षा मंत्रालय के साथ हमारे लैब, हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और प्राइवेट स्टेक होल्डर्स मिलकर अपनी सेनाओं को इंडिजिनस प्लेटफॉर्म से लैस करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और हमने ये साबित किया है कि आत्मनिर्भरता ये हमारी केवल पॉलिसी नहीं है, आत्मनिर्भरता बैटलफील्ड कैपेबिलिटी का एक मल्टीप्लायर है और इस पहल में जीआरसी तथा यंत्र इंडिया लिमिटेड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, ये वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। परिषद के अनुसार H1N1 समेत मौसमी इन्फ्लुएंजा अत्यधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न शामिल है तथा अधिकतर लोग उचित देखभाल और विश्राम के बाद इससे उबर जाते हैं। परिषद ने कहा कि छोटे बच्चे, बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति को इसकी इन्फ्लुएंजा से जटिलताएं आ सकती हैं। यदि ये लक्षण गंभीर हों तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक का समापन आज ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार करने के साथ हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसमें संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से ब्रिक्स देशों के बीच खेलों में सहयोग सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।
5: बैठक का मुख्य परिणाम खेल विज्ञान, एआई, डिजिटल बदलाव और एथलीटों के प्रदर्शन में सहयोग बढ़ाने के लिए खेल प्रौद्योगिकी पर ब्रिक्स कार्य समूह का गठन करने का प्रस्ताव है। भारत के ब्रिक्स खेल विनिर्माण सम्मेलन के प्रस्ताव को व्यापक समर्थन मिला है। पहला इस वर्ष नवंबर में उदयपुर में किए जाने वाला प्रस्ताव है। इससे विनिर्माताओं, निवेशकों, प्रौद्योगिकी कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों को विशेषज्ञता साझा करके नवाचार को बढ़ावा देने का मंच उपलब्ध होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण पहल ब्रिक्स पारंपरिक और स्वदेशी खेल है जो अक्टूबर में अहमदाबाद में होंगे। इनसे ब्रिक्स देशों की समृद्ध खेल विरासत प्रदर्शित होगी और सांस्कृतिक तथा लोगों के आपसी संबंध सुदृढ़ होंगे। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ऐसे ब्रिक्स खेल साझेदारी करने की अपील की जो केवल घोषणाओं तक सीमित न रहकर खिलाड़ियों और कोचों के आदान प्रदान, संयुक्त प्रतिस्पर्धाओं और ज्ञान साझाकरण के जरिए व्यवहारिक सहयोग के लिए हो। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की सफल बैठक से ब्रिक्स देशों के बीच स्थायी खेल सहयोग का आधार तैयार हुआ है। विशाखापट्टनम से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना।
0: केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने और देश की समृद्ध विरासत को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने में कला और संस्कृति के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में कला तरंगिणी दिल्ली कला महोत्सव में श्री सोनोवाल ने कहा कि महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव की रचना पारिजात हरण अंकीय नाट प्रस्तुत करने के लिए देशभर के कलाकार श्रद्धापूर्वक एकत्रित हुए हैं। उन्होंने कहा कि श्रीमंत शंकरदेव ने कला, संस्कृति, नृत्य और संगीत के माध्यम से समाज में सांस्कृतिक मूल्यों को लाने के लिए अनेक प्रयास किए।
6: महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने भारत में एक संस्कार लाने के लिए जो भी उन्होंने कदम उठाई है, कला संस्कृति की द्वारा, नित्य गीत की द्वारा, इसकी वजह से आज हम 21वीं शादी में दुनिया में अपना मर्यादा पूर्वक परिचय बनाने में हम सफल हुई है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से अपील की है कि वो महिला आरक्षण विधेयक पर राजनीति छोड़े और संसद में इसका समर्थन करे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस महिलाओं के समर्थन की केवल बात करती है। उन्होंने इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की है।
7: देश भर में महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, देश की संसद में वो संसद का गौरव बढ़ाएं, ऐसा प्रस्ताव, ऐसा कानून पारित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से ये अपील की है कि वो त्वरित रूप से महिला आरक्षण का ये संकल्प देश भर में लागू करने के लिए सहयोग करें।
0: राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कल्ट्स एजुकेशन ने अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर क्लाउड तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 1.5 लाख से अधिक लोगों को एआई और क्लाउड साक्षरता के बारे में आधारभूत जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके अलावा 10,000 भागीदारों को रोजगार योग्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि इस पहल में विकसित भारत का विजन परिलक्षित होता है। उन्होंने कहा कि भारत नवाचार, तकनीक और प्रतिभा का वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा के लिए मॉस्को पहुंच चुके हैं। वे रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान डॉ जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिन का ये सम्मेलन भौतिक और आभासी दोनों माध्यमों से संयुक्त रूप में आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक एमएल जाट ने आज कहा कि फसल सुधार, कृषि विकास तथा नीति निर्धारण प्रक्रिया के लिए राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो का मृदा डेटाबेस और सूचना प्रणाली तथा भूमि उपयोग नियोजन महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देश की प्राथमिकताओं और परिवर्तित आवश्यकताओं के अनुरूप ये संस्थान सही दिशा में प्रगति कर रहा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने गंगा नदी के संरक्षण से संबंधित नियमों में हाल ही में किए गए बदलाव पर एक याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक पीठ ने इस महीने की शुरुआत में जारी की गई एक अधिसूचना पर संज्ञान लिया है। अधिसूचना में कथित तौर पर गंगा नदी को इसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में निर्माण निषेध क्षेत्र हटा दिया है। अधिकरण का मानना है कि बदलाव वर्तमान पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन है। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं शक्ति सिंह।
8: ईस्ट बंगाल एफसी ने 135वां ड्यूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। ईस्ट बंगाल ने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेले गए फाइनल में मोहन बगान सुपर जायंट्स को 4-1 से हराकर रिकॉर्ड बराबरी करते हुए 17वीं बार ड्यूरेंट कप जीता। ईस्ट बंगाल के एडमंड लाल रिंदिका ने पहले हाफ में शानदार हैट्रिक लगाकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उधर महिला हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 बजे भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। नीदरलैंड्स 6 अंकों के साथ पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। चीन के 2 अंक हैं जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के 1-1 अंक हैं। और क्रिकेट में कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 5 विकेट पर 300 रन बनाए। देवदत्त पड्डीकल ने 117 रन, शुभमन गिल ने 50 और यशस्वी जायसवाल ने 45 रन की पारी खेली। भारत पहला टेस्ट जीतकर फिलहाल श्रृंखला में 1-0 से आगे है।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 2 से 3 दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र से नवाचार की वैश्विक छवि बनाने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया, देश में स्वाइन फ्लू का कोई नया स्ट्रेन नहीं है। आश्वासन दिया, वर्तमान टीके प्रभावी बने हुए हैं। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक, खेलों में सहयोग, समावेशिता और आपसी सम्मान को मजबूत करने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाने के साथ संपन्न हुई। और महिला हॉकी विश्व कप में आज रात भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को जीतना जरूरी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges private space sector to...
10: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
11: बनिए अपने जिले की आवाज रेडियो रमजिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रमजिम 90.4 एफएम के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है। या पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 5599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
12: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
13: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
11: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
14: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
11: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
12: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
15: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
16: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
15: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
16: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
15: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
16: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
15: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
16: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
17: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
18: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
17: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
18: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
19: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
20: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
15: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
16: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
15: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
16: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
15: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
16: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
15: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
16: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
21: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। प्रशासन बनाम पब्लिक के बीच हुआ क्रिकेट मैच, मारपीट में अलग अलग जगहों से 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, चोरी की मोटरसाइकिल के साथ भी 1 आरोपी को पुलिस ने पकड़ा, विधिक जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन, और हत्या में फरार चल रहे 3 आरोपियों ने किया कोर्ट में आत्मसमर्पण। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से।
22: जी
21: जिले में नशा मुक्त समाज के निर्माण एवं युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज मिंज स्टेडियम गोपालगंज में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और आम जनता के बीच मैत्री क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। क्रिकेट मैच के माध्यम से युवाओं एवं आम जन को नशे से दूर रहने, स्वस्थ जीवन शैली अपनाने तथा खेल कूद से जुड़ने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य खेल को जागरूकता का माध्यम बनाकर समाज में नशा मुक्ति के प्रति सकारात्मक वातावरण तैयार करना है। जिला प्रशासन की ओर से आमजन विशेषकर युवाओं से अपील की गई कि वे इस जागरूकता अभियान से जुड़ें और नशे को ना तथा खेल को हाँ कहते हुए यह संदेश जन जन तक पहुँचा। युवाओं की ऊर्जा एवं प्रतिभा को सकारात्मक दिशा देने के लिए खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नियमित खेलकूद न केवल शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है बल्कि युवाओं को नशे जैसी बुराइयों से दूर रखने में भी सहायक है। जिला प्रशासन ने गोपालगंज वासियों से अपील की है कि नशा मुक्त गोपालगंज के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाएं और स्वयं नशे से दूर रहते हुए दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। दो अलग अलग जगहों पर हुई मारपीट के मामले में कुल 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक मामला विजयपुर थाना क्षेत्र के सुदामा चक गांव का है, जहां मारपीट की सूचना के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और इसमें घायल लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया, तो वहीं घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन करते हुए FSL की टीम के साथ भी जाँच पड़ताल करने के बाद पीड़ित पक्ष से पूछताछ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश को लेकर मोनू शेख और उनके परिजनों द्वारा एक व्यक्ति को मारपीट कर घायल किया गया था। इसी मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक मोनू शेख और दूसरा आरिफ शेख तथा तीसरा बारिश शेख हैं। ये तीनों अकबर शेख के पुत्र हैं, तीनों सगे भाई हैं। तीनों को पुलिस ने इस मारपीट के मामले में गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। साथ ही थावे थाना क्षेत्र के लछवार में भी पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट हुई और इस मामले में भी पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि लछवार गांव में एक व्यक्ति के साथ मारपीट होने की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर FSL की टीम के साथ आवश्यक जांच पड़ताल किया। इस मामले में घायल आदर्श कुमार उर्फ हैप्पी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। साथ ही इस मामले में 2 आरोपी अमरेश चौधरी और उमेश चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिन्हें पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और इस मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। विजयपुर थाना की पुलिस ने वाहन जांच के दौरान चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। पकड़ा गया आरोपी सचिन शाह पिता पत्रू गोण साकिन छोटकी मझवलिया थाना कटिया का निवासी है। इसके पास से चोरी की मोटरसाइकिल मिली है। पुलिस अब इस पर प्राथमिकी दर्ज करने के बाद आवश्यक कार्रवाई कर रही है। चोरी की मोटरसाइकिल के संदर्भ में भी आवश्यक पूछताछ किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में कुचायकोट के बनतैल पंचायत भवन पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान पैनल अधिवक्ता संजीव एवं PLV मुकेश कुमार बैठा की टीम ने उपस्थित प्रतिभागियों को बच्चों के साथ कैसे अनुकूलित वातावरण में रहना है, बच्चों के सुरक्षात्मक तरीके क्या है, बाल श्रम, बाल विवाह, बाल तस्करी, बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम इत्यादि विषयों पर लोगों को जागरूक किया गया। बिशंभरपुर थाना क्षेत्र में हुए कुछ दिन पहले एक हत्याकांड के मामले में 3 आरोपियों ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। इस मामले में पुलिस ने बताया कि विजयपुर चंवर से एक व्यक्ति का शव पुलिस ने बरामद किया था, जिसकी पहचान मोहन यादव साकिन रामपुर माझा बलुआ टोला थाना कुचायकोट के रूप में हुई थी। इसी मामले में मृतक के परिजनों द्वारा समर्पित आवेदन के आधार पर बिशंभरपुर थाना कांड संख्या 62/2026 दर्ज कर नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध अनुसंधान शुरू किया गया था, जिसके बाद कांड के नामजद आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस लगातार इनको गिरफ्तार करने के लिए कानूनी कार्रवाई कर रही थी और जगह जगह छापेमारी भी कर रही थी। पुलिस की दबिश के कारण तीनों आरोपियों ने माननीय न्यायालय में अपना आत्मसमर्पण किया। बताया जा रहा है कि सबसे पहले आरोपी राकेश यादव पिता रुदल यादव साकिन खैरटवा, उसके बाद अशोक यादव पिता स्वर्गीय सीताराम यादव साकिन मनियारा, दोनों थाना कुचायकोट के निवासी हैं, इन्होंने सबसे पहले आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद तीसरे आरोपी मनोज यादव पिता मिर्जा यादव साकिन मनियारा ने भी आज पुलिस की दबिश के कारण न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। इस कांड में अब 3 अभियुक्त अदालत में समर्पण कर चुके हैं, साथ ही इसमें संलिप्त अन्य फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस ने मानवीय और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर छापेमारी शुरू कर दिया है। उत्पाद विभाग की पुलिस ने कुचायकोट क्षेत्र के पहाड़पुर रोड में छापेमारी करते हुए दो शराब तस्करों को मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया। ये दोनों यूपी के तरफ से विदेशी शराब लेकर आ रहे थे। इसमें एक आरोपी राजू कुमार है और दूसरा राकेश रंजन है। ये दोनों नगर थाना क्षेत्र के भीतभैरवा गाँव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। उत्पाद पुलिस ने विकास कुमार नाम के एक आरोपी को भी शराब के साथ पकड़ा है। इसकी भी मोटरसाइकिल जब्त की गई है। यह 7 कार्टून देशी शराब लेकर आ रहा था, तभी पुलिस ने इसे दबोच लिया। विकास कुमार जादोपुर बलुआ टोला का रहने वाला बताया जा रहा है। 89 लीटर से अधिक विदेशी शराब के साथ गोपालगंज शहर से ही उत्पाद पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि केंद्रीय विद्यालय के गेट के पास इन दोनों को पकड़ा गया है। इनकी ई रिक्शा को भी पुलिस ने जब्त किया है। ये दोनों 89 लीटर से अधिक विदेशी शराब लेकर आ रहे थे। इसमें जिन दो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है उसमें हरि तिवारी थावे के उदंत राय के बंगरा का रहने वाला है और राहुल कुमार गोपालगंज शहर के ही सरिया वार्ड नंबर 13 का निवासी बताया जा रहा है। इन सभी आरोपियों को आज पुलिस ने उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हनुमानगढ़ी मंदिर में प्राचीन हनुमान मंदिर में अखंड अष्टयाम का भव्य आयोजन हो रहा है। इसमें बहुत सारे गणमान्य लोग पहुंच रहे हैं। आज आनंद बिहारी श्रीवास्तव ने बताया कि यह प्राचीन हनुमान मंदिर काफी पुराना है और इसके संस्थापक स्वर्गीय बच्चा पांडे थे और इन्हीं के परिजन मनोज कुमार पांडे के द्वारा वर्ष 2002 से लगातार अखंड अष्टयाम का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसे काफी धूमधाम और भक्ति माहौल में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सम्पन्न किया गया। कटिया में एक मकान में चोरी की घटना हुई है। बताया जा रहा है कि लगभग 5 लाख के संपत्ति का चोरी हुआ है। घर के मालिक सुमित राय अपने परिजनों के साथ किसी सदस्य का इलाज कराने बाहर गए थे। बताया जा रहा है कि इसी बीच मकान खाली था और छत से करकट की दीवार को तोड़कर चोर अंदर घुस गए और घर का एक एक कमरा छान दिया और सभी कीमती सामानों की चोरी कर ली। पीड़ित सुमित राय के आवेदन पर अब स्थानीय पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। हथुआ प्रखंड के सबिया में आकाशीय बिजली गिरने से दो बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिनको सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत भी हो गई है, जबकि दूसरे बच्चे की हालत गंभीर है, जिसे डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए रेफर किया है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। जिले के सभी थानों पर आज पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार चौकीदारी परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान चौकीदारों को विधि व्यवस्था संधारण के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। सभी थानाध्यक्षों ने अपने अपने थानों के चौकीदारों को आज थाने पर चौकीदारी परेड में आवश्यक निर्देश दिया। इस दौरान क्षेत्र में सतर्क एवं सक्रिय रहकर संदिग्ध गतिविधियों, असामाजिक तत्वों और जेल से छूटे पेशेवर अपराधियों की गतिविधियों पर विशेष नजर रखने की हिदायत दी गई। साथ ही आसूचना तंत्र को और अधिक मजबूत करने को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। साथ ही शराब तस्करी और अवैध शराब निर्माण पर भी प्रभावी रोक लगाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। प्रशासन बनाम पब्लिक के बीच हुआ क्रिकेट मैच। मारपीट में अलग अलग जगहों से 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी की मोटरसाइकिल के साथ भी एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। विधिक जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन। और हत्या में फरार चल रहे 3 आरोपियों ने किया कोर्ट में आत्मसमर्पण। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
2: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
1: आज ही संपर्क करें 7388 8947 या 9198 8869 73।
3: सुनिए सुनिए सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
22: ठक ठक।
23: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
24: अच्छा, मिला ही नहीं
23: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
3: जी हाँ, कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
23: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
25: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और, वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
26: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034648652 पे।

0: वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर मैं हूं रुचि आपके साथ और आज एक नया दिन है, एक नया शो है। 90s के दौरान यू नो बॉलीवुड में ज्यादातर फिल्में फैमिली, प्यार, ट्रेडिशन और कल्चर पे बना करती थी। उस टाइम पर बॉलीवुड बेंट ग्लोबल एंड रीच्ड वाइडर ऑडियंस, जिसकी स्टोरी लाइंस बहुत ही चैलेंजिंग होती थी। और तब का वो समय था जब फीमेल ओरिएंटेड रोल्स की एंट्री हुई। तो आज का शो उन खूबसूरत एक्ट्रेसेस के नाम होगा जिन्होंने अपने वर्सिटैलिटी और ग्रेस के साथ स्टीरियोटाइप्स तोड़े और बॉलीवुड हिस्ट्री में अपना नाम लिखा। और ग्रेस की बात करें तो सबसे पहले अगर कोई दिमाग में आता है तो वो है माधुरी दीक्षित। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड की डांसिंग क्वीन को शुरुआत में फिल्म्स करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। हाँ, वो तो माइक्रोबायोलॉजी में डिग्री लेना चाहती थी, उनके पास डिग्री है भी, और वो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट या फिर पैथोलॉजिस्ट बनना चाहती थी। वैसे माधुरी ने कथक डांस भी सीखा हुआ है, 8 साल की ट्रेनिंग ली है, नो वंडर इसीलिए उन्हें डांसिंग क्वीन बुलाया जाता है। 1984 का वो समय था जब अबोध फिल्म से इन्होंने अपने करियर की, फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। ये फिल्म तो चली नहीं, लेकिन माधुरी जी को क्रिटिक्स से बहुत तारीफें मिली। और फिर क्या था, उनकी तकदीर की गाड़ी निकल पड़ी और एक टाइम आया जब वो 3-4 फिल्में एक ही साल में रिलीज करती थी। आपको पता है जब हम आपके हैं कौन फिल्म आई थी ना, उस समय माधुरी की फीस सलमान खान की फीस से 2.75 करोड़ ज्यादा थी। वाह, मतलब एक्ट्रेसेस का भी एक जमाना हुआ करता था। खैर आइए इसी बात पर शो की शुरुआत करते हैं इसी फिल्म के गाने के साथ, लता जी और SP बाला सुब्रमण्यम की आवाज में, मौसम का जादू। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर आज ये 90s की डिवाज पे स्पेशल एडिशन।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर वेलकम बैक। आज के इस रेट्रो बॉलीवुड शो में मैं बातें कर रही हूँ 90s के कुछ ऐसी दीवाज के बारे में जिनके बिना हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री लिखी ही नहीं जा सकती थी। 90s में एक ऐसी भी एक्ट्रेस थी जिन्होंने ब्यूटी स्टीरियोटाइप्स को तोड़ा और अपनी यूनिब्राउ पॉपुलर कर ली थी इन्होंने, जो अपने चेयरफुल, आउटस्पोकन, हैप्पी गो लकी नेचर के लिए जानी जाती थी। ऑफ कोर्स आप पहचान ही गए हैं, मैं बात कर रही हूँ काजोल की। काजोल की फिल्मी दुनिया में एंट्री 1992 की बेखुदी फिल्म के साथ हुई थी, लेकिन उन्हें पहली कमर्शियल सक्सेस बाजीगर से मिली जब उन्हें पहली बार शाहरुख के साथ ऑन स्क्रीन पेयर किया गया था। और फिर क्या होना था, काजोल ने जब भी शाहरुख खान के साथ में फिल्में की हैं वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट रही हैं। वैसे काजोल के लिए सबसे टफ किरदार गुप्त फिल्म का था, क्योंकि उन्हें एक मीन ग्रे शेड का जो कैरेक्टर था वो प्ले करना था, लेकिन इसी रोल के कारण शी बिकेम द फर्स्ट वुमन एवर टू विन अ फिल्म फेयर फॉर अ नेगेटिव रोल। जहां दूसरी एक्ट्रेसेस के लिंकअप की खबरें सामने आती रहती थी, वहीं काजोल इन सबसे काफी दूर थी। कॉन्ट्रोवर्सीज इन्हें छू भी नहीं पाती थी। इनफैक्ट गुंडा राज फिल्म की शूटिंग के दौरान शी स्टार्टेड डेटिंग अजय देवगन और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई थी। उनकी शादी भी अजय देवगन से ही हुई विदाउट एनी कॉन्ट्रोवर्सीज। लोगों ने जरूर इनके अनलाइकली पेयरिंग को लेकर के काफी क्रिटिसिज्म जो था वो इन्हें दिया था, लेकिन इनके प्यार को किसी की परवाह नहीं थी। वैसे काजोल का लकी नंबर 5 है, इसीलिए 1995 में उनकी 5 फिल्म्स रिलीज हुई थी और सभी ब्लॉकबस्टर चाहे ना रही हो, लेकिन दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे तो आज तक भी हम याद करते हैं। तो इसी फिल्म से आपको अगला गाना सुनाती हूँ, लता मंगेशकर जी की आवाज में। हर लड़की ने अपने टीनेज में कभी ना कभी तो इस गाने पे डांस किया ही है।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
4: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
3: और लाइट बिल के
4: अब 0 रुपए कैसे दूं?
3: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर।
7: प्रसाद क्लिनिक,
8: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
7: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
8: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
9: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
10: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
9: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
10: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
9: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
11: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
12: वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। 90s की कुछ बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेसेस के बारे में, या यूं कहें कि डीवाज के बारे में आज यहाँ पर मैं और आप मिलकर के चर्चा कर रहे हैं। और जब हम डीवाज की बात करें तो श्रीदेवी जी का नाम सामने ना आए ऐसा कैसे हो सकता है। श्रीदेवी जी को दिल से याद करते हुए मैं आपको बताना चाहूंगी कि माधुरी दीक्षित और जूही चावला की भी अगर कोई इंस्पिरेशन थी बॉलीवुड में तो वो श्रीदेवी जी ही थी। श्रीदेवी जी ने राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन से लेकर के शाहरुख, सलमान तक ऑलमोस्ट सभी टॉप स्टार्स के साथ काम किया था। फिल्मों के साथ फैशन में भी वो काफी पॉपुलर थी। उनका आइकॉनिक चांदनी लुक मतलब फैशन का सीन ही चेंज कर गया था इंडिया में। सुना है डायरेक्टर यश चोपड़ा जी ने चांदनी के लिए पहले रेखा जी को ऑफर भेजा था, लेकिन सिलसिला फिल्म में उन्होंने चांदनी नाम का कैरेक्टर पहले ही कर लिया था तो उन्होंने मना कर दिया और खुद श्रीदेवी को उन्होंने ही रेकमेंड किया था इस रोल के लिए। और बताइए, ये जो एक कैरेक्टर था ये श्रीदेवी जी के लिए जैसे एक बेंचमार्क बन गया था। एक बार यश जी अपनी कार में ट्रैवल कर रहे थे और रास्तों पर सिर्फ एक्शन फिल्मों के पोस्टर्स लगे हुए

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो जारी है। 90s की डीवाज के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। श्रीदेवी जी के बारे में बात कर रहे थे, उन्हीं के दो गाने अभी आपने सुने, और अब मैं 90s में सबसे क्विक सक्सेस जिन्हें मिली उनके बारे में बात करूंगी। नाम है इनका जूही चावला। जूही ने 1984 में मिस इंडिया का क्राउन जीता था। वैसे आप जानते हैं जूही भी कथक में ट्रेन थी, और वो भी 3 साल तक की इन्होंने ट्रेनिंग ली थी। ऑल्सो क्लासिकली ट्रेन्ड सिंगर भी रही है ये। लेकिन जूही इन सब के कारण नहीं, बल्कि अपने कॉमिक रोल्स और चीयरफुल पर्सोना के लिए बहुत पॉपुलर थी। लेकिन फिर भी एक बार इनके और आमिर खान के बीच में थोड़ी अनबन हो गई थी। हुआ कुछ यूं था कि इश्क फिल्म की शूटिंग के दौरान आमिर खान ने जूही चावला पर एक खतरनाक प्रैंक, एक बहुत ही बुरा मजाक किया था। जूही को ये बात अच्छी नहीं लगी थी और वो नाराज हो गई थी और अगले दिन शूट पर ही नहीं आई, जिसके कारण उस दिन बहुत सारा लॉस हुआ था प्रोडक्शन टीम को। और आमिर खान काफी नाराज भी हो गए थे कि मैंने तो मजाक किया था, इसके ऊपर जूही इतना क्यों बुरा मान गई। कुछ दिन के बाद में इन दोनों के बीच में लेकिन ये प्रॉब्लम जो थी वो सॉर्ट आउट हो गई थी, एंड ऑब्वियसली शूटिंग फिर से शुरू हुई। दैट्स हाउ हम ये फिल्म जो है इन दोनों के बीच की वो देख भी पाए थे, इश्क, वन ऑफ द फनीएस्ट फिल्म्स ऑफ दैट टाइम। वैसे जूही की आमिर और शाहरुख दोनों के ही साथ में पेयरिंग काफी पॉपुलर थी, जिसके लिए उन्हें काफी सारे फिल्म फेयर अवार्ड्स भी मिले थे। लेकिन शाहरुख खान के साथ जब ये डुप्लीकेट फिल्म की शूटिंग कर रही थी प्राग में, उस समय शूटिंग के दौरान जूही चावला ने अपनी माँ को खो दिया था और उन्हें वापस इंडिया आना पड़ा था। काफ़ी हैवी लॉसेस हुए थे इस फिल्म के प्रोडक्शन टीम को, क्योंकि शूटिंग रोक दी गई थी। और सबसे ज़्यादा अगर किसी पर इस चीज़ का फ़र्क पड़ा था तो वो शाहरुख खान थे, क्योंकि शाहरुख ने खुद कह दिया था कि जो भी लॉसेस हैं वो मेरी फीस में से काट दो, लेकिन इस फिल्म को जारी रखो। आई थिंक दैट इज़ वाई ही इज़ द किंग ऑफ बॉलीवुड। बट एनी वे, जूही चावला की बात हो ही रही है, 90s की एक बहुत ही बेहतरीन डीवा, तो जूही चावला और शाहरुख खान की ही फिल्म डर से सुपरहिट गाना आपको सुनाती हूँ, उदित नारायण और अलका याग्निक जी की आवाज़ में। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया?
2: बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
3: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
7: वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर मैं हूँ रुचि आपके साथ। 90s की मोस्ट ऑफ द एक्ट्रेसेस डांस में अव्वल थी। अगर माधुरी और जूही कथक ट्रेन डांसर्स थे, तो मनीषा कोइराला भरतनाट्यम और मणिपुरी ट्रेन डांसर। मनीषा अपनी टाइमलेस क्लासिक ब्यूटी और एलिगेंस के लिए पॉपुलर थी। एक्टिंग के पहले उन्हें डॉक्टर बनने की चाहत थी, लेकिन बहुत सारी मॉडलिंग जॉब्स ने उनके लिए बॉलीवुड के दरवाजे खोल दिए। मनीषा ने बॉलीवुड के साथ साथ नेपाली, तमिल, मलयालम, तेलुगु फिल्मों में भी काम किया है। उनका बॉलीवुड डेब्यू हुआ था 1991 की फिल्म सौदागर के साथ में, और वो उस साल की टॉप ग्रॉसिंग फिल्म थी। वैसे शादी से पहले मनीषा वॉज क्वाइट पॉपुलर फॉर हर टर्बुलेंट अफेयर्स। इनफैक्ट अपने सौदागर फिल्म के को स्टार विवेक मुश्रान के साथ अफेयर की खबरें भी इनके सामने आई थी, लेकिन बाद में इन दोनों का ये जो अफेयर था, ये ज्यादा दिन तक चल नहीं पाया। लेकिन क्या आपको पता है, मनीषा कोइराला अपने जमाने की सबसे ज्यादा कमिटमेंट फोबिक एक्ट्रेस मानी जाती हैं। बहुत डर लगता था इन्हें रिलेशनशिप्स में घुसने से, चाहे ये अपनी रियल लाइफ में ऐसी थी, लेकिन फिल्मों में तो इन्होंने काफी रोमांटिक रोल्स भी निभाए हैं। फिलहाल मैं आपको मनीषा कोइराला की उस फिल्म से गाना सुनाती हूँ जिसे वो ऑलमोस्ट खो चुकी थी। मैं बात कर रही हूँ 1942 लव स्टोरी की। इस फिल्म के स्क्रीन टेस्ट में मनीषा फेल हो गई थी, लेकिन उन्होंने विधु विनोद चोपड़ा जी से काफी रिक्वेस्ट करके दूसरा स्क्रीन टेस्ट करवाया था, और तब जाकर वो सिलेक्ट हुई थी। आई मीन, आई कैन नॉट इवन इमेजिन दिस फिल्म विदाउट मनीषा कोइराला। चलिए कुमार सानू की आवाज में ये गाना, सेलिब्रेटिंग 90s की डीवा मनीषा कोइराला, वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर। कुछ ना

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। 90s की डिवाज के बारे में आज हम इस एपिसोड में बात कर रहे हैं, और जब 90s की कुछ खूबसूरत एक्ट्रेसेस की बात हो, डिवाज की बात हो और ऐश्वर्या राय की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। ऐश्वर्या इज अनडाउटेडली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमेन इन द वर्ल्ड। हम दिल दे चुके, सनम, गुरु, देवदास जैसी फिल्मों से उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है। अपनी पर्सनल, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस किया जाए, इस चीज का भी एक एग्जाम्पल उन्होंने सभी एक्ट्रेसेस, नॉट जस्ट एक्ट्रेसेस एक्चुअली, सभी लड़कियों के लिए सेट किया है। लेकिन क्या आप ऐश्वर्या की एजलेस ब्यूटी का राज जानते हैं? चाहे वो कितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स इंडोर्स क्यों ना करती हों, लेकिन ऐश्वर्या राय आज तक भी सिर्फ आयुर्वेदिक ऑयल्स का इस्तेमाल करती हैं अपने चेहरे पर। वैसे ऐश्वर्या खुद भी एक डॉक्टर ही बनना चाहती थी। उनका बचपन से सपना था कि या तो वो डॉक्टर बने या फिर एक आर्किटेक्ट बने। बताओ बचपन में हम क्या क्या सपने देखते हैं और बड़े होकर के क्या बन जाते हैं। वैसे जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। सोचिए अगर ऐश्वर्या राय डॉक्टर बनती और आप ऐश्वर्या राय के पास में जाते पेशेंट बन करके, तो आप तो अपना दिल दे करके आ जाते वहां पर, तो अलग दिल के मरीज बन जाते आप, चाहे कोई और बीमारी लेकर के गए होते। एनीवे, ऐश्वर्या राय की बात यहाँ पर हो रही है तो और प्यार हो गया फिल्म से। उदित नारायण जी का गाना सुनाती हूँ सिर्फ और सिर्फ वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। राष्ट्र आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। यह दिन हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने का दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है।
1: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रूपये की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, यह वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। परिषद के अनुसार H1N1 समेत मौसमी इन्फ्लुएंजा अधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न है तथा अधिकतर लोग उचित देखभाल और विश्राम के बाद इससे उबर जाते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा के लिए मॉस्को पहुंच चुके हैं। वे रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान डॉ जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक का समापन आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हो गया। इसमें ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इसमें संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से ब्रिक्स देशों के बीच खेलों में सहयोग सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Amrit Bhushan. Prime Minister Narendra Modi has urged private sector in space research to build global aura of innovation so that people worldwide feel that if they want to make a career, they should go to India. Mr. Modi stated this during an interaction with CEOs and founders of 20 space startups recently. According to the transcript of the interaction, which was released on National Space Day today, Prime Minister Modi also highlighted India's cost competitiveness in launching space ventures. During the interaction, Mr. Modi urged the space sector startups to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world.
3: आपने नए क्षेत्र में साहस दिखाया है. सबसे बड़ी बात है कि आपने सरकार की बात पे भरोसा किया. मेरा एक मत रहा कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, हम बार बार उसमें बदलाव न करें. दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है.
2: Defence Minister Rajnath Singh has stressed the need for self-reliance in building warships, offshore vessels and related maritime sectors, describing it as vital to the country's security. Mr. Singh was addressing the gathering after laying the foundation stone for 5 expansion projects of the Garden Reach Shipbuilders and Engineers, GRSE, and Yantra India Limited, worth approximately 34,000 crore rupees in Kolkata. The Defence Minister asserted that India is capable of becoming a global shipbuilding hub and called for high-quality maintenance services and timely delivery of defence products to achieve this goal. Indian Council of Medical Research, ICMR, has clarified that no new strain of H1N1, commonly known as swine flu, has been identified and there is no cause for panic, assuring that current vaccines remain effective. According to senior scientists at the ICMR, these viruses have been in circulation since the year 2025. According to ICMR, seasonal influenza, including H1N1, is mostly self-limiting. Common symptoms include fever, cough, headache and body ache, and most people recover with appropriate care and rest. The BRICS Sport Ministers meeting concluded at Vishakhapatnam in Andhra Pradesh with unanimous adoption of the Sports Joint Declaration. The declaration reaffirms the commitment of the member countries to strengthen cooperation in sports through dialogue, mutual respect and inclusiveness. The meeting was held under India's BRICS Chairship 2026. A key outcome of the meeting has been the proposal to establish a BRICS working group on sports technology to promote cooperation in sports science, artificial intelligence, digital transformation and athlete performance. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar reached Moscow today on a 2-day official visit to Russia. During the visit, the minister will co-chair the 27th session of the India-Russia Intergovernmental Commission on Trade and Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation. He will also meet Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and exchange perspectives on regional and global issues. The National Skill Development Cooperation, NSDC, and Cultus Education have announced the launch of a nationwide cloud and artificial intelligence skilling initiative in collaboration with Amazon Web Services, AWS. The program aims to provide foundational AI and cloud literacy to 1,50,000 learners through AWS digital training content and to offer intensive job-ready training to 10,000 participants through the AWS Restart program, focusing on youth in Tier 2 and Tier 3 cities. In football, East Bengal FC have lifted the Durand Cup for a record 17th time, ending a 22-year wait for the prestigious trophy after defeating arch-rival Mohun Bagan Super Giants 4-1 in the final in Kolkata this evening. The India Meteorological Department, IMD, has issued an orange alert for very heavy rainfall at isolated places over Chhattisgarh, Bihar, Odisha, East Madhya Pradesh tomorrow. Meanwhile, parts of the national capital received light to moderate rainfall. The weather agency predicted cloudy sky with a spell of very light to light rainfall at most places tomorrow. And that is the end of this news bulletin.

0: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।
1: रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रिमझिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से। आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं। सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रिमझिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रिमझिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो द

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो
2: हेलो, नमस्कार मैम।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
2: क्या समाचार है?
1: मेरा समाचार ठीक है, आप अपना बताइए।
2: हम भी ठीक है।
1: तो क्या हो रहा है
2: अभी? अभी दोपहरिया का खाना बन रहा है मैम।
1: अच्छा, बच्चे सब के लिए?
2: हाँ,
1: स्कूल गए हैं सब।
2: जी मैम, आपका खाना पीना हो गया?
1: हाँ हाँ, मेरा हो गया है।
2: गाना सुनना है मैम?
1: बता दीजिए।
2: कौन सिंह का गाना है? निधि आगे मारल भूला आँखियों ना खोली है।
1: अच्छा, और गाना सुनाना भी है?
2: जी मैम, आप मनोरमा मैम को, सभी जितना सुनते हैं रेडियो रंजन परिवार, सभी को सुनाना है मैम।
1: ओके जी, फिर गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत सारे आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
0: थैंक यू। हाँ जी मैडम जी, आपको गाना सुनना है?
1: जी जी बिल्कुल सुनाऊंगी। नाम बता
0: दीजिएगा।
1: अपना नाम बता दीजिए आप।
0: अरुण कुमार मिश्रा, गोपालगंज से बोल रहा हूँ।
1: अच्छा अच्छा, और कौन सा गाना बोले हैं अभी?
0: नशा शराब में होती से नाचती है बोतल।
1: जी जी, और गाना सुनवाना भी है किसी को?
0: हाँ जी, ये पूरा अपना रेडियो रेंज इनका जितना टोरा ग्राउंड है तो सुनाना है, और अपनी फैमिली को भी सुनाना है, जितना भी साथ है उनका भी सुनाना है।
1: और आप बताइए, आप ठीक हैं?
0: जी ठीक है जी।
1: ओके, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं hello.
0: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029994911। जी हाँ, 80029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: नमस्ते मैम, कैसे हैं?
5: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
6: तो
5: क्या हो रहा है अभी
6: आपके पास?
5: क्या
6: आप ही के पास कौन सा बिजी बता रहा?
5: अच्छा हाँ, कॉल आया हुआ था किसी का।
6: आज सब बढ़िया है ना?
5: आज सब ठीक है।
6: गाना
5: बता दीजिए।
6: कौन सा
5: गाना?
6: हाँ, मेरा रोड़।

0: आज आपकी आवाज में भी गाना सुन ले, आप भी बहुत अच्छा गाती हैं। अच्छा वो दोनों में आवाज सेम लगता है।
1: हाँ सेम लगता है लेकिन मुझे गाना नहीं याद।
0: अच्छा
1: से भी गाकर जाएंगे।
0: अच्छा यहीं से हैं।
1: हेलो।
0: हाँ हेलो नमस्ते, क्या हाल चाल है? वो भी ठीक है। अच्छा लगता है, आवाज बहुत ही अच्छा है, गाना बहुत ही अच्छा गाती है। आप दोनों की आवाज बिल्कुल मिलती हुई है।
1: हम दोनों का आवाज एक ही जैसा है।
0: हाँ
1: कोई पहचानता भी नहीं है घर से कोई कहीं।
0: अभी मैं कंफ्यूज हो गई।
1: कोई पहचानता नहीं।
0: तो तबीयत कैसी है?
1: ठीक है उनका तबीयत।
0: ठीक है ना।
1: ठीक है इसलिए तो गा के सुनाई आपको।
0: बढ़िया है, ठीक हो गई। और गाना डेडिकेट है
1: आपको है, मनोरमा मैम को है और दोनों सर है उनको भी है, बाकी से बहन सभी को है
0: जी। ओके फिर गाना प्ले कर रहे हैं।
1: थैंक यू मैम सुना लीजिएगा।
0: ओके रेडियो रंजन में कॉल किए इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: जी नमस्कार मैडम जी, मैं सुनिश्चित हूँ मत्स्यनगर जिला गुना मध्य प्रदेश से।
1: जी जी, कैसे हैं आप?
0: आज मैडम जी आपका रेडियो सुन रहे हैं और बैठे हैं, सोपर ही हैं।
1: बता दीजिए रहे हैं। तो पहले अपना उसके बाद उनका। हेलो
0: जी जी,
1: हाँ जी बोलिए।
0: बस बैठे हैं दुकान पर और रेडियो सुन रहे हैं आपका।
1: अच्छा जी, और ठीक है ना, खाना वाना खा लिए?
0: हाँ हो गया खाना माना सब हो गया है।
1: चलिए जी, फिर गाना बता दीजिए मुझे, कौन सा गाना सुनना है आपको?
0: जी मैडम जी, गाने के बोल हैं, पिक्चर का नाम है आशा।
1: आशा
0: आशा, और उसमें गाने के बोल हैं, तूने मुझे बुलाया शेरा वाली है, मैं आया मेरा वाली है, मैं वैष्णो देवी जा रहा हूँ मैडम जी सावन बाद।
1: अच्छा जी,
0: रक्षाबंधन के बाद जा रहा हूँ इसलिए भजन सुनना चाहता हूँ।
1: अच्छा, और गाना सुनाना भी है?
0: जी, भारती मैम को, सोनी मैम को, मनोरमा मैम को, और गोपाल ओझा जी है, गजराज सिंह लोधी है, जितेंद्र धाकड़ जी है।
1: जी जी बिल्कुल, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4
0: बैंड जी।
1: ये आपको आज बज जाएगा, नहीं तो कल बज जाएगा।
0: ठीक है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।
1: जी जी बिल्कुल।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: हेलो,
5: ये बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम
6: 90.4 FM में। नहीं उठाएगी हमारा?
5: नहीं नहीं, उठाऊंगी क्यों नहीं, बस थोड़ा सा काम में बिजी थी इसीलिए नहीं ले रही थी। सबका कॉल उठाया गया था, आपको कैसे भूल जाएं लोग।
6: क्या हाल चाल है अपना
5: भाई? सबका हाल चाल ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं?
6: हम लोग भी ठीक है।
5: और घर में सब कोई कैसे हैं?
6: ठीक है। दो चार दिन थोड़ा बाबा धाम गया था, लगाए थे ना, 10-12 दिन प्रोग्राम नहीं सुन पाया
5: जी।
6: घर था थोड़ा तबियत खराब हो गया, आज गोपालगंज में आया। ठीक।
5: अच्छा जी, चलिए बढ़िया। फिर बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको?
6: क्रांति फिल्म का है चाना चूर गरम बाबू मलाया।
5: और गाना
6: विकास है, गुड्डू है, गुड्डू है विकास, और रंजीत फुलाना टोला
5: जी,
6: रिया रूबी आप है आपका टीम है, माँ हंस रही है।
5: कोई बात नहीं, कह दीजिएगा वो भी सुन लेंगी, फरमाइश भी किए हैं।
6: अच्छा बेस्ट।
5: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
6: ओके, नमस्ते
5: नमस्ते।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
1: वालेकुम
0: अस्सलाम।
1: थोड़ा सुन रहा था साहिब
0: जी। बिल्कुल सुनाऊंगी, नाम बता दीजिए अपना।
1: हमारा नाम है रफीक अली
0: जी। जी और कहाँ से हैं आप?
1: हम बोल रहे हैं गोपालगंज पठानपट्टी बजाते हैं
0: जी। और गाना कौन सा सुनना है आपको?
1: गाना सुनना है साड़ी वाला नहीं है?
0: कौन सा?
1: कमर में साड़ी नहीं है?
0: कमर में दागी भैया।
1: हाँ जी जी।
0: और गाना सुनाना भी है?
1: गाना के गाना सुनाना है, जितने लोग सुन रहे हैं सब लोग रेडियो लगे सब लोग काम करता है।
0: जी जी बिल्कुल। चलिए गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 एफएम।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029494111। जी हाँ, 80029494111। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: स्वागत है मैडम।
5: वालेकुम अस्सलाम,
6: क्या खैरियत है?
5: मेरा ठीक है, आप अपना बताइए।
6: मेरा भी ठीक है। कितना देर से लगा रही हूँ मैडम।
5: अच्छा,
6: मुझे गाना सुनना है।
5: बता दीजिए कौन सा?
6: आज की रात।
5: अच्छा, आज की रात मजा हुस्न का। अच्छा जी, और गाना सुनाना भी है?
6: हाँ, सुनाना भी है। सबसे पहले आपको, उसके बाद से शफकत अली को, और तमाम सुनने वाले रेडियो रिमझिम सबको सुनाना है।
5: जी जी बिल्कुल। और तबीयत ठीक है आपकी?
6: हाँ ठीक है
5: जी। तो चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
6: थैंक यू मैम,
5: वेलकम।
7: आज तक क्षमा पे परवाना मरता था, लेकिन आज परवाने पे ये क्षमा मरने को तैयार है।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। नमस्ते।
0: हेलो
1: जी।
0: हाँ नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, क्या हाल चाल है?
0: विकास कुमार बोल रहा हूँ, हिंदापुर से।
1: कैसे हैं आप?
0: बढ़िया मैम, आप कैसे हैं?
1: ठीक है।
0: और बताइए, मौसम मौसम कैसा है?
1: मौसम तो अभी सुहाना बना हुआ है गोपालगंज का।
0: अच्छा, सुहाना बना रखा है। इधर तो बहुत बहुत तेज धूप है
1: जी।
0: इधर बहुत धूप है, गर्मी भी बहुत तगड़ा हो रहा है।
1: गर्मी भी तेज है। नहीं तो अभी मतलब इधर फिलहाल थोड़ा ठीक है।
0: इधर में क्या है ना मैडम, वो कंपनी का एरिया है ना, कंपनी इंडियर एरिया है ना, इसलिए थोड़ा गर्मी रहती
1: है। तो वहाँ कंपनी के रूम में रहते हैं हम लोग, या फिर मतलब अपना रूम में?
0: क्या चीज?
1: आप लोग वहाँ रहते हैं तो कंपनी के रूम में रहते हैं कि अपना रूम लेके?
0: नहीं, कंपनी से अलग रहते हैं रूम।
1: चलिए तो फिर ठीक है।
0: कंपनी में कौन रहेगा, इतना गर्मी होता है जी, हालत खराब हो जाएगा।
1: तो आज कौन सा गाना सुनना है आपको?
0: हमको आज गाना सुनना है तो दिल ऐसा जिसने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा, यही वाला।
1: पूरा नहीं गाइए, पूरा नहीं गाइएगा, थोड़ा
0: बढ़िया लग रहा है ना।
1: हाँ।
0: ये पुराने सॉन्ग है।
1: और गाना सुनाना भी है किसी को?
0: सबसे पहले आपको।
1: अच्छा,
0: जितना रेडियो रंजन सुनने वाला है सबको। और सब बढ़िया है ना मैं?
1: हाँ, और सब बढ़िया है।
0: वो जो नंबर दे रहे थे, वो तो नंबर को ऐसे भी ऑडियो कॉल लगाते हैं तो लग रहा है।
1: ऑडियो कॉल लगा
0: तो जो बुधवार को जो नंबर आप दिए थे 2291 वाला है लास्ट में, वो ऑडियो कॉल भी लग रहा है।
1: तो कॉल लग रहा है पर उस पर कोई कॉल उठाएगा नहीं, केवल व्हाट्सएप पे उस पर मैसेज किया जाएगा।
0: अच्छा, मैंने जैसे बोल करके भी मैसेज कर सकते हैं तो गाना सुन लेंगे ना?
1: हाँ, व्हाट्सएप पे बोल कर मैसेज कर लीजिएगा कि मुझको ये गाना सुनना है तो हो जाएगा।
0: अच्छा।
1: हाँ, व्हाट्सएप पे आप बोल के मैसेज डाल दीजिए, हो जाएगा।
0: ओके,
1: गाना सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
6: मैडम जी नमस्ते।
5: मैडम जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
6: मैं भी ठीक हूँ।
5: नाश्ता हो गया आपका?
6: जी आपका हो गया। रात समाचार बताए अच्छा बनी?
5: हाँ हाँ हम ठीक बने, बस
6: रेडियो का परिवार अच्छा बन।
5: सबके कृपा बात
6: है, अच्छे रहे कहीं प्रोग्राम अच्छा चलते
5: रहा। कौन सा आज गाना सुने के बाद?
6: गाना सुना दी सजनो बैरी भैले हमारे।
5: अच्छा, और गाना सुना हो के बाद?
6: जी सबसे पहले आपको जितना रेडियो मार्गे सुनता है सब दो सबके साथ।
5: चलिए फिर गाना प्ले करते नहीं सुना चाहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।
6: मैडम जी नमस्ते।
5: नमस्ते।

0: हेलो जी नमस्ते, मैं नेपाल जाने जी छोटा संघ ग्राम कोणामन सिंह प्रदीप चंपारण बिहार से संजय कुमार साहब बात कर रहे हैं।
1: जी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: इसके लिए दिल से धन्यवाद। अपना सुनाइए अपना और हाल खबर रेडियो रिमझिम संपूर्ण परिवार कैसे हैं, आप कैसी हैं?
1: हम सभी ठीक हैं।
0: चलिए आप पूरी टीम के लिए हमारे ओर से बहुत बहुत शुभकामना जाता है कि एकदम स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, मुस्कुराते रहे, ऐसे ही हम लोग से बात करते रहे, अपना हम लोग फरमाइश बजवाए, आप लोग बजाए, हम लोग मनोरंजन करने के लिए तैयार है, मनोरंजन
1: करते
0: रहे।
1: जी जी बिल्कुल
0: जी जी जी। और सुनिए और महीना पावन महीना तो लास्ट आ रहा है, आप कैसे अब कितना एक सुमारी अभी बाकी है शायद, तो आप क्या तैयारी कर रही है, आप अभी रखते हैं कि नहीं,
1: मतलब
0: आप सुमारी करती है कि नहीं?
1: नहीं अभी तो हम नहीं करते हैं क्योंकि थोड़ा काम भी ज्यादा रहता है तो कर नहीं पाते हैं। हम मान लीजिए जितना खोलना है तो फिर करेंगे तो प्यास और भूख तो लग ही जाएगा।
0: जी जी जी जी चलिए बिल से धन्यवाद। चलिए आप नहीं किए तो क्या हो गया, हम भी तो सही नतीजे, हम भी तो हम लोग तो है नहीं है, लेडीज के लिए है होता है। जी जी ठीक है, उन लोग करेगा, हम लोग को फल भी मिलेगा उनको जी जी और सब विशेष हम लोग का मालूम चलिए गया कि आप भी ठीक है, हम भी ठीक है। अपना उधर मौसम बता दीजिए थोड़ा।
1: मौसम यहाँ का सुहाना बना हुआ है अभी,
0: मौसम इधर भी है लेकिन धूप है, गर्मी है, तनखा गर्मी है, फिर भी ठीक है। चलिए बात आपके मौसम है, कभी धूप कभी छांव होता ही है। जी तो आज हमारे मन पसंद के गाना आज बजा दीजिए,
1: बता दीजिए
0: नजर।

0: सीता मुने, यही संग सुना दिए
1: जी जी। और गाना सुनाना भी है?
0: गाना सबसे तो पहले आपको रेडियो रिमझिम संपूर्ण परिवार को और दोस्त में हो गया शेखावन से ममता दीदी घुमाइए से उत्तम कुमार जी रामलाल प्रसाद कुशवाहा जी कृष्ण बगा से अजिन पाया चला बहुत पूर्णम से नरेश सोहनी दीपक दास उदय महन ठाकरे छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से राजेंद्र यादव भारती पंतलाल गौतम उत्तर मऊ बिहार से प्रदेश से कहिए ना कि उत्तर प्रदेश से विशेषकर को हमारे नाम कहने पता नहीं तमाम दोस्त को मोहम्मद सलाज अंसारी है मझोलिया को विशेष करके उनको सुनाते हुए अभी आपसे विदा लेंगे। नमस्कार।
1: नमस्कार। रेडियो रंजन में कॉल किए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: नमस्ते
6: जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: हम तो बुझे कल खाना नहीं उठेगा।
6: नहीं नहीं उठेगा।
5: और सब बताइए।
6: और सब ठीक है, आप बताइए।
5: मेरा भी ठीक है। खाना ना हो गया है?
6: हाँ खाना हो गया है, खा के ही आए हैं।
5: चलिए बढ़िया है। अभी तो काम अपना छोड़ कर लगा रहे थे तो पहला बार में कॉल लग गया।
6: अच्छा चलिए, आज तो बढ़िया है।
5: मतलब आज ज्यादा परेशानी नहीं हुआ है? तो मौसम कैसे है गोपालगंज का?
6: अभी तो मौसम सुहाना बना हुआ है गोपालगंज का।
5: इधर भी वैसा ही है। मेरे को गाना सुना दीजिए। अंकुश राजा की आवाज में सुना दीजिए रक्षाबंधन सॉन्ग।
6: अच्छा, अंकुश राजा की आवाज में रक्षाबंधन का सॉन्ग।
5: वो सॉन्ग बजा दीजिए, बहन तुमको कबो ना भुलाए।
6: कौन सा?
5: बहनी तुम तोहरों के कबो ना भुलाए, अंकुश राजा की आवाज में।
6: और गाना सुना होगी
5: पहले तो आपको, उसके बाद कोनी दीदी को, मनोरमा दीदी को, करिश्मा को स्पेशल में। अभी करिश्मा जी मशीन चला रही है, कपड़ा सी रही है।
6: अच्छा,
5: और जितना रेडियो रेंज है सुन रहे सभी लोग को सुनना है।
6: ठीक है।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 94।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: अरे कौन सा कौन 100 बार फोन लगाए हैं, अभी लगा है, एक घंटे लगा रहे हैं फोन।
1: अच्छा, तो बिजी जा रहा हूँ।
0: आप फर्स्ट बार लगाए हैं आज?
1: हाँ।
0: वो गाना सुन रहे हैं मैडम जी, है ना?
1: नाम बता दीजिए।
0: थानेदार फिल्म का थानेदार फिल्म का जब से वह शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ।
1: जी जी, गाना तो सही बता रहे हैं, पर आप अपना नाम भी बता दीजिए।
0: हम बोल लकड़ी दरगाह से बोल रहे हैं मैडम जी, है ना? हमारा नाम है हरिश पटेल, लकड़ी दरगाह से सीवान जिला, ठीक है?
1: और गाना सुनाना भी है।
0: हाँ, पता है रेडियो रिमझिम जितना सुनते हैं सब खूबी है
1: ना।
0: आज फर्स्ट बार फोन किए हैं, 100 बार तो फोन नहीं लगाए हैं, है ना? कॉल किए हैं तब लेकर लगाए आज।
1: जी
0: एक घंटा लगा रहे हैं, एक घंटा बोल के 10 मिनट लगा रहे हैं, अब पहले 200 हो गए मोटे मोटी।
1: सब कोई का लगातार कॉल आते रहता है ना, इसीलिए
0: सब गाना बच जाएगा हमारा।
1: ये आपको 5 बजे जो शो चलता है 5 से 7 यही हेलो माई चॉइस का,
0: शाम के?
1: हाँ, शाम को मिल जाएगा आज सुनने को, नहीं तो कल शाम को।
0: शाम को ना,
1: आज शाम को भी मिल सकता है सुनने को, सुन लीजिएगा।
0: ठीक है मैडम, नमस्कार।
1: नमस्कार, रेडियो रिमझिम में कॉल किए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: जी नमस्ते मैम।
5: नमस्ते
6: जी, क्या हमारा हिंदा बोल।
5: कैसे हैं आप?
6: बढ़िया है जी, हम आ रहे हैं मैम
5: जी। अच्छे हैं।
6: अरे सब आए तो पूजा है ना मैम?
5: पूजा है, पूजा का
6: आज वो क्या बोलते हैं वो नागपंचमी का जो नई पूजा होता है दो दिन बाद।
5: हाँ हाँ, सप्तमी
6: वही पूजा है। मेरे घर पर भी पूजा हो रहा था, सुबह में मेरी मैडम फोन करी, बोली की आ जाइए पूरी खीर खाने के लिए।
5: मेरे यहाँ भी हुआ है।
6: और बताइए क्या हाल चाल है?
5: और सब ठीक है। नहीं, सावन में थोड़ा ज्यादा ही पूजा होता है।
6: जब वो जैसे नागपंचमी होगा तैसे वो तो पूजा हम लोग भी बढ़िया है, एकदम मस्त है, तंदुरुस्त है एकदम। मंगलवार का दिन गाड़ी पकड़ेंगे यहाँ से चले आएंगे अपने देर में।
5: जी जी आइए। और बताइए आज गाना कौन सुनना चाहते हैं?
6: गाना तो सुनना है वो नील कमल का राखा बंधन वाला।
5: हाँ।
6: है क्या गाना?
5: गाड़ी से
6: गाना तो नहीं आता है लेकिन गाते
5: गाइए ना, अच्छा लगेगा।
6: ये नया सॉन्ग है मैम।
5: हाँ।
6: अभी नया अभी गाना ये लॉन्च हुआ है नील कमल का।
5: सारे हम बोलते हैं कि हम गाते ही नहीं
6: है। नहीं मैम, मैं तो घर पे मैं अरजाम अरजाम गा रहे। वो जो अरजाम है कीर्तन नहीं होता है, हरे रामा हरे कृष्णा वाला।
5: हाँ, होता है
6: वो सब। हम जाते हैं गाने वो गाने के लिए जाते हैं अरजाम।
5: अच्छा जी।
6: लेकिन मेरी मम्मी बोलती है कि बेटा ये सब करने से धर्म कर्म नहीं चलेगा बेटा, 2000-3000 रुपए मिलता है तुम्हें 24 घंटा का। हम मम्मी से बोलते हैं कि मम्मी उठना कम है बताओ 24 घंटा में, भगवान को तो भजन हम गा रहे हैं, कौन सा स्टेज पे डांस कर रहे हैं।
5: ये तो सही बात।
6: मम्मी बोलती है कि नहीं बेटा ये मत करो, तुम बेशक दुकान वकान कर लो सब्जी जी का अपना, आटा उटा चलेगा तो आटा उटा में जाना। और बताइए खाना वाना हो गया है सुबह में?
5: हाँ, खाना तो हुआ है।
6: अच्छा, सबसे पहले आपको ये गाना सुनवाना चाहते हैं, ठीक है?
5: जी जी।
6: जितना रेडियो रंजन सुनने वाले हैं सब उड़का हो। एक मेरे अभिषेक भाई है वो बनारस के हैं, गाजीपुर का, वो मेरा का गाँव का यूपी का उत्तर प्रदेश का। वो बोल रहे हैं कि गाना तो बहुत बहुत गाना फेवरेट है फरमाई दिए हो भाई। हम बोले राखा बंधन का है ना यार।
5: हाँ, इसीलिए। चलिए फिर गाना प्ले करते हैं।
6: ठीक है, ओके मैम।
5: नमस्ते, रेडियो रंजन में कॉल किए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
6: ठीक है, ओके।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपके रेडियो
1: जी। भारती जी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: क्या हाल चल रहा है?
0: हमारा हाल चाल तो ठीक बरबर बताइए।
1: ठीक है बनिया, लगातार कॉल हार लग गए बेटे। हम दिल्ली से रंग बोलता नहीं, बढ़िया से नाश्ता पानी कैसे आई है कि ना?
0: हाँ सब पूजा रहा था, जल्दी जल्दी में लेट हो गया तो ना ही कहीं है आज।
1: हाँ देखा था नहीं ग्यारह पहुँच गया, पता ना भारती जी रास्ते में गाड़ी का मौसम कैसा होता ले जाता है?
0: मौसम तो कभी धूप कभी छाँव और ये हवा भी बहुत
1: कुछ होगा, इनका योजना भी हवा नहीं खेल चलती है दिल्ली में, बहुत उमस हुआ है समझ नहीं।
0: उमस आवे तो बारिश कहीं हुई जरूर,
1: बादल तो खेलेगा लेकिन बारिश हो जाए कब?
0: बारिश मैंने उमस बात तो हुई जरूर।
1: देखिए उमस वाला जो दिन होता है कार्तिक महीना तक उमस वाला चल गया, मौसम ऐसा होकेला धान के खेती के लिए होकेला, जब तक उमस ना हो सही से तो धान बढ़िया से अपन फसल जो पकाव न करे, जन माने फसल के हिसाब से मौसम होकेला तो हर समय के नहीं खे अपना हिसाब से जो भी मौसम बा। तो आज के गाना बैठे समझे नी हम कहा तू खाइया हो या बाहर न जाइया, सबसे पहले रउआ के सोनू भाई वानी और जो सवाल ताकि दे रहा है और भी कॉल कर जोड़ी तो नमस्कार और हम मिला था नहीं अपने के दोपहरिया में
0: रेडियो में कॉल करनी है खातिर, बहुत बहुत धन्यवाद
1: अपने के भी धन्यवाद और दिन शुभ हो।

0: गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
2: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान,
2: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
3: Now pick it up,
4: hello.
3: Now pick your phone up,
4: hello.
3: Pick it up,
4: hello.
3: Now pick your phone up,
4: hello.
5: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो।
6: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: हेलो, सलाम, नमस्कार।
8: नमस्कार, वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
7: जी मैम, कैसी हैं?
8: मैं अच्छी हूँ, बताइए आप कैसे हैं?
7: हम भी अच्छे हैं मैम। आज लेट से चालू हुआ तो आज 4 मिनट लेट हो गया था।
8: नहीं,
7: लगा नहीं, हमारा
8: बिजी जा रहा होगा।
7: नहीं, पहले बंद था और 2 मिनट के बाद हो गया।
8: क्या हो रहा है अभी?
7: अभी तो टाइम से देख कर आपके पास कॉल लगा रहे थे, पहले से ही 10 मिनट काम सब छोड़ करके आपके पास।
8: चलिए, सब तो बढ़िया है, नाश्ता कर आते हैं।
7: जी मैम, हम लोग तो नाश्ता करके ही आते हैं।
8: अच्छा, चलिए तो बढ़िया है।
7: आता होगा मैम। चलिए, तो आज वो रिपीट नहीं चला मैम।
8: कौन सा?
7: कल वाला रिपीट जो चलता है ना सुबह में,
8: वही तो रिपीट चल रहा है।
7: नहीं नहीं चल रहा है अभी वो वाला, हेलो माय चॉइस वाला,
8: वही सेम रिपीट चल रहा है।
7: हम 9 बजे सुन रहे थे तो नहीं चल रहा था,
8: तो थोड़ा 1-2 मिनट इधर उधर हो जाता है, हो गया। वही चल रहा है,
7: बस अलग अलग गाना बज रहा था लेकिन वो रिपीट नहीं चल रहा था, लगता है कुछ दिक्कत हुआ था।
8: पता नहीं, लेकिन अभी तो देखी हूँ, आई हूँ, मैं भी सुनी हूँ तो वाला ही चल रहा है।
7: चलिए, तो गाना फरमाइश करते हैं। कितने नंबर पे है मैम हम?
8: 3 नंबर पे।
7: अच्छा मैम, वो गाना का फरमाइश ये है, गाना है मेरे महबूब कयामत होगी।
8: मेरे महबूब कयामत होगी,
7: हाँ ये बोल रहा।
8: और गाना डेडिकेट है?
7: डेडिकेट है भारत में रहने वाली भारतीय मैम, यानी आपको। और कभी आरजे
8: करेंगे, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4।
7: धन्यवाद मैम, बाय
8: बाय।
9: है दोस्तों, इश्क का दस्तूर ही कुछ ऐसा, जो इसको जान लेता है ये साला उसी

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: नमस्ते दीदी।
1: नमस्ते,
0: क्या हाल है?
1: मेरा ठीक है, आप अपना बताइए।
0: मेरा भी ठीक है।
1: तो क्या
0: खाना तो खा कर आए ना?
1: हाँ,
0: पहचान रहे हैं क्या?
1: हाँ हाँ गणेश,
0: अरे 2 दिन से टाइम नहीं मिला तो नहीं जुड़ रहे हैं। कल भी नहीं जुड़े हैं, परसों भी नहीं जुड़े हैं। मेरा फरमाइश था सोमवार के दिन, एक हफ्ता कम्प्लीट हो गया था, तो मंगलवार आज बुधवार हो गया, 10 दिन हो गए मेरे फरमाइश के लिए। टाइम नहीं मिल रहा है, कल भी टाइम नहीं मिला है, परसों भी टाइम नहीं मिला है।
1: आपका फरमाइश आज ही ना कम्प्लीट।
0: संडे वाला दिन तो स्पेशल है,
1: करिश्मा जी का बुधवार को, आपका मंडे को।
0: सोमवार के संडे संडे के दिन जो फरमाइश बजेगा, जितना लोग बजेगा सब लोग का बजेगा। बस टाइम रहना चाहिए, टाइम रहेगा तो बजेगा, नहीं रहेगा तो नहीं बजेगा। तो आपका घर की पूजा हो गया है?
1: नहीं।
0: कब पड़ेगा?
1: होगा शुक्रवार को।
0: अच्छा, हम लोग का तो आज
1: मतलब आज पूजा होता है, लेकिन शुक्रवार को ये माता जी के मंदिर में कढ़ाई चढ़ता है।
0: अच्छा, और सब बताइए।
1: और सब ठीक है, फरमाइश बता दीजिए आज कौन से गाने की है।
0: अरे तो कॉल कर रहे हैं तो आप बेजी, इतना बेजी, अभी 11 बजे से 5 मिनट पहले ही से कॉल लगा रहे थे। पता नहीं कब मोबाइल खुलता है, अभी फोन लगाए तो बिजी बिजी बिजी बता।
1: मोबाइल खुल जाता है।
0: मनोरमा दीदी आई?
1: हाँ वो भी आई है।
0: अच्छा, कल भी आपके पास थी क्या मनोरमा दीदी?
1: नहीं।
0: तो अभी आती है सीखने के लिए आपके पास?
1: नहीं, कभी कभी एक साथ बैठते हैं, अच्छा लगता है।
0: अच्छा, मतलब सर बोलते हैं कि चल जाओ सीखने के लिए क्या?
1: क्या गाना बता दीजिए मुझे।
0: अब आप ही बताइए, फोन लगाए। हाँ मगर इसमें झगड़ा करेगी दीदी, मैं बतियाएंगे, आप बताइए। इतने देर से तो परेशानी हम झेल रहे हैं, बोले कि नहीं दीदी हम बतियाएंगे।
1: कोई बात नहीं, वो आप कर दीजिए या वो कर दे, बात देखिए, फरमाइश सुन लीजिएगा लोग अपनी।
0: तो मेरे गाना बजाना है नीलकमल सिंह की आवाज में, देव भाई सॉन्ग।
1: कौन सा गाना? गाना बता दीजिए।
0: जब साथ के देखे ना रहे तो प्यार का है कोई। सबसे पहले आपको मनोरमा दीदी को, सोनी दीदी को, करिश्मा को, पूरा रेडियो रिमझिम कर रही है। नहीं, नीलकमल सिंह की आवाज में ये गाना।
1: ठीक है, फिर
0: ठीक है,
1: गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: नमस्ते
1: नमस्ते।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029 94 911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाजत। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
2: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: दिल से।
1: Presented by

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

रंगत है, खुशबू है, नगमा है, जादू है।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: हम हैं इस पल।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: All right.

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आज विक्रम संवत 2083 श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि दिनांक 24 अगस्त 2026 दिन सोमवार के इस पावन प्रभात में रेडियो रिमझिम का पूरा परिवार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता है। आज सूर्योदय प्रातः 5:39 पर तथा सूर्यास्त 6:21 के आसपास होगा। तो आइए जानते हैं आज का आदर्श वाक्य, हार से घबराइए मत, यही जीत की पहली सीढ़ी होती है। तो श्रोताओं, सूर्य घड़ी में सुबह के 5:00 और इसी के साथ आइए आरंभ करते हैं आज की प्रातःकालीन सभा एक मधुर और भक्तिमय गीत के साथ।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिद्म 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।